MBC Radio, your music companion.

0: मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
0: रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

परमेश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: बुधवार 27 में रेडियो मॉरिशस पर आप सभी सुनने वालों का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से नमस्कार, स्वीकार करें सुप्रभात आप सभी को। और आज का दिन आप सभी के लिए बहुत अच्छे से बीते ऐसी कामना हम करते हैं। घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 6 बज रहे हैं और अभी के लिए समय हुआ है समाचार का।
2: आइए सुनते हैं सुबह का पहला फ्लैश न्यूज। पूजा से नमस्कार।
3: नमस्कार दिव्या, सभी को मेरा नमस्कार। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन विशेष रूप से गणराज्य के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार करेगा। इस बात की घोषणा प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने कल राष्ट्रीय सभा में की। इसके साथ ही उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल पर बहस की शुरुआत की। डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने इस बात पर जोर दिया कि निर्वाचन मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता, राष्ट्रपति पद की वैधता तथा राज्य प्रमुख की निष्पक्ष और एकजुट करने वाली भूमिका में जनता के विश्वास को मजबूत करना है। कल संसदीय सत्र काफी तनावपूर्ण रहा, जिसमें सांसद जुआना बेरोजी और श्रम मंत्री गिजाउद्दीन के बीच तनावपूर्ण क्षण देखने को मिला। सांसद ने अपनी मां के यहां कार्यरत एक लापता बांग्लादेशी महिला कर्मचारी के मामले को लेकर मंत्री से सवाल किए। उन्होंने विशेष रूप से ये जानना चाहा कि क्या वो कर्मचारी अपनी आवाजाही के लिए स्वतंत्र थी, जिस पर मंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी। रिजाउद्दीन ने उन टिप्पणियों को गंभीर संकेत और आरोप करार देते हुए उनकी निंदा की। तनावपूर्ण बहस के दौरान स्थिति को शांत करने के लिए स्पीकर और मंत्री शकील मोहम्मद को हस्तक्षेप करना पड़ा। मध्य अफ्रीका में एबोला वायरस के बढ़ते मामले और 17 मई से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद मॉरिशस के अधिकारी अपने रोकथाम और तैयारी संबंधी उपायों की समीक्षा कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संबंधित पक्षों के साथ कल एक कार्य बैठक आयोजित की गई, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि मॉरिशस में किसी संदिग्ध मामले से निपटने के लिए सभी प्रोटोकॉल लागू हो। स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यवाहक निदेशक डॉक्टर फाजिल कुडाबोकस के अनुसार 2014 से तैयार किया गया एबोला वायरस ऑपरेशनल प्लान फिर से सक्रिय कर दिया गया है। और अब मौसम का हाल।
4: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं और पूर्व की ओर से आ रहे बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान सुबह के समय तथा दिन के दौरान बादल घिरे रहेंगे। देश के पूर्व और ऊंचाइयों पर हल्की वर्षा होगी। रात को बादल कुछ घिर आएंगे, खासकर देश के पूर्व और सेंट्रल प्लेटों पर बारिश होगी। हवा पूर्व की ओर से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। दक्षिणी लगूनों में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 16 से 18, अधिकतम तापमान 23 से 25, सारे इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 23, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय आज सुबह 6:36 पर, सूर्यास्त शाम 5:38 पर होगा।
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته یہ RM3 ہے پرویزا کا ساتھ ہے اردو نشریات بنام سبا الخیر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ تمام سامعین خیریت اور عافیت سے ہوں گے روشنیوں رحمتوں اور برکتوں سے سجی اس سے خوبصورت نشریات میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں مزید سامعین یہ وہ لمحات ہیں جب دل ذکر الہی سے منور ہوتے ہیں रूह को सुकून मिलता है और ईमान को ताजगी नसीब होती है। तो आइए मज़े सामीन इस रूह परवर महफिल का आगाज करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बाबरकत कलाम से, जो सरापा हिदायत और सरापा नूर है। बग़ौर व बाअदब समात फरमाइए तिलावत कुरान पाक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।

शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लोगों अपने परवरदिगार से डरो कि कयामत का जलजला एक हादसा अजीम है। ए मुखातब, जिस दिन तू उसको देखेगा उस दिन ये हाल होगा कि तमाम दूध पिलाने वाली औरतें अपने बच्चों को भूल जाएंगी और तमाम हमल वालियों के हमल गिर पड़ेंगे और लोग तुझको मदहोश नजर आएंगे, हालांकि वो मदहोश नहीं होंगे बल्कि अजाब देखकर मदहोश हो रही होंगे। बेशक अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है।

और बाज लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की शान में इल्म के बगैर झगड़ते और हर शैतान सरकश की पैरवी करते हैं, जिसके बारे में लिख दिया गया है कि जो उसे दोस्त रखेगा तो वो उसको गुमराह कर देगा और दोजख के अजाब का रास्ता दिखाएगा। लोगों, अगर तुमको मरने के बाद जी उठने में कुछ शक हो तो हमने तुमको पहली बार भी तो पैदा किया था, यानी इब्तिदा में मिट्टी से, फिर उससे नुतफा बनाकर, फिर उससे खून का लोथड़ा बनाकर, फिर उससे बोटी बनाकर, जिसकी बनावट कामिल भी होती है और नाकिस भी, ताकि तुम पर अपनी खालिकियत जाहिर कर दें। और हम जिसको चाहते हैं एक मियाद मुकर्रर तक पेट में ठहराए रखते हैं, फिर तुमको बच्चा बनाकर निकालते हैं, फिर तुम जवानी को पहुंचते हो, और बाज कबल अज पीरी मर जाते हैं, और बाज बुढ़ापे की निहायत खराब उम्र की तरफ लौटाए जाते हैं कि बहुत कुछ जानने के बाद बिल्कुल बेइल्म हो जाती हैं। और ऐ देखने वाले, तू देखता है कि एक वक्त में जमीन खुश पड़ी होती है, फिर जब हम उस पर मे बरसाते हैं तो वो शादाब हो जाती और उभरने लगती है और तरह तरह की बारौनक चीजें उगाती है। इन कुदरतों से जाहिर है कि अल्लाह ही कादर मुतलक है जो बरहक है, और ये कि वो मुर्दों को जिंदा कर देता है, और ये कि वो हर चीज पर कुदरत रखता है, और ये कि कयामत आने वाली है उसमें कुछ शक नहीं, और ये कि अल्लाह सब लोगों को जो कब्रों में हैं जिला उठाएगा।

और लोगों में कोई ऐसा भी है जो अल्लाह की शान में बगैर इल्म के और बगैर हिदायत के और बगैर किताब रोशन के झगड़ता है और तकब्बुर से गर्दन मोड़ लेता है ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर दे। उसके लिए दुनिया में जिल्लत है और कयामत के दिन हम उसे अजाब आतश सोजा का मजा चखाएंगे। ऐ सरकश, ये उस कुफ्र की सजा है जो तेरे हाथों ने आगे भेजा है और अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं।

जे तो उसके सबब मुतमईन हो जाए और अगर कोई आफत पड़े तो मुंह के बल लौट जाए यानी फिर काफिर हो जाए। उसने दुनिया में भी नुकसान उठाया और आखिरत में भी, यही तो साफ नुकसान है। ये अल्लाह के सिवा ऐसी चीज को पुकारता है जो ना उसे नुकसान पहुंचाए और न फायदा दे सके, यही तो परले दर्जे की गुमराही है।

जो शख्स ये गुमान करता हो कि अल्लाह उसको दुनिया और आखिरत में मदद नहीं देगा, तो उसको चाहिए कि ऊपर की तरफ यानी अपने घर की छत में एक रस्सी बांधे, फिर उससे अपना गला घोंट ले, फिर देखे कि आया ये तदबीर उसके गुस्से को दूर कर देती है

और इसी तरह हमने इस कुरान को उतारा जिसकी तमाम बातें खुली हुई हैं, और ये याद रखो कि अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है

जो लोग मोमिन यानी मुसलमान हैं और जो यहूदी हैं और सितारा परस्त और ईसाई और मजूसी और मुशरिक, अल्लाह उन सब में कयामत के दिन फैसला कर देगा। बेशक अल्लाह हर चीज से बाखबर है। क्या तुमने नहीं देखा कि जो मखलूक आसमानों में है और जो जमीन में है, और सूरज और चांद और सितारे और पहाड़ और दरख्त और चौपाए और बहुत से इंसान अल्लाह को सजदा करते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जिन पर अजाब साबित हो चुका है, और जिस शख्स को अल्लाह जलील करे उसको कोई इज्जत देने वाला नहीं। बेशक अल्लाह जो चाहता है करता है।

ये दो फरीक एक दूसरे के दुश्मन अपने परवरदिगार के बारे में झगड़ते हैं तो जो काफिर हैं उनके लिए आग के कपड़े कता किए जाएंगे और उनके सरों पर जलता हुआ पानी डाला जाएगा, उससे उनके पेट के अंदर की चीजें और खालें गल जाएंगी और उनके मारने के लिए लोहे के हथौड़े होंगे। जब वो चाहेंगे कि उस रंजो तकलीफ की वजह से दोजख से निकल जाएं तो फिर उसी में लौटा दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि जलने के अजाब का मजा चखते रहो।

जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे अल्लाह उनको बहिश्तों में दाखिल करेगा जिनके तले नहरें बह रही हैं, वहां उनको सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और मोती, और वहां उनका लिबास रेशमी होगा, और उनको अच्छी बात की तरफ रहनुमाई की गई और खूबियों वाले मालिक की राह बताई गई।

0: जो लोग काफिर हैं और लोगों को अल्लाह के रास्ते से और मस्जिद हराम से, जिसे हमने लोगों के लिए यकसा इबादतगाह बनाया है, रोकते हैं, खा वो वहां के रहने वाले हों या बाहर से आने वाले, और जो उसमें शरारत से कजरवी और कुफ्र करना चाहे तो उसको हम दर्द देने वाले अजाब का मजा चखाएंगे।
1: वो

0: को।
1: और एक वक्त था जब हमने इब्राहिम को खाने काबा का मकाम बता दिया और इरशाद फरमाया कि मेरे साथ किसी चीज को शरीक न कीजो और तवाफ करने वालों और कयाम करने वालों और रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए मेरे घर को साफ रखा करना और लोगों में हज के लिए ऐलान कर दो कि तुम्हारी तरफ पैदल और दुबले दुबले ऊंटों पर जो दूर दराज रस्तों से चले आते हों सवार होकर चले आएं ताकि अपने फायदे के कामों के लिए हाजिर हों।

0: और कुर्बानी के अय्याम मालूम में मवेशी चौपायों के ज़बह के वक्त जो अल्लाह ने उनको दिए हैं उन पर अल्लाह का नाम ले। अब उसमें से तुम खुद भी खाओ और खस्ता हाल जरूरतमंद को भी खिलाओ। फिर चाहिए कि लोग अपना मैल कुचैल दूर करें और मन्नतें पूरी करें और उस कदीम घर यानी बैतुल्लाह का तवाफ करें।
1: सदकल्लाहुल अजीम। सामईने कराम, आपने कुरान पाक की पुरनूर तिलावत उसके उर्दू तर्जुमे के साथ समाअत फरमाई। अल्लाह ताला के इस मुबारक कलाम में हमारे दिलों के लिए सुकून, ज़िंदगी के लिए रहनुमाई और रूह के लिए रोशनी है। दुआ है कि लब्बे करीम हमें कुरान को समझने, उस पर अमल करने और उसके पैगामात को अपनी ज़िंदगियों में अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सामईन, इससे रूहानी कैफियत के साथ हम अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं उस ज़ात नियाज की हमद सना का, जिसके करम के बग़ैर ज़िंदगी का हर रंग अधूरा है। हर सिमत उसी का नूर, हर सांस उसी का नाम, दिल जब ही सुकून ढूंढे लब पर आए उसका कलाम।

0: फजाओं में अजान उसकी, बहारों में प्याम उसका, दिलों को जो सुकून बख्शे वही है नाम उसका। अकीदतमंद सामईन, आपने नहायत अकीदत व मोहब्बत के साथ हमदे बारी ताला समाप्त फरमाई। यकीनन जब बंदा अपने रब की सना बयान करता है तो दिलों पर एक रूहानी कैफियत तारी हो जाती है। सामईन, हज जैसे अजीम रुकन इस्लाम के मुबारक मौके पर आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं एक खसूसी और ईमान अफरोज बयान। ये खिताब फरमाएंगे मुफ्ती मोहम्मद इसहाक कादरी रज़वी साहब, खतीब आली जामा मस्जिद पोटविस। तो आइए अकीदत और तवज्जो के साथ इस बयान को सुनते हैं।
1: नहमदुल्लाह वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यदिना व हबीबिना मुहम्मदिन अल-मुस्तफा व अला आलिही व असहाबिही अल-अत्किया अल-अस्किया अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد ثنا کے بعد सामीन मोहतरम, माह ज़िलहज उसके फ़ज़ाइल के दुरूस मुसलसल जारी हैं। ये भी दर्स भी उन दुरूस की एक कड़ी है, एक सिलसिला है। आज हम आपको बहुत ज़्यादा अहम मसला बताने वाले हैं। जो लोग बार बार पूछते हैं, बार बार पूछते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर पूछते हैं फिर भूल जाते हैं, और दीन के साथ ऐसा ही होता है। इसलिए खुदा के लिए दीन के मसाइल अच्छी तरह सीखें, पूरी तवज्जो से सीखें। जब ये 10 दिन आते हैं तो अल्लाह जल्ल मजदहू के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो निज़ाम अता किया, जो क़ानून अता किया,

इसके कानून आयद होता है, सब पर लागू होता है। एक मसला दीन के मसाइल में से और अहकाम में से, और वो बाल काटने और नाखून काटने का मसला है। मसला बहुत सीधा सादा है कि जैसे ही माहे दिलहिज्जा का चांद निकल आए और कोई शख्स कुर्बानी करना चाहे, उसने कुर्बानी का इरादा किया है, तो वो ना अपने बाल काटे जिस्म में किसी भी मुकाम के और ना नाखून काटे। लेकिन ये सिर्फ मुस्तहब है, रिकमेंडेड है, नेसेसरी नहीं है। अगर कोई काट लेता है तो कोई गुनाह नहीं है, उससे उसकी कुर्बानी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद और फरमान इस अमर की दलील है। आपने फरमाया, इज़ा रअयतुम हिलाल ज़िल हिज्जति व अराद अहदुकुम अन युदहिया फलयुमसिक अन शअरिही व अज़फ़ारिही। ये सही मुस्लिम शरीफ में है। फरमाया कि लोगों, जब तुम ज़िलहिज्जा का चांद देख लो और तुम में से किसी का कुर्बानी का इरादा हो, तो वो अपने बाल और नाखून काटने से रुक जाए, यानी ना जिस्म के किसी मुकाम के बाल काटे और ना अपने नाखून काटे। माह ज़िलहिज्जा के चांद के नज़र आने से पहले अपने बाल काट लें, नाखून काट लें, और फिर इन 10 दिनों में नहीं काटें। लेकिन ये फिर सुन लें कि ये फ़कत मुस्तहब है। सिर्फ रिकमेंडेड है उनके लिए जो कुर्बानी का इरादा रखते हों, चांद देखने से लेकर जब तक उनकी कुर्बानी हो न जाए उस वक्त तक सर के बाल और इसके अलावा बदन के और बाल और नाखून न काटे। लेकिन जिन लोगों पे कुर्बानी नहीं है, जिन्होंने कुर्बानी का इरादा नहीं किया, उनके लिए ये हुक्म नहीं है। लेकिन अगर कुर्बानी देने से पहले कोई ऐसा कर ले, यानी कुर्बानी का इरादा भी है, वो कुर्बानी भी करेगा और साथ साथ अपने बाल और नाखून काट भी दे, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। और इससे कुर्बानी में कोई खलल नहीं आएगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब सवाल ये है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्यों फरमाया कि जिसने कुर्बानी का इरादा किया तो वो चांद ज़िलहज से लेकर कुर्बानी तक ना अपने बाल काटे ना नाखून, इस

0: कि हिकमत क्या है। जाहिर है कि फ़ेलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमा, हकीम का जो फ़ेल होता है साहिब हिकमत का, वो हिकमत से खाली नहीं होता। तो इसकी हिकमत क्या है? शाह वलीउल्लाह मुहतस देहलवी आले रहमतुल बारी ने हुज्जतुल्लाह अलबालिगा में इसको बहुत तफसील से बयान किया, और दीगर हमारे जो उलमा हैं जिन्होंने शरीयत के अहकाम के असरार बयान किए मुख्तलिफ अपनी किताबों में, उन्होंने ये बयान किया हाँ कि इससे मकसूद हाजियों से मुशाबहत है, कि हाजी जब अहराम में होता है तो न उसे अपने बाल काटने की इजाज़त होती है बदन के किसी भी मुकाम से, न नाखून काटने की इजाज़त होती है, न उसके लिए बदन के बाल काटना अलाव है न नाखून काटना। सो फकत उनसे मुशाबहत के लिए, उन जैसा बनने के लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह हुक्म दिया है, ये इरशाद फरमाया है। और ये याद रखें कि अच्छों की मुशाबहत अच्छी होती है, अच्छों जैसा बनना अच्छा होता है। अल्लाह पाक फिर इंसान को अच्छा बना देता है, अच्छों की याद अच्छी होती है। बुरों की तरह बनना बुरा है, बुरों की याद भी बुरी है। आज जो सोसाइटी के इतने मसाइल हैं उसका मेन रीज़न यही है कि हमने अच्छों के साथ उठना बैठना, उन जैसा होना, उन जैसा बनना, ये सारे फिक्र छोड़ दिए हैं। सो ये नौजवान नस्ल के लिए भी बहुत उम्दा एक पैगाम है, पूरी उम्मत के लिए है, सबके लिए है, कि वो अच्छों जैसा बने, अच्छों जैसा बनने की कोशिश करें, उनकी अदाओं को अपनाएं। ये फ़कत नाखून और बालों का मसला नहीं है, ये अदा है, ये इस्तियारा है अदा से। अल्लाह पाक अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने अहकाम पर हमें दिलो जान से अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।
1: शामिल मोहतरम, अभी आपने जामा मस्जिद के खतीब मुफ्ती मोहम्मद ईसा कादरी रज़वी साहब का एक मुख्तसर सा लेकिन बसीरत अफरोज़ और ईमान अफरोज़ बयान समाप्त फरमाया है। यकीनन उनके पुर असर अल्फाज ने हमारे दिलों में हज की अजमत, कुर्बानी, इखलास और अल्लाह ताला की मोहब्बत को मज़ीद उजागर कर दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी बारगाह इलाही के उस मुकद्दस सफ़र की सआदत नसीब फरमाए और अपने घर के मेहमानों में शामिल फरमाए। आमीन।

ये आरएम फ्री है परवीज़ा का साथ है उर्दू नशरियात बनाम मसाल खैर में रूहानियत और मोहब्बत इलाही से भरपूर इस खूबसूरत महफिल का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।

शामिल महतरम, हज का हर रुकन एक पैगाम है। कुर्बानी का अमल हमें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वो बेमिसाल अताअत याद दिलाता है जिसमें सवाल नहीं था, सिर्फ तस्लीम था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस तक गोश और खून नहीं पहुंचता, बल्कि तकवा पहुंचता है। लिहाजा असल पैगाम हमें यही है कि हम अपनी ज़िंदगियों में कुर्बानी का जज्बा पैदा करें। गुरूर की कुर्बानी, नफ़रत की कुर्बानी और गुनाहों की कुर्बानी, ताकि हम हकीकी मानों में अल्लाह के करीब हो सके। या अल्लाह, जो इस वक्त तेरे मुकद्दस घर के मेहमान हैं, उनके हज को कबूल फरमा, उनकी इबादत को शर्फ कबूलियत अता फरमा, उनके हज को मबरूर बना दे। आमीन। हमें भी अपनी दुआओं में शामिल करें। आप सबको ईद उल अदा मुबारक। तकनीकी मदद अंजू की रही है, मशकूर और ममनून है हम पर। वीज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
1: You are

शक्ति भक्ति में शक्ति कार्यक्रम सुनने वाले हमारे समस्त श्रोताओं का हम करजोड़ अभिवादन करते हैं। ये रेडियो मनोरंजन RM3 का प्रसारण है, मीडियम 495.698.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ रत्ना, आपकी समक्ष उपस्थित हो चुकी हूँ आज के इस कार्यक्रम को लेकर। इस भक्ति में यात्रा में हमारा साथ अवश्य दीजिएगा। बुधवार का दिन है 27 तारीख मई महीना, और इसी के साथ अभी से लेकर दिन के 11:30 बजे तक हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। मैं हूँ रत्ना, और इसी के साथ आज का दिन हम भगवान श्री गणेश को समर्पित करते हैं। तो आइए आज के इस कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं, इस प्रथम गणेश भजन के साथ।

में शक्ति कार्यक्रम और इस समय स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बज चुके हैं। श्रोताओं, श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि अपने कर्मों का हमें सबसे अधिक ध्यान रखना है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल हमें प्राप्त होता है। ईश्वर सदा क्षमा कर देते हैं, पर हमारे कर्म क्षमा नहीं देते। अटल सत्य तो ये है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में भी अपनी माता को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार हमारे कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेते हैं।

श्रोताओं, इस वक्त इस समय हम अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में हैं और आज 27 मई बुधवार का दिन हम मना रहे हैं पद्मिनी एकादशी और यह हर 3 वर्ष में एक बार आती है और संतान सुख समृद्धि मोक्ष के लिए भगवान विष्णु की पूजा के लिए अत्यंत फलदायी मानी गई है। पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें। विष्णु जी के मूर्ति को पीले फूलों से एवं वस्त्र धूप दीप एवं तुलसी दल अर्पित करें। भगवान को फल और मिठाई का भोग लगाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। एकादशी का व्रत धारण करें और ऐसा कहा जाता है कि इस मलमास की सबसे पुण्यदायी एकादशी मानी गई है पद्मिनी एकादशी। और मान्यता ये भी है कि इस व्रत से संतानहीन दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह पापों को नष्ट करने वाली और मोक्ष दिलाने वाली मानी गई है। ऐसा भी कहा जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए।

हरी भक्ति में लीन रहिए, हरी से बड़ी कोई और भक्ति नहीं। और इस मलमास में यानी पुरुषोत्तम मास में आइए भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, और उन्होंने सभी हर अवतार में उन्होंने मानव को मानव का कल्याण हेतु उन्होंने धरती पर जन्म लिया। और इसी के साथ बस आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं और भगवान विष्णु को नतमस्तक होकर यही प्रार्थना करते हैं कि वे सदा सभी मानव का कल्याण करें, सदा हमारा मार्गदर्शन करें, हमें सही मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान प्रदान करें और बस जीवन सभी का मंगलमय रहें। यही शुभकामनाओं के साथ इस अंतिम आरती के साथ जुड़ते हैं और आज के इस कार्यक्रम का समापन इसी आरती के साथ करेंगे। इसी के साथ रत्ना को दे अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

0: टाइम चेक दोपहर के 12 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार पूजा से। पूजा, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, सभी को मेरा नमस्कार। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल को लेकर राज्यसभा में कल बहस जारी रही। विपक्षी नेता जूली रोगो सहित कई सांसदों ने इस विधेयक पर अपने विचार रखे। इस विधेयक का उद्देश्य एक ऐसे आयोग की स्थापना करना है जो संवैधानिक सुधारों के प्रस्ताव तैयार करे, विशेष रूप

0: से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए। रिनोमितनाथ जून तक हिरासत में रहेगा। पुलिस की जिला अदालत में रिनोमितन की जमानत रद्द कर दी गई क्योंकि डीपीपी कार्यालय ने इसका विरोध किया। रिशलियो का रहने वाला रिनोमितन ने 19 मई को सैंखवा में प्रदीप चिकोरी को अपनी गाड़ी से कुचल दिया था जिससे उनकी मौत हो गई। पीड़ित की 12 वर्षीय बेटी गंभीर रूप से घायल हुई है। हादसे के दिन रिनोमितन बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला रहा था। वो पहले से पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सशर्त रिहाई पर था। अफ्रीका में इबोला वायरस के बढ़ते मामलों और 17 मई से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद मॉरिशस के अधिकारी अपने रोकथाम और तैयारी संबंधी कदमों की समीक्षा कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय में संबंधित पक्षों के साथ कल एक बैठक का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यवाहक निदेशक डॉक्टर फाजिल कोदाबुकस के अनुसार 2014 से तैयार किया गया इबोला वायरस ऑपरेशनल प्लान भी फिर से सक्रिय कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और हिंद महासागर आयोग के साथ करीबी सहयोग में काम कर रहा है। और विदेश में इस वायरस के फैलने में गलत जानकारी और सुरक्षा की भावना और भी बढ़ गई है जिसने सालों से इस पूर्वी अफ्रीकी देश को परेशान किया है। एक्शन एड के एक सर्वे के मुताबिक प्रभावित इलाकों में लिए गए लोगों में से सिर्फ 34% ही एबोला फैलने के तरीकों को सही ढंग से पहचान पाए हैं। आबादी का एक बड़ा हिस्सा अब भी इस बीमारी को आध्यात्मिक कारणों से जुड़ी घटना या पैसे जुटाने के लिए बनाई गई एक योजना मानता है। इस बीच वैज्ञानिकों के अनुसार एबोला से संक्रमित 25 से लेकर 90% तक लोगों की मौत हो सकती है। यही कारण है कि स्वास्थ्य एजेंसियां इस बीमारी को लेकर बेहद सतर्क है। और उधर वाशिंगटन में एक पेपर मिल में हुए बड़े रासायनिक विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत। कंपनी के बयान के अनुसार ये विस्फोट एक टैंक में पाए गए व्हाइट लीको के फटने के कारण हुआ है। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। एलियनसन बोबासे में 79 साल की 79 years old श्रीमती सुराजनी रंग बहादुर पैदाशी नाम सिवचन और जिन्हें लोग सुराजनी नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के 1 बजे एलियनसन बोबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आले भैयाओं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। आर्य मंदिर रोड पीछे गाफरे में 77 साल की 77 years old श्रीमती कुसमावती रमेसर जिन्हें लोग कुमकुमवा नाम से अधिक जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल सुबह 10 बजे इनके मकान आर्य मंदिर रोड पे चिराफरे से उठाकर मोमास्काल पे चिराफरे की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। नंबर 127 बाउंड्री रोड सेंट पैट्रिक कैटोबोन में 66 साल की 66 years old श्री सेउलाल सिबालक जिन्हें लोग सिलाल नाम से अधिक जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल सुबह 9:30 बजे इनके बेटे ऋषि सिबालक के मकान नंबर 127 बाउंड्री रोड सेंट पैट्रिक कैटोबोन से उठाकर गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 9:30 AM। और फ्रांस में 75 साल के 75 years old श्री महेश दुकरन की मृत्यु हो गई है। वे पहले मुसलमान कुंजु प्लेंडे पापाई के रहने वाले थे। इनकी अर्थी कल दिन के डेढ़ बजे लोपिताल पिचिए सालपेत्रिया पेरिस फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए जों शोल विल्टानेज किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1:30 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv. You're listening to RM3 Radio Mana.

0: RM3 Radio.
1: सभी हमारे लिसनर्स का विनीता की ओर से प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है आप सबों का। जी हाँ, प्रोग्राम लेकर आए हैं आपके लिए सुहाना सफ़र, और इस सफ़र को सुहाना बनाएंगे हम और आप साथ मिलकर। आपका हम स्वागत करते हैं। चलिए, यहाँ पर हमारे फ़ोन लाइंस खुले होंगे 4028 07 0 थोड़ी ही देर में।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर। सुहाना सफर के हमारे सभी लिसनर्स का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। वेलकम। कैसे हैं हमारे दोस्त? कहाँ हैं हमारे दोस्त? घर पर हैं, काम पर हैं, ऑफिस में हैं, या तो फिर ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, जहाँ से भी आप साथ दे रहे हैं हमारा वेलकम, स्वागत है आप सबों का। जी हाँ, मैं हूँ विरिता और मैं आपका साथ दे रही हूँ यहाँ लाइव फ्रॉम या MBC रेडियो मनोरंजन RM3। यहाँ पर नंबर है हमारा 4028 7 0। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं 5250-6200 पर, या तो फिर टिकटॉक पे सिंपली आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं।
1: RM3 रेडियो

0: सुहाना सफर
1: हमारा प्रोग्राम है जहां पर आप विजेता का साथ दे रहे हैं। हेलो जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक, बिल्कुल ठीक ठाक। किसी ने मुझसे कहा कि कैसी है, मैंने कहा बस थोड़ी सी खांसी है वरना ठीक हूँ। कहते हैं ये खांसी वाली कैसी ठीक होती मुझे नहीं पता, मुझे देख लो ऐसा होता है जो कि अपने नहीं अच्छे में भी बहुत अच्छा कर जाते हैं और अच्छा दिख जाते हैं, वही होता है, ऐसा ही होता है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। यहाँ पर कविता, अनु, पास्कल, एजे, अजय, लक्ष्मण, पिया, जय, यलेश, हमारे रेडियो श्रीनगर, विमी, तनवीर, जेरेमी, नीलिमा, पूजा, रागिनी जी, कविता और कोगी, शीला, कलाम और रितु हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी। कलाम, आप मुझे ये बताइए कि टैक्सी में भी आप काम कर रहे हो? चलो भाई, आपके पैसेंजर्स के लिए गाना चलाते हैं। साथ में यहाँ पर किसी ने मुझसे गाने की फरमाइश की है, ये पौधे ये पत्ते, मैंने जैसे कहा बेटा अगर आपको फूल पौधे देखने हैं तो गार्डन में चलते हैं, यहाँ तो सिर्फ गाने चलते हैं। खैर, मैं ढूंढने की कोशिश करूँगी, अगर गाना नहीं मिला तो गार्डन का सैर करके आ जाएंगे। ठीक है जय, ओके, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और

0: बात है नेक्स्ट गाना माया और रागिनी के लिए, ठीक है माया और रागिनी के लिए आपने गाने की फरमाइश कर दी हमारे से, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये गाना जो है मैं उनके नाम ज़रूर चलाऊँ। तो ये है रागिनी और माया, वैसे यहाँ पर एक और रागिनी और माया हमारे साथ है। गाना आपने कौन सा मांगा था, इट्स तस्वीर तेरे दिल में ना, ओके तो मैं ढूंढने की कोशिश करती हूँ गाना, मुझे वक्त मिला तो ज़रूर चलाऊंगी। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर जो अगला गाना होगा हम डेडिकेट करेंगे संजय बुधवा के लिए, कहते हैं कि ओके थैंक यू सो मच प्रतिमा दुकित्राम, थैंक यू सो मच प्रतिमा जी, हमेशा की तरह प्यार बरसा रही है। कहते हैं एक बार मुस्कुरा दो, मैं तो यहाँ पर मुस्कुराना क्या, मैं कहती स्माइल क्यों, आप लाफ्टर ले लो हमारा, हम तो बैठे हैं यहाँ पर सबको खुश करने के लिए। चले दी हम देखते हैं यहाँ पर गाना आपके लिए। एंड वी हैव राधिका, कैसे हो आप राधिका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अनिल कैसे हो आप, शराबी फिल्म का गाना, चलो पहले ये वाला तो सुन लो।
1: RM3 Radio.

0: ना सफर सुहाना सफर
1: हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते। हम सब की लाइफ में कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा इंसान होता है जिसे हम अपनी पूरी ज़िंदगी बना लेते हैं और उस ज़िंदगी में हम बस करते क्या हैं, अपनी सारी खुशियां, अपना सारा ट्रस्ट, अपना सारा प्यार निछावर कर देते हैं। वैसे कुछ खुश नसीब होते हैं जिनको प्यार के बदले में वो प्यार मिल जाता है, लेकिन बहुत से लोगों का दिल भी टूट जाता है। कहते हैं इंसान को खुद से ज़्यादा किसी और पे भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये प्यार कमबख्त चीज़ ही ऐसी है कि हम क्या बताएं आपको। चले भाई, प्यार की बात चली है तो प्यार से यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हम नमस्कार करते हैं, वेलकम करते हैं हमारे इन दोस्तों का। तो अमीरुद्दीन, आरव प्रसाद, सुबी, सुल्ताना कांदाई, रेशमा, लीना, जामाक, पूर्णिमा, हंसवी, रीटा, शालिनी, विकिंग, विमला, मुकेश शेदी जी हमारे साथ है। वही मैं पूछ रही थी कि और गाना कब लेकर आए हमारे लिए। और यहाँ पर जामाक, आपको पता है उनको हमारे हिंदी गाने बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ, वो सिका के साथ साथ हिंदी गाने भी गाते हैं, बजाते हैं, सब कुछ करते हैं। उनका भी हम स्वागत करते हैं। गंगाराम फैमिली के लिए चलिए नेक्स्ट गाना हम डेडिकेट करते हैं। और साथ में यहाँ पर एक कौन है हमारे से, ऐशनवी। हाय ऐशनवी। और सुबी कहते हैं भाई आपको दो दिन मिस किया हमने। हमने भी किया, लेकिन अच्छा लगा कि आपने थोड़ा हमें मिस किया। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, प्लीज़ अपना नाम लिखिएगा ना, क्योंकि कभी कभी हम कुछ ऐसे नाम होते हैं जो हम प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। सो प्लीज़ लेट मी नो। लवली गाना विकिंग, थैंक यू सो मच। एंड बबीता जी नमस्कारम, कैसी हो आप? माया रामदोस जी आ गई, हमारी प्यारी सी माया जी, तो आपको नमस्ते। और आपके साथ साथ भी और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे लाइव में जुड़े हुए हैं। अंजी और मुगम, हेलो अंजी, कैसे हो जी? थैंक यू बबीता जी, थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमारे साथ साहिल जुड़ गए हैं, कहते हैं कि भाई क्या रंग है। हाँ वही है, रंग भी है, ढंग भी है, सब कुछ है। राधिका ननकू सुकलाल का वेलकम है। सूर्या को हम नमस्ते कहते हैं। शैला बाई तिलिंगम, गुड आफ्टरनून माय डियर रंभा, हो नमस्कार। कनगी, थैंक यू सो मच। एंड हेमा कहाँ है, मालिनी, चलिए हेमा जी का भी स्वागत करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मनोज गुप्ता जी भी हैं। खान कैसे हो आप? मुझे पता है आप कुवैत से हमारे साथ जुड़े हैं ना। लो भाई, प्यार मोहब्बत की बात कर रहे थे और यहाँ पर भी गाना कुछ ऐसा ही है कि मोहब्बत है क्या चीज़, हमको भी बताओ, किसने शुरू की और ख़त्म तो नहीं होता। जब से शुरू हुआ है प्यार, बस प्यार ही प्यार है। शीतल शर्मा वॉचिंग फ्रॉम फिजी आइलैंड, हाय, हमारी लाइव के साथ जुड़ी हुई हैं, थैंक यू सो मच।

सुहाना सफर, सुहाना सफर। दिन के 12:36 आज हैं 27 मई, वेडनेसडे का दिन, और यहाँ घड़ी इशारा करी है कि विरिता वक्त तो भाग ही रहा है। हाँ बिल्कुल भाग रहा है। चलिए इससे पहले कि हमारे लिसनर्स मिस हो जाए उनका नाम ले लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा था ना, रेडियो श्रीनगर, ये हैं हमारे दोस्त सुनील चरण जो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। वी हैव विम, शालू, लोलिता, वी आर, वी हैव आराध्या, आर रे, सीताराम धोनी, यश और हंस के लिए गाना मांग रहे हैं, और पूरी फैमिली के लिए केतिका शुभो, और साथ में है मिमी उनकी बेटी मिकीसा के लिए। माधुरी कहती है कल सिस्टर परी का बर्थडे था, परी हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड चलो भाई मिस कर दिया शायद मैंने, तो यहाँ पर परी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और वही कह रही थी कि कहाँ थी, नहीं थी कहाँ, दो दिन तो नजर नहीं आई। मैंने कहा झूठी, सैटरडे संडे को भी तुम्हें नहीं आई थी, दो दिन कहाँ, चार दिन हो गए। चलो जुदाई का ये लम्हे के जो लम्हे थोड़े लंबे हो गए ना, अभी कोई बात नहीं, हम पूरा वसूल कर लेंगे। शोभा जी का हम वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। कैसी हो शोभा जी? सब बढ़िया, सब ठीक। और यहाँ पर हम नेक्स्ट गाना जो है गाना डेडिकेट करना चाहेंगे बेस्ट फ्रेंड के लिए, और आपने उनका नाम नहीं लिखा, खुद का नाम नहीं लिखा। परी कहती है कि कल मेरा बर्थडे था, वही तो मैं कह रही हूँ कि सबने बोला कि आपका बर्थडे था, तो ऐसा करते हैं नेक्स्ट गाना स्पेशली आपके नाम डेडिकेट करते हैं, और आपके लिए बहुत सारा प्यार है। यहाँ पर हमारे साथ जज साहब जुड़ गए हैं और कहा कि प्रेम रोग, मैंने कहा हाँ भाई ये वो रोग है जिसका कोई इलाज नहीं होता। चले बर्थडे के लिए यहाँ पर हम आपको विश करते हैं। यहाँ पर कहते हैं खान जी कि हाँ बिल्कुल, कुवैत से मैं अकेला ही हूँ जो आपका प्रोग्राम सुनता हूँ शायद, क्योंकि मैं अकेला ही मैसेज करता हूँ, तो अगर वहाँ से और भी लोग हमें सुन रहे हैं तो प्लीज़ हमें आप बोलिएगा उनसे कि वो हमारे साथ जुड़ जाएं हमारी लाइव में, आपकी फैमिली को, और यहाँ पर हमारे गाने एंजॉय करें, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ रेशमा नागची दीदी हमारे साथ हैं, उनको कहेंगे प्रणाम, नमस्कार, स्वागत, बड़े दिन हो गए आपके मैसेज नहीं आए, आपने दूर से ही याद किया, थैंक यू सो मच। और अभी के लिए जो नेक्स्ट गाना होगा विशिंग अ बिलेटेड हैप्पी बर्थडे यहाँ विकिंग की तरफ से परी के लिए, और परी के लिए बहुत सारा प्यार भेजा गया है, हमारी पूरी फैमिली है, साहिल भी हैं, उनको बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, उनका हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं। इंदिरा मुतो सिंह जी नमस्ते। चलिए जी, तो हमने जैसे कहा कि हम गाना डेडिकेट कर रहे हैं परी के लिए, तो ये रहा

0: खाना सफर।
1: चलिए जी, यहाँ पर दीप्ति जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो नेक्स्ट गाना गंदावड़ी फैमिली के लिए। अक्रम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। और रेशमा राम किशुन जी, क्या बात है, आ गई आप, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। एंड यहाँ पर शायद और भी बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, और चलिए मिलते हैं हम उनसे थोड़ी देर में। अभी जो है हम नेक्स्ट गाना डेडिकेट करेंगे फॉर रुक्मिनी, फॉर बीना, जितेन दुलवा, करनेल सिंह इटली से हमें साथ दे रहे हैं, सत श्री अकाल आपको, अविनाश, वशिष और करण, उनकी मम्मा की तरफ से उनके लिए होगा गाना। और अकरम जी वेलकम, स्वागत है आपका। एंड ऑल्सो यहाँ पर हमारे साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं युवान, जो कि 24 ईयर्स ओल्ड के हो गए हैं, उनकी मम्मी रेशमा, पापा विकाश और नक्चदी फैमिली की ओर से उनको विश कर रहे हैं वेरी हैप्पी बर्थडे। हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं टिकटॉक पे, उन सब ने उनको बहुत सारा प्यार भेजा है, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। नेक्स्ट गाना सबरीना जी नमस्ते आपके लिए, और साथ ही साथ ये गाना हम डेडिकेट करते हैं उन दोस्तों के लिए जो अभी काम पर हैं, लेकिन काम कर रहे हैं, कान इधर है।
2: You're listening RM Free Radio.

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: 12:50 और यहाँ पर सुहाना सफर में हमारे साथ जुड़ गए हैं किरण। जी हाँ, बहन कहते हैं माँ को प्रणाम करते हैं, बिल्कुल अभी मदर्स डे है ना, माँ को थोड़ा सा प्यार, माँ के घर चले जाना, माँ को खाना मत बनाना। जब मदर्स डे होता है तो क्या करते हैं हम सभी, मम्मी के यहाँ चले जाते हैं, फिर मम्मी खाना बनाती हैं, डिज़र्ट बनाती हैं, घर साफ़ करती हैं, फिर खाने के बाद बर्तन धोती हैं, सब कुछ करती हैं। कम से कम मदर्स डे पे तो उनको कुछ मत करने देना। कल्याणी हरी जी, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर हमारे साथ जो दोस्त जुड़े हुए हैं, थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। चले जी, यहाँ पर अजय, दिव्या हैं, उनकी सासू मां नंदा पुनीता के लिए गाना उन्होंने मांगा है। वी हैव रेखा, जिमी, राजा ओजाय साथ

महनिश्वी एंड वी हैव किरण कतोना. ऋषि देव क्या बात है ब्रो, आ गए, आते रहो. यहाँ पर शेवी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. हेलो मेरी जान, कैसी हो? रियाद महरेज, थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत थैंक यू. आपको भी शेवी एंड थैंक यू. मुँह खुआश कहती है. यहाँ पर शैला बाबूराम हमारे साथ हैं, कहती है मेरे लिए गाना चला दीजिएगा, अभिमान फिल्म का गाना तेरी बिंदिया. ठीक है, मैं चलाती हूँ ये गाना अभी. इस गाने के बहुत सारे लोग हैं दीवाने, अभी सभी यही गाना मांगे, देख ला. तो ऐसा करते हैं, नेक्स्ट गाना आपके लिए कुसुम का वेलकम करते हैं प्रोग्राम में. और साथ में यहाँ पर हमारे जो लोग जुड़े हुए हैं वो हैं कौन, वो है डॉन. चलो जी, डॉन तो नहीं है लेकिन हाँ, डॉन की बहन है यहाँ पर. Continuous music.

आरती सदा सिवन हमारे साथ हैं. आई लव यू टू शवी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी. एंड ऑफ कोर्स गाने के साथ आगे बढ़ते हैं. चले सुनते हैं खूबसूरत सा गाना. फिल्म आपके लिए है प्यार का मौसम.

पर हमारे साथ हैं भरद्वाज फ्रॉम लंदन. थैंक यू फॉर लविंग दिस शो. किशोर जी का गाना तो है हमारे पास, चलाएंगे थोड़ी देर में. और मीनाक्षी आपके नाम भी.

0: चलिए नेक्स्ट गाना हम डेडिकेट करते हैं तानिया के लिए. हाय तानिया, थैंक यू. अमृता जी नमस्ते. और नाजिमा नाज कहती हैं कि भाई हमें हमारे जमाने याद आ गए.
1: You're listening RM Free Radio.

0: सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं सुमायरा से संक्षिप्त समाचार. सुमायरा आपको नमस्कार.
1: नमस्कार रादाब. कल राष्ट्रसभा में ऊर्जा मंत्री पैट्रिक कासियावादेन ने सौर्य पैनल्स बिठाए जाने की परियोजना के बारे में जानकारियां दी जो बिजली के उत्पादन के लिए सरकारी इमारतों पर लगाए जाएंगे. 11 मेगावाट परियोजना को शुरू किया जाएगा जिसका समर्थन संयुक्त राष्ट्र ग्रीन फंड और मिशन सरकार द्वारा किया जाएगा. कुल 660 मिलियन रुपये निवेश किए जाएंगे. मामी गवैतो मांग को शर्त पर रिहा नहीं किया जाएगा. कल सुप्रीम अदालत ने मलगासी उद्योगपति की मांग को ठुकराया. वो बेल एंड रिमांड कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे थे जिसने 30 दिसंबर 2025 को उनकी रिहाई पर एतराज जताया. मनी लॉन्ड्रिंग के दो अस्थाई इल्जामों के तहत मामी गवैतो मांग पुलिस हिरासत में ही रहेंगे. आज सऊदी अरब में सभी हाजी आखिरी रिवाज मुकम्मल कर रहे हैं. आज खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहिम की सुन्नतों पर अमल किया जा रहा है जिन्होंने रब का फरमान बग़ैर किसी सवाल से कबूल किया. आज हमारे मोशन हाजी भी शैतान का अक्कास करने वाले 3 सुतोनों की तरफ कंकर फेंकने की सुन्नत पूरा कर रहे हैं और ईद उल अधा वहाँ मना रहे हैं. कल इसराइल ने लिबनान के दक्षिण पूर्व में हवाई हमले किए. दर्जनों लोगों के मारे जाने

0: खबर है 31 लाशों की पहचान की जा चुकी है जिनमें कई बच्चे शामिल। इसराइली फौज का कहना है कि उसने हिजबुल्ला के 100 से ज्यादा मूल ढांचों पर हमला किया। तो अभी के लिए बस इतना ही, शोक समाचार सुनिए। लुवदाकोचिया में 91 साल के 91 years old श्री प्रेमदत्त जाटुआ जो प्रेम के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम सवा चार बजे इनकी पत्नी ज्ञानती जाटुआ के घर लुवदाकोचिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मिजिन कौंदेमास की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4:15 PM। रॉयल रोड नोवेल फ्रांस में 83 साल के 83 years old श्री राधाशो फुलमोन जो प्रेम के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल जुमेरात को डेढ़ बजे इनके बेटे रमेश फुलमोन के घर रॉयल रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारी जानी रोजबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1:30 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: NBC Play, NBC Radio.TV. All in free radio.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर। सुहाना सफ़र प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं हम, और यहाँ पर सुहाना सफ़र इस प्रोग्राम में जो अगला गाना होगा पूर्णिमा फम से लिया गया है वो गाना, और इस गाने को हम डेडिकेट करना चाहेंगे हमारी तमाम लिसनर्स के लिए। जाहिद अकरम, मेधा एंड प्रकाश हमारे साथ हैं, विनायक, जानवी, अनुराधा, जमाल शाह, तानिया उनकी मम्मी संगीता कन्या के लिए गाना मांग रही हैं जो रहती हैं मौसर मौसरे, कविता दुलीप, शारदा रिशोल, साथ में है ग्रेस, कमला, गुरु फ्रॉम पेरिस उनकी वाइफ वीना गंगादे उसके लिए गाना होगा। मुस्ताक खान आपका भी हम वेलकम करते हैं, शारदा लखनऊ, दिवांश उनकी दादी सीता, पुपु श्वेता के लिए गाना मांग रही हैं, और यहाँ पर जो गाना भी हमने चलाया इसके चलते बहुत सारे लोगों ने इसको पसंद किया। वी टी हमारे साथ है, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, और यहाँ पर गाना होगा आपके लिए। बहुत सारे लोग हैं जो टिकटॉक पे हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और कहते हैं कि आप कहाँ से हो, ये प्रोग्राम कहाँ से चल रहा है। भाई मॉरिशस का ये जो नेशनल रेडियो टीवी स्टेशन है वहाँ से, और ये है रेडियो मनोरंजन RM3। तो थैंक यू सो मच जी, हमारे साथ आप ज्वाइन कर चुके हैं। और यहाँ पर आयशा हमारे साथ है, उनका भी हम वेलकम करते हैं प्रोग्राम में, कहती हैं कि जैसे छुट्टी मिलती है आ जाते हैं, हेलो बोल के निकल जाते हैं। शैला बाबूराम आपके लिए गाना होगा, और साथ में ये गाना हम डेडिकेट करते हैं आपके लिए। मुझे पता था आयशा आप भाग कर ही आओगे, लेकिन भाग के फिर चले जाओगे। भाई यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, इतने सारे गाने हैं। वीटी कहते हैं कैन यू प्ले अ सॉन्ग एज आई एम ऑन वेकेशन विद फैमिली और फ्रांस से, वो हमें सुन रहे हैं। ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर यू एंड सम मोर सॉन्ग्स, व्हाई नॉट। बुस्को कैसे हो, थैंक यू, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। चलिए तो इसी के साथ अभी हम गाना जो है आपके लिए चला रहे हैं, और जैसे मैंने कहा हमारे पास अभी बहुत सारे गाने हैं। पहली बार हमें एस्थर ने ज्वाइन किया है प्रोग्राम में, थैंक यू सो मच। वैसे आप हमें रोज़ सुन सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे ये प्रोग्राम शुरू होता है 12 बजे और चलता है 2 बजे तक। मोहिनी दीनू हमारे साथ प्रोग्राम में, दीपक बिहारी का भी हम स्वागत करते हैं, और थैंक यू सो मच। ऐसा लगता है कि हम किसी की ज़िंदगी में अगर थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी धूप ले आए तो क्यों नहीं।
1: RM3 Radio.

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: तुम बिन जाऊं कहां कि दुनिया में आहा क्या गाना है क्या गाना गाना तो छोड़ो आवाज सुनो आप रफी साहब की हाय क्या करूं मैं बच्चे की जान लोगे रवि साहब 1:18 और यहां पर हमारे साथ हर्षिका कहते हैं कि नेक्स्ट गाना फॉर माय लव केशव ओके केशव के लिए गाना मांगा चलो ठीक है वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग थैंक यू सो मच ये है एथर फ्रॉम इटली नो इट्स फ्रॉम फिजी थैंक यू सो मच फिजी से बहुत सारे लोग हमें सुनते हैं हाय गाइस एक हेलो ड्रॉप कर देना मुझे भी पता चले कि फिजी से कितने सारे लोग हैं अमिता मुहाबिर कहती हैं हाय फ्रॉम स्पेन अमिता मुहाबिर एंजॉइंग थैंक यू सो मच यहाँ पर गुरु कहते हैं कि गर्मी बहुत है अभी पेरिस में गर्मी शुरू हो गई कतीबा मंगर कैसे हैं आप जी आपका हम वेलकम करते हैं प्रोग्राम में और यहाँ पर सरन राज और चंद्र हमारे साथ हैं लेकिन आपने क्या लिखा मुझे समझ में नहीं आया चले कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ यहाँ पर जो लोग गर्मा गर्म चाय कॉफ़ी ले रहे हैं वैसे मोहिनी जी ने मुझे चाय कप केक और एक स्लाइस भेजा है केक का क्यों किस खुशी में ये तो बताया नहीं लेकिन थैंक यू सो मच ओके यहाँ पर जो नेक्स्ट गाना होगा हम शमिला चुनीलाल के नाम डेडिकेट करेंगे उम्मीद करती हूँ कि जो गाना हमने चलाया आपको बहुत पसंद आया ठीक है जी और साथ ही साथ यास्मीन कहती हैं कि मैं तो हमेशा एंजॉय करती हूँ आपके गाने थैंक यू मेरी जान थैंक यू सो मच वैदी ही इतनी देर लगा दी आने में सेकेंड आवर में आ रही हो इतनी देर कैसे हो गई चलो कोई बात नहीं आ तो गई कम से कम पता है अभी बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कल ईद सेलिब्रेट करना है ना तो उसी की तैयारी में लगे हुए थे चलो तो आप सभी को ईद मुबारक एंड हैप्पी मदर्स डे विश करी है और साथ में यहाँ पर जो गाना आ रहा है दीपक जी आपके लिए वो कहते हैं कि आपका लाइव जो है स्लो मोशन में चल रहा है हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपको पता है क्या करना है जिनको पता है वो करना शुरू कर दें और बाकी हमारा गाना एंजॉय करें
2: RL Free Radio.

0: खाना सफर खाना सफर।
1: चलिए जी, यहाँ पर साथ दे रहे हैं आप लोग हमारे, और जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे और भी बहुत सारे दोस्त हैं जो जुड़े हुए हैं, अगर मैंने मिस कर दिया तो मैं फिर से बोलती हूँ। वे हाव सिमी रामदत्त, संजय यादव, शिखा, और ये गाना जाएगा टू लव केशव, यासिन, बिंता, सैंडी, और गाना जाएगा चाची मसूदा के लिए जिनका आज बर्थडे है, सुरैया हाजरा, और साथ में नीज जो फ्रांस है उनको हैप्पी बर्थडे विश कर रही हैं। मिष्टी हिमाक्षी के लिए गाना उनके मम्मा रेशमा की तरफ से। प्रेमिला जो है वो बेल्जियम से है। लीना हमें बहुत सारा प्यार भेज रही है। क्षमा कहते हैं मेरी भामी माँ, उनका बर्थडे था कल, उनके लिए गाना ज़रूर, भाभी माँ आपके लिए गाना। और यहाँ पर नज़ीला रियाज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, साथ देते रहिए। और जितने भी लोग हमारे साथ हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर सनफ्लावर है, उन्होंने कहा नमस्ते विदिता जी, लेकिन उनका असली नाम मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो एक हेलो एक हाई भेज सकते हैं, क्योंकि हमारा टिकटॉक अभी लाइव है।
2: You're listening RM Free Radio, Radio, Radio.
1: And this one goes especially Jimmy के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं।

सुहाना सफर। दिन के 1:31 और चलिए यहाँ पर गाना संजना के लिए होगा, साथ में राजेश और प्रकाश के लिए फ्रॉम इंदिरा, रोशनी दयाल, ये गाना जिमी की तरफ से, और वीमा पेंचा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, संतना दुखवा मौतालविया से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एंड साथ में यहाँ पर आप लोग शायद हर्षिनी, हाय हर्षिनी कैसे हो आप, तो ऐसा करते हैं हर्षिनी के लिए गाना हम डेडिकेट करते हैं, और साथ में ये जो नेक्स्ट गाना हम डेडिकेट करेंगे जो काम करें उनको कहेंगे बोकू खास। दीप्ति जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दीपक बिहारी जी आपका भी हम एक बार फिर से वेलकम करते हैं प्रोग्राम में, और सच कहूँ तो यहाँ पर हमारे इस प्रोग्राम में इतने सारे लोग हैं।

जैसे कि तेज सोनातन जी अभी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और पापा आम फादर संजना फादर संजना देवी कुछ मैसेज आपका मुझे समझ में नहीं आया थैंक यू सो मच लेकिन हाय जॉर्डन हाउ आर यू तो ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो हमारे गीतों को पसंद करते हैं हमारे साथ गाते हैं उत्तम जी नमस्कार वेलकम आपका एंड गाने में क्या है ना कि यहाँ पर हर तरह के गाने होते हैं और मैं कोशिश ही करती हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम में हर किसी को कोई ना कोई अपनी पसंद का गाना मिल जाए जिसे सुनकर उनको अच्छा लगे खुशी महसूस हो तो ऐसा करते हैं अभी अगला गाना होगा वो हम आशा जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में पेश करने वाले थे लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक और गाना है लता जी की आवाज़ में जिसकी फरमाइश की गई थी फिल्म का नाम है पूनम की रात लता जी की आवाज़ में आइए गाना सुनते हैं

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: चलिए जी, हम किसी को उदास नहीं छोड़ेंगे और यहाँ पर सबका नाम लेना जरूर चाहेंगे। स्वराज हमारे साथ हैं, विशाल बोनापिची आपको हर हर महादेव। वैदेही कहती है मेरे फ्रेंड्स हैं टीना, रक्षा और वेदना, उनके लिए गाना जरूर क्यों नहीं। और साथ में यहाँ पर गाना होगा आपके लिए, जी बिल्कुल, आई मीट यू वेरी सून, आई मीट यू वेरी क्विक। ओके, यहाँ पर हमारे साथ जो नेक्स्ट है परी, हाँ परी के लिए भी हम किसी को ढूंढ रहे थे, चलो वो जल्दी मिल जाए। और बहुत दिनों के बाद ये गाना सुनने को मिला, ये है सीता जी। मैं यही तो कोशिश करती हूँ। यहाँ पर राज सिंह जी आपके लिए गाना होगा और साथ में ये गाना हम डेडिकेट करेंगे आप के लिए। यहाँ पर हमारे साथ हैं कौन मैं नाम भी भूल गई अभी अचानक। चलिए जी, तो गाना होगा कलावती जी के लिए और वो भी हमारे साथ हैं, हमारे गीतों को अभी गुनगुना रहे हैं। गाने की बहुत सारी फरमाइशें आई हैं, हम कोशिश कर रहे हैं सबकी फरमाइश को नोट करने की। जैसे कि यहाँ पर उत्तम जी ने कोरा कागज़ था मन मेरा, ठीक है मैंने नोट कर लिया। अभी क्या ना, मैं को सारे लोगों की जो डेडिकेशंस हैं वो पढ़ रही हूँ, लेकिन जो गाने की फरमाइश है ना वो मैं अभी नोट कर रही हूँ, ताकि जैसे मुझे मौका मिले इस गाने को मैं ढूंढूं, वरना एक बार मैं बैठ गई गाने ढूंढने पर इसके बाद मैं आपको मिस कर दूंगी। सो अभिषेक, वेलकम टू रेडियो मनोरंजन। सूर्या, गुड टू सी यू टू। वैसे आपने भी गाना मांगा है, वो गाना शायद मेरे लिस्ट में है, मैं देखती हूँ, मैं चेक करती हूँ, जैसे गाना मुझे मिलता है मैं उसको प्रोग्राम में शामिल करती हूँ।
2: RM3 Radio.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: लो भाई सुहाना सफर धीरे धीरे कर कर अभी समाप्त होने को ही है। आज वैसे भी वेंसडे हैं और हमारा प्रोग्राम 2 बजे तक है, बस 15 मिनट रह गए हैं। मनोज पिर्थिया उनके वाइफ विमला के लिए गाना मांग रहे हैं जो सेवास्तोपोल से है। स्वराज जो है वो नेदरलैंड से हैं, साथ दे रहे हैं। अनोर की हमारे साथ हैं। नजीला रियाज उनके सिस्टर और मॉम के लिए गाना मांग रहे हैं जो बीमार हैं, तो आई होप कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं और हमारे गाने जो थोड़ा मैजिक का काम करते हैं। सरिता रामजन जो है वो भी हमारे साथ हैं। सरोज हैं, आरती हैं, वैदेही जी थैंक यू सो मच। और यहाँ पर जगदीश जी आ गए हैं। जगदीश जी नमस्ते, कैसे हैं आप? सब बढ़िया, सब ठीक, थैंक यू आने के लिए, हमारे प्रोग्राम में छाने के लिए। और यहाँ पर नेक्स्ट गो गाना होगा वो हम किंजल शाह के नाम डेडिकेट करते हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, थैंक यू। वैसे तो मैसेज यहाँ पर कुछ कम ही लोग भेजते हैं और इतने नाम जो मैंने लिए ये कम बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर इनसे ज़्यादा भी लोग हैं जो हमारे प्रोग्राम के साथ ज्वाइन रहते हैं लेकिन कभी मैसेज नहीं करते, बस एंजॉय करते हैं। सो थैंक यू गाइज। जय श्री जी नमस्कार आपको। प्रिया लक्ष्मण नेक्स्ट गाना उनके हस्बैंड, उनकी बेटियों के लिए, उनके दामाद और उनकी फैमिली के लिए। और

साथ में यहाँ पर गाना जो है हम अभी यादव अमरीश आपके लिए पवन के लिए गाना, ओके जी पवन जी आपके लिए गाना होगा। तो चलिए देखते हैं कि अभी कौन सा गाना है जो आपके दिल तक पहुँचे।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: जी हाँ दोस्तों, अब हमारे जाने का भी टाइम

0: हो रहा है, अब हमें आपको बाय बाय कहने का टाइम आ गया है, लेकिन चलने से पहले मूड थोड़ा सा ऐसा बना के जाएंगे कि आप झूमते रह जाओगे, गाते रह जाओगे। वैसे तो मेरे पास फरमाइशें बहुत सारी हैं, सॉरी यहाँ पर मैं बहुत सारे गाने नहीं चला पाई। कोशिश मेरी रहेगी कि कल मैं सारे गाने, अभी जितने भी गाने हैं ना, ये मैं सारे गाने अभी अगले यानी कि कल की प्लेलिस्ट में शामिल कर दूंगी, और इसके चलते आपको अपना गाना सुनने का मौका मिल जाएगा। ये काम मैं अभी थोड़ी देर में करूँगी, 5 मिनट में, ठीक है। तो मेरे जाने का भी टाइम हो गया है, और यहाँ पर हम नहीम को हेलो कहते हैं, सिरतन फैमिली के लिए हम गाना डेडिकेट करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर गाना जो होगा गाना डेडिकेट करते हैं आप सभी टिकटॉक के हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनके लिए। गाना कौन सा होगा? वैसे गाना जो है मेरे ख्याल से आपको पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ पे मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का एक बहुत ही प्यारा सा गाना हम लेकर आए हैं आपके लिए, और ये जो गाना है इसमें मैं अपनी तरफ से बहुत सारा प्यार छोड़े जा रही हूँ आपके लिए। गाइए, झूमिए, नाचिए, डांस कीजिए, आपका जो भी मन करे आप कीजिए, आपकी ज़िंदगी है, इंसान को चाहिए कि वो खुश रहें। और माधुरी जी थैंक यू, आप भी हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहें, और हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप सभी हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और यहाँ पर एक और गाना है जिसकी फरमाइश आई थी, मैं वही सोच रही थी कि ये जो गाना है इसकी फरमाइश आई थी, चलिए इसी गाने के साथ हम आपको बाय बाय कहते हैं, मिलते हैं आपसे अब हम कल दिन के 12 बजे, प्रोग्राम रहेगा आपका सुहाना सफ़र, शर्मा जी आपके लिए भी।
1: RL3 Radio.

करना यही है कि कल 12 बजे हमारे साथ जुड़े रहना है। शहनाज की तरफ से उनके हबीब मुकीम जिनको बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, और रेखा जी जो घर पे हैं साथ दे रहे हैं उनके लिए।

0: टाइम चेक दोपहर के 2 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार सुमायरा से। सुमायरा आपको नमस्कार।
1: नमस्कार आदाब। उपभोक्ताओं की हिफाजत के लिए एक नए कानून पर काम किया जा रहा है। आज सुबह पैदावारों पर मुनहसर एक कार्यशाला लगाई गई जिसमें उपभोक्ता सुरक्षा मंत्रालय के अफसरों ने शिरकत फरमाई। गैर सरकारी संगठनों और कुमेजा तथा दक्षिण अफ्रीका से नेशनल कंज्यूमर कमीशन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कल रात राष्ट्रसभा में कंस्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल पर बहसें जारी रखी गईं। विपक्ष नेता जूली जोंगा और कई सरकारी सांसदों ने इस विधेयक पर अपना अपना नजरिया पेश किया। इसका मकसद एक ऐसे आयोग का गठन करना है जो संवैधानिक सुधारों को प्रस्तावित करे, खासतौर पर बुनियादी हक की हिफाजत और लोकतांत्रिक इदारों की मजबूती शामिल है। मामी खवातों मांग को शर्त पर रिहा नहीं किया जाएगा। कल सुप्रीम अदालत ने मलगासी उद्योगपति की मांग को ठुकराया। वो बेल एंड रिमांड कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे थे जिसने 30 दिसंबर 2025 को उनकी रिहाई पर एतराज जताया। मनी लॉन्ड्रिंग के 2 अस्थायी इल्जामों के तहत मामी खवातों मांग पुलिस हिरासत में ही रहेंगे। और विदेश में आज सऊदी अरब में सभी हाजी आखिरी रिवाज मुकम्मल कर रहे हैं। आज खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहिम की सुन्नतों पर अमल किया जा रहा है जिन्होंने रब का फरमान बगैर किसी सवाल से कबूल किया था। आज हमारे मुर्शिद हाजी भी शैतान का अक्कास करने वाले 3 सुतूनों की तरफ कंकर फेंकने की सुन्नत पूरा कर रहे हैं और वहां ईद उल अधा मना रहे हैं। और इसराइल ने कल लिबनान के दक्षिण पूर्व में हवाई हमले किए, दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है। 31 लाशों की पहचान की जा चुकी है जिनमें कई बच्चे शामिल। इसराइली फौज का कहना है कि उसने हिजबुल्ला के 100 से ज्यादा मुठभेड़ों पर हमला किया। तो अभी के लिए बस इतना ही, शोक समाचार सुनिए। नंबर 29, नंबर 29 एमिल पिटो स्ट्रीट क्यूपिक में 74 साल की 74 years old बीबी फरीदा रहमत, बीबी फरीदा रहमत पैदाइशी नाम मादिया बुकस जो फरीदा के नाम से ज्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज 3:30 बजे इनकी बेटी बीबी अजीज़ा रहमत के घर एमिल पिटो स्ट्रीट क्यूपिप से उठाकर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3:30 PM। लुबर दागोचिया में 91 साल के 91 years old श्री प्रेम दत्त जाटुआ, श्री प्रेम दत्त जाटुआ जो प्रेम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज सवा चार बजे इनकी पत्नी ज्ञानती जाटुआ के घर लुबर दागोचिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंदे मास्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4:15 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
2: RM3 Radio.

0: धरोहर के सरोवर साप्ताहिक प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से तो आओ भोजपुरी सीखा धरोहर के सरोवर संगे।
1: नमस्ते, धरोहर के सरोवर कार्यक्रम प्रस्तुत करत है जा धरोहर के सरोवर कार्यक्रम तो लोके स्वागत बाई कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम महात्मा गांधी संस्थान और मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के मिलल जुलल सहयोग से तैयार करत है जा और हमने के बहुत अच्छा लगल कि हम के जन पहल का कार्यक्रम रहल दूसर का तीसर का चौथा ये सब सुन के आप लोग अच्छा प्रतिक्रिया दिला जा ढेर कोई हमने के फोन कर लन जा हमने से पूछ लन जा कि जो मॉरिशस के जो ब्याह गीत बा शादी गीत बा कहां से केला मिली वो लोग के अच्छा लगल ई जान के कि सब गीतवन में कौन चीज निमन बा ढेर कोई भोजपुरी नहीं जाने लन जा ओकर इतिहास एकर बारे में तो लोग के जानकारी देवत ही जा साथ साथ में मॉरिशस के भोजपुरी के जो मिठास है ओकर में जो खूबी है चाहे ओकर लोकोक्ति हो मुहावरा हो इस सब के तो लोग के हमनी सामने आना थे जा तो ऐसने आज एगो कार्यक्रम लेके आवत है जा और उस साथ साथ में तो लोग के बोलने लगा कि कार्यक्रम के तैयारी में हमनी के सहयोगी हमनी के टेक्निकी सहयोगी संजू तोकोगी के सहायता मिलत बा और हमनी आज के कार्यक्रम के शुरू करब जा बहुत कुछ बात लोग के बताए कि लोक कथा सुनब एकर में सोहर गीत सुनब एकर में तिलक गीत सुनब ओकर महत्व कौन ची हौ जनब साथ साथ में तो लोग के तनिकुन मॉरिशस के गायक द्वारा गावल भोजपुरी गीत सुनब आज जो भोजपुरी गीत लेके आल ही जा मॉरिशस के सुन के तोहर का बोलब जिगर गदगद हो जाए तो चल कार्यक्रम की शुरुआत करे थे जा गीत के साथ फिर हमने के कार्यक्रम के आगे

कमर में धोतिया हाथ में पुथिया, ये गीत सुन के कुछ ना कुछ तो आपके हो ही। अभी और वो एक दो महीना में 2 नवंबर जब आए तब इसने गीत तो लोग के सुनाब जा जो हमी के पुरखन लोग पर आधारित बा। ये गीत मॉरिशस के प्रसिद्ध गायक विनय रामदू गए हुआ। एक पीछे वो कहानी बात लोग के सुनाब जब ये गीत पहल का हलाब लोग सुन ले हुई बजा भोजपुरी बहार कार्यक्रम में स्वर्गीय दसोई जी गीत गैले रहलन। वो गीत लिखले हवन आचार्य शुक्लाल हमने के महात्मा गांधी संस्थान में हमी के वो सहयोगी हवन एजा परी सन्मुखिया जी यशी एक दिन के बोला करवी तो याद बा भोजपुरी बहार में एगो गीत है गीत हमने हाथ जो बहुत निमन गीत रहल तो ओकरा कहीं फिर से नहीं बनाई ला जा। तो हजे परी महात्मा गांधी संस्थान में जब गीत सुननी हम खोजत नहीं वो आवाज जो गीत संगे सकी न्याय करे तो हमने के भाई विनय रामदू के तो जन्मे करेला हरिहरन के अंदाज में गीत गावेलन वो निमन आवाज तो उनकरा बोले नहीं जा। तो पहला विनय हमनी के बोलन भोजपुरी उतना नहीं बतियाला तो हमी के यशी समय का भाई वो गीत के तनिकुन अपन अंदाज में गा के उकरा बुलक ऐसे गई कबल के गईलन। 2-3 दिन बाद जब बाल हमी के बोलन अरविंद है गीतवा जब हम गाय के शुरू करनी तो रोवे लगनी तो उ हाव भाव उकर में जोन सब जैसे बोल बा दर्द बा ये गीत में वो सकल उतारे। बहुत धन्यवाद अब जामी के भाई रामदू के। चला कार्यक्रम के आगे बढ़ावा थे जान नीतूषा हमेशा ये कार्यक्रम में बोलेला कि आवा भोजपुरी सीखे तो जरूर तुम लोग की बहुत कुछ सिखावा जा भोजपुरी के बारे में तनुकुन लोकोक्ति तनुकुन मुहावरा तनुकुन बुझवल हमने के भाई संजू है जे परिहवन बाद में एक दुगो बुझवल उनकरा उगर आगे फेंकब हवला 5 गो पूछले रानी 4 गो जने रहल अब रेला देख जा। चला तो आज शुरू कर अब जा एगो अपन रस पर जाता मसर मसर बोलेला अपन रस पर जाता तनुकुन समय देव थे ताकि आप भी सब सोचे कौन सी है अपन रस पर जाता। एकर अर्थ है अपने ढंग पर जाना यानी गोइंग ऑन हिज ओन वे न कोई के सुनता न कोई के देखता न आगे न पीछे अपन रस पर जाता। एगो दूसर अताल मारू पताल खंबा गारू अताल मारू पताल खंबा गारू कौन सी है अताल मारू पताल खंबा गारू यह बहुत जल्दी हेस्टीली बोल जाना ना हेस्ट मेक्स वेस्ट तो जल्दबाजी में काम नहीं करल जला। एगो गीत बा कुनल बाबूलाल गेले हुवन ओकर में एगो सुंदर अंश बा

नया सिरे गीत हमर देखे में उकर में बोला जल्दी के टीका कनपट्टी में लगेला। जल्दी के टीका कनपट्टी में लगेला यानी जब जल्दी जल्दी टीका दलब तो वो कनपट्टी में लग जाला। तो हवे बोला जला काम करब आराम से करिए जल्दबाजी में नहीं।

0: अपन अमला फमला लेके एगो दूसर और लेके आ जा इसने वो अपन अमला फमला लेके आलबा यानी अपने समूह या अपने परिवार को लेकर अपन परिवार अपन लैका फैका सबके लेके आलबा हो बेला अपन अमला फमला के लेके तो है और ले जा भी अपन प्राण के ढाटी देके अपन प्राण के ढाटी देके यानी अपने के दुख देके अपने के दुख पहुंचाकर टू सैक्रिफाइस। हाँ एगो और को ले जा दू गो ले जाओ अभी फिर कार्यक्रम के आगे बढ़ा जा रू अपना बिना सपना है अपना बिना सपना है गुटिया के धन कल्पना है अपना बिना सपना है गुटिया के धन कल्पना है कबो सुन ले वह अपना बिना सपना है गुटिया के धन कल्पना है अर्थात अपनी चीज तो अपनी ही होती है तो गीता सुनो ना अपने तो अपने होते हैं अपनी चीज तो अपनी ही होती है अन्यों की कोई सिर्फ कल्पना मात्र है। अपन खून जिसे बोले ना ब्लड इज थिकर देन वाटर एगो और ले ला जा अपन बिगड़ल न दूसर के बनल अपन बिगड़ल न दूसर के बनल एकर अर्थ कोची है अपना जैसा भी हो ठीक है अर्थात जोन कुछ हमी के है उस सबसे बढ़िया है व्हाट एवर इज आवर्स इज ऑलवेज बेस्ट एगो अंतिम ले ला जा और वो आपके बोल ले जा कि ये जो मुहावरा लोकोक्ति सब हमनी हमके कार्यक्रम में आनत है जा ई हीरा मोती पुस्तक से ले ला जा हीरा मोती पुस्तक जेकर में रिडल्स एंड सॉन्ग्स और ई बुझवल गीत ये सब लेखक स्वर्गीय दीमलाला मोहित जी के है उनकरा फिर से याद करत है जा हमी के बहुत धन्यवाद उनकरा उनकर परिवार लोग के निकला हमेशा बोल ला जा कि कबो ऐसा काम कर ब है जा नहीं हुआ पर तोहर धरोहर छोड़ के गलव ओई खातिर ई धरोहर के सरोवर कार्यक्रम में हमनी सब रखत है जा हवेला सुन ले जा अपन भला से भला नहीं अपन भला से भला नहीं पंच के भला से भला है अपन भला से भला नहीं पंच के भला से भला है बोली ले जाना कि हमनी से आगे सबसे आगे चाहला हमनी के समाज के बारे में सोचे के अंग्रेजी में बोलल गा ना वी शुड नॉट थिंक ऑफ व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर अस बट व्हाट वी कैन डू फॉर द कंट्री मार्टिन लूथर किंग बोले रहा तेकर अर्थ है अपन भला से भला नहीं पंच के भला से भला है अर्थात वंस वेलफेयर इज नथिंग बिफोर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी समाज के आगे रखब जा तसकब जा आगे बढ़े और उस समाज में जरूरी है कि हमनी के जोन पुरखन लोग हमी के जोन परदादा लोग परदादी लोग हमी के धरोहर के रूप में छोड़ ले वन जा ओकरा चाहेला बरकरार रह के इस सरोवर में ओकरा चाहेला बहते रह के यही हम की कार्यक्रम धरोहर के सरोवर के उद्देश्य है। अभी कार्यक्रम के आगे बढ़ा जा और एगो गीत सुनब जा फिर तनिकुन इधर एगो एक दू गो बुझवल हो कहे नहीं और एगो लोक कथा भी सुनब जा सब कुछ तो लोग खातिर न ले जा ई धरोहर के सरोवर कार्यक्रम में
1: RM3 रेडियो

धरोहर के सरोवर अपन साप्ताहिक प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से हर बुधवार 2 बजे से लेकर 3 बजे ले

0: RM3 Radio. Radio.
1: There you go, unplugged version के सोहर गीत और वैसन गीत भी आप बहुत पसंद करत हुआ हमी के ढेर कोई बोलन जा यही कोशिश बाकी एगो अलग ढंग से धरोहर के सरोवर कार्यक्रम के आने के और वो जैसे सागर मंथन होला था सब कुछ चाहे हमी खोजिला जा खाली अमृत लिख लिया भोजपुरी के वो अमृत भोजपुरी के अमृत के बात कही ला जा एगो चीज ऐसा बा जोन भोजपुरी में हमेशा अमर रही वो हमी के लोक कथा भोजपुरी लोक कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है और मॉरिशसीय लोक कथा के तक काबुल बा मॉरिशसीय लोक कथा पर आप मन बनाई यूनिवर्सिटी ऑफ जापान एकरा अलावा

0: अमरीकी शोधकर्ता लोग चीनी भाषा में अनुवाद एकर पर बहुत शोध कार्य होला। काहे कि हमनी के जो लोक कथा है ओकर में एगो खासियत बा, ओकर में एगो जिसे बोला भोजपुरी के रस बा, ओकर मिठास बा, और उधर कुछ सीखे के मिलेला ये सब भोजपुरी लोक कथा में। तभी तो लोग के वो भोजपुरी लोक कथा सुना जा उखरी मुसर। उखरी मुसर आप जान ला उखरी मुसर को जी हाँ, ये भी हमी के वो धरोहर है। उखरी मुसर हमी के चाची दादी लोग अभी सुनत हुए अंजार वो लोग के वो जमाना याद चला जब उखरी मुसर संगे वो लोग तरकारी में डाले के सब ओकर मसाला ओकर चटनी सब बनाओ थे लंजा। तो एक लोक कथा हमने एगो दादी पुजरी फ्लक लगे गरंजा वो हम के एक सुनैलन ओकरा फिर से बना के हमी के जोन विभाग बाहे जबरी ये कोशिश करत बाकी आप लोग भी जनबा ये सब लोग हता। संध्या के आवाज में डॉक्टर संध्या किनु के आवाज में ये लोक कथा सुनबा। बाद में तुनु के बताप की लोक कथा के जोन उकर एसेंस उकर मूल भाव को चीह एकर पर चर्चा कर जा भी लोक कथा सुना।
1: ई कहानी के शीर्षक है उखरी मुसर। दादी के सास शादी करके देश से आए, हैजा परी अपन बेटा बेटी के शादी कर लन। जब बटो शादी करके आए तब हैजा तर रात के बखत ओढ़े के चदर भी नहीं रहल, गोनी बिछा के सुतत रहलन जा। रात के उस सुनता कि ओरी किनारे उखरी मुसर बतियात हवन सा, सिल लोहरा बतियाता, झाड़ू बतियाता। सिल बोलता, तू सुतर हवे उखरी? उखरी जवाब दिलक, कहां से कब सुते, हमके तो बहुते ठंडा लगता। सिल बोलक, हमू तो नहीं सकत हैं सुते, हमर करेजा पर बोझा रख देले हवन सा, कैसे सुतब? उखरी पुछलक, कैसन बोझा रखल बा तोर करेजा पर सेल? सेल बोलक, लोहरा गे, लोहरा रखल बा। बगल में खड़ा खड़ा झाड़ू बोलक, हमर गोर तब बुझाट बा टूट गयल बा, खड़ा खड़ा, हमके सुते देतन सा त सुती ना। ई सब सुन के ओ बेचारे बहुते डर गए, जोर से हल्ला करलक। तब सास हाली से फ्लोम्बो लेके आए, देखे काहे पत्तो हल्ला करल बा। पत्तो बोलक कि ओरी लगे बहुते कोई बतियात हवन सा। सास अपन बेटा के बोलक, जो होने सुत, हम पत्तो लगे सुतीला। जब सासुओ के ई सब सुनायल, उठ के जाके देखलक तो दिखता कि ओखरी हिलता, सिल पर लोहरा रखल बा और झाड़ू खड़ा बा। तब सब के सुता के गोनी आन के सब के ओढ़ा देलक, तब जाके सास सुतल। सोचलक सब में प्राण बा, तबे ना अपन में अपन दुख सुनावत हवन सा। जब उकर आंख लगे लगल तब उखरी सिर झाड़ू फिर बतियालन सा, अब सरसंग से सुतब सा, अब हमनी के आराम मिली, कल फिरो उठ के काम करे के बा।
2: धरोहर के सरोवर साप्ताहिक प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से, आवा भोजपुरी सीखा धरोहर के सरोवर संगे।
0: उखरे मुसर तैकर में देखला जो ना पत्तो बाव घर में उपत्तो छोटा रहल, कहे कि पहले बहुत कम उम्र में शादी हो जाता है, 12 साल के 13 साल के। तो सास लोग कबो अपन पतो के कोनो चीज सिखाए के रहियन जा, त एगो कहानी एगो लोक कथा के माध्यम से प्रस्तुत करियन जा।

जैसे कर मैं सुनला कि सब जो झारू बा उखरी बा मुसर बा जांटा बा इस सब के चाहला निमन से रखे के नहीं कि उकर में जब मसाला पीस देला तो इसने छोड़ देबा नहीं वो लोग में भी जान बा तो ये वो सबक देवेला झाड़ू के कबो खरा नहीं छोड़ा जला जब अपन रसोई घर में काम कर लेबा चहला ओकरा धोई के निमन से तो ई लोक कथा में मिलल कार्यक्रम के आगे बढ़ाव जा हमी के एगो लोकगीत संगीत

0: तैयोगो लोकगीत
1: राम जन्म अंकिता पंडित की आवाज में। ऐसा गीत कबो ललना के रूप धारण करेला, कबो सोहर के रूप धारण करेला, इस सब पर चर्चा करब जा जरूर। हम के धरोहर के सरोवर कार्यक्रम में गो लैका के कोना डाल ले जा, हम के लैका लोग आके तो लोग के नमस्ते बोले लन जा और उस साथ में एक दो जानकारी भी। तभी हाल ही में हमनी मॉरिशस के राष्ट्रपिता सर सिव सागर राम गुलाम के जन्म के वर्षगांठ के संदर्भ में देश भर में अनेक गतिविधि के आयोजन होल और उजाने लजा। हम इंद्रधनुष नाम के वो पत्रिका पढ़नी प्रहलाद राम शरण जी कर संकलन कर ले हुआ, एकर में हमके बहुत जानकारी मिलल सर सिव सागर राम गुलाम पर कि वो भारतीय संस्कृति के कितना महत्व देवत रहल। जब हमने भारतीय संस्कृति के बात करी लजा तो उकर धरोहर भी तो उनका याद करी लजा, खास तौर पर इस संदर्भ में जे ये लोग इतना मेहनत नहीं करतन जा। तो आज हमने अपन धरोहर के नई शक्ति जा आगे लेके जाए तो को श्रद्धांजलि है उनका। और हमने के लैका यही बाघ जेकरा बोली लजा सर सिव सागर राम गुलाम बोटानिकल गार्डन जो पॉम्पले मूस में है उका परतन को जानकारी दे सुना।
2: नमस्ते नमस्ते सब कोई के नमस्ते, गुरुजी बहन जी सब के नमस्ते। हमार नाम है राजीव।
3: नमस्ते हमार नाम है मानसी। हम और राजीव मिलके तोहलो के बहुत कुछ सिखाओब जा।
2: हाँ संगीत दिखाब जा, सिखाब जा और बुद्धिमान बनब जा। अब चला हमनी के संगे राष्ट्रीय बाग के सैर करे। ये बाग देश के उत्तर में है। ये गांव के नाम एगो फल के नाम पर बा। ये गांव में एगो बड़ा अस्पताल बा। ये बाग में एगो बड़ा पेड़ बा। वो पेड़ सौ बरिस में एक हला फुलाला। याद आयल तालीपो वृक्ष। हाँ तालीपो वृक्ष। यही बाग में कमल के सुंदर सुंदर फूल भी बा। बाग में एगो महल बा के पाव के शातो दे मों प्लेजीर।
4: RM3 Radio.

के सरोवर अपन साप्ताहिक प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से हर बुधवार 2 बजे से लेके 3 बजे लेक और M3 पर द आवर भोजपुरी सीखा धरो

0: के सरोवर संगे
1: धरोहर के सरोवर, धरोहर के सरोवर,
2: धरोहर के सरोवर में उ भाग लेके आल है जा जहाँ परी आपके भी परी तनकुन अपन दिमाग लगाए के आप भी सकबजा बोले एकर उत्तर ढूंढे तनकुन समय दे अब जा। आज हमनी के भाई योगेश के पकड़ कर निजा है जे परी महात्मा गांधी संस्थान में घूमत रहल काम करे आ रहल। योगेश भाई ठीक बा?
3: हाँ ठीक बा।
2: भोजपुरी बतिया लीमन से?
3: हाँ लीमन से बचायला।
2: लालमाती रहेला?
3: लालमाती रहेला, घरे भोजपुरी बचायला सफीदा जी से।
2: अच्छा अच्छा, और भोजपुरी के कौन चीज से अच्छा लग रहा तोरा?
3: ये भोजपुरी के गाना और तनी सवाल जवाब, तनी जालोगे, तनी गीत।
2: कबो तोहर घर में या फिर घर के बहरा कबो बुझावल सुनले हुआ?
3: हाँ बुझावल सुनी है, पिताजी बहुत पूछेलन बुझावल।
2: अच्छा आज
3: मजाक मजाक में
2: तो आज तोहर से पूछब जाए दुगो बुझावल है ना, तनिकुल लंबा बा निमन से सुना। आप भी हम के श्रोतागण निमन से सुना। चार चिड़ैया चार रंग, खोता के भीतर एक ही रंग। फिर से बोली लजा। चार चिड़ैया चार रंग, खोता के भीतर एक ही रंग।
3: अच्छा, चार चिड़ैया चार रंग,
2: खोता के भीतर
3: भीतर एक ही रंग।
2: चलो एगो एगो टिप देला आपके, एकर से पूजा होला।
3: पूजा होला, चार चिड़ैया चार रंग, एक ही खोता। तो पूजा से एगो हमर दिमाग में आवता है एगो पत्ता होई,
2: बेल बेल आवता आवता आवता
3: बेल पत्तर नहीं, पान पान होई।
2: हाँ पान बितेल।
3: अच्छा
2: कहे कि उकर अलग अलग रंग रहेला।
3: हाँ हाँ,
2: पर जब उकरा चबई बा तब एक ही रंग हो जाला।
3: हाँ
2: खोता के भीतर एक ही रंग। चला एक अंक एकरा मिल गल।
3: धन्यवाद।
2: लालमाती रहेला नहीं?
3: लालमाती। हाँ
2: अच्छा लालमाती तो है। तनिकुन तोहर गांव के तनिकुन आगे जेबा तो कौंडिमास्क गांव मिलेला, कौंडिमास्क पावे गांव मिलेला, हो जा पर ढेर है तनिकुन जान जेबा।
3: अच्छा
2: एक पैर हिया एक पैर कलकत्ता, ओकर फर के ऊपर पत्ता। ध्यान से सुना। एक पैर हिया एक पैर कलकत्ता, ओकर फर, फर माने ओकर जो फुई।
3: हाँ।
2: ओकर फर के ऊपर पत्ता। अच्छा कौन फर के ऊपर पत्ता रहेला?
3: अच्छा तो फर के ऊपर
2: गाँव में ढेर मिलेगा
3: तो कौंडिमास में जनाना मिलेगा।
2: जनाना
3: हवे हो,
2: हवे सुना वना होगी जने ना लेकिन छोकरी।
3: हाँ।
2: निमन गीत है संजू भाई, ये गीत खूब गावेलन। अभी चा पिया तो नहीं, चा पिए के समय है 2 बजे से 3 बजे ले। और को ले ले जा। हम ओके देखत है उ हमके देखता
3: जी।
2: छोकरी
3: छोकरी छोकरी होई
2: ओकरा देखबे तो तोरा देख।
3: नहीं नहीं नहीं हमेशा नहीं होला,
2: नहीं देखेला। हम ओके देखत है उ हमके देखता।
3: अच्छा
2: कब होला ऐसा?
3: अब या तो सेल्फी लेवत हुआ।
2: हाँ।
3: या तो आईना में देखा जाओ।
2: हाँ उधर आज के जमाना में हुई तो सेल्फी।
3: हाँ सेल्फी
2: हो जमाना में ऐनक
3: ऐनक
2: ऐनक आईना।
3: अच्छा।
2: मीरा मीरा जब देखबत ता तू ओकरा देखत हुआ उ तोहरा देखता, तू और उ एक ही हुआ,
3: एक ही हुआ।
2: चल है मिल गल है लखाला तब बरिये लाल बीबी हा हा ही ही ही खेबत खाए के चीज है
3: ये तो आसान है
2: बोला था
3: लाल मिर्च।
2: मिर्ची चल मिर्ची ये मिर्ची बोला तब पॉइंट तो पीमा के हमने के अधर को याद आवत था भोजपुरी हो जा बढ़िया बोले जा हमने के भाई सुबग और वो हमने के गुरुजी लोग हमारे हो जा परी तो उन लोग के नमन करब जा। भाई योगेश बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद अरविंद, हम के को मौका मिलल तनी और कुछ कुछ जाने के बुझावल जाने के।
2: तो योगेश भाई को नौजवान हुआ और भोजपुरी बोले लन तमी के ही कोशिश बात लोग के बताए के कि भाषा में खाली गीत इधर उधर नहीं है, एकर में बुझावल है और नौजवान लोग भी एकर में भाग लेवत हुन जा। तो चला धरोहर के सरोवर कार्यक्रम के आगे बढ़ाव जा एगो गीत संगे और बाद में हमनी के दोस्त हम के सहयोगी जय गणेश डाउ सिंह जी के सुनब जा। उ हर सप्ताह नियन इ हलाले काल हुआ एगो तिलक गीत ओकर पर जानकारी दियन।

0: धरोहर के सरोवर अपन साप्ताहिक प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से हर बुधवार 2 बजे से लेके 3 बजे लेक और M3 पर तो आवा भोजपुरी सीखा धरोहर के सरोवर संगे
1: धरोहर के सरोवर धरोहर के सरोवर।
2: नमस्ते, धरोहर के सरोवर नामक हमने के प्रोग्राम में तो लोग के स्वागत बाती। आज एगो तिलक गीत लेके आल हैं कहोवा से समझी आवेलन। विवाह से पूर्व तिलक होवेला, आगे ई विधि शादी के एगो या दुगो समय आगे होवत रहल, किंतु आजकल विवाह के एक दिन आगे तिलक विधि संपन्न करल जाला। एकर बाद वे विवाह में गठबंधन होवेला। तिलक के दूसर नाम वरवरण है, इनकर फलदान वो बोलल जाला। ई विधि कन्या पक्ष के पुरुष द्वारा दुल्हा के घर संपन्न करेलन सर। ई विधि के पूरा करने खातिर दुल्हिन के पिता, भाई, चाचा आदि जालन सर। प्रस्तुत गीत में ई प्रश्न करल गेल बा कि केने से दुल्हा के ससुर ऐलन और के कर घरे आज सज्जन के लेके ससुर आल हवन, अपन संगे उ काहे चंदन के तिलक लेके आल हवन। तब बोलल गल के पूरब से दुल्हा के ससुर आल हवन, उ अपन हित मित के साथ हमर आंगन में बैस के तिलक चढ़ैयन। आज उ हमर दुल्हा के तिलक चढ़ैयन जोन से हमनी के नगर में आज उजाला फैलल बा। दुल्हा के नयन के काजल से उ बहुत ही सुंदर लगता और उ चौका पर बैस कल के बड़े आंगन में त बड़का दीपक जलल बा। दुल्हा के माथे से मटुकवा खूबे जली बा। दुल्हा राम नियन चौका चहर कर बैसले बा। उनकर माथे के तिलकवा बहुत ही सुंदर लगता। दुल्हा के माथे के तिलक आज बहुते जोली लगता। घर के भीतरे से दुल्हा के माँ अपन बेटा के देखत हवन, वो बहुते खुशी हवन आज उनकर बेटा के तिलक बाते। घर के भीतरे से दुल्हा के बहिनवो खिड़की से जाकत हवन और वो बोलता कि हमर भाई के माथे कितना ऊंचा बाते, उनपे तिलकवा से त ओ हमर भाई जस्टी शोभता। प्रस्तुत गीत में दुल्हा के तिलक विधि खातिर पूर्व से उनकर ससुर अन्य सज्जन के लेके आवेलन सर। दुल्हा के तुलना प्रभु श्री राम से कर ले हवन जा। साथ ही साथ देखबा कि ई गीत में तिलक के समय परिवार के स्त्री सदस्य के प्रसन्नता और हर्षोल्लास के वर्णन होल बा। गीत में ई स्पर्श होवेला के वर के तिलक के समय के विधियों में स्त्रीवन भाग नहीं लेवेलन सब, उ लोग द्वारे से ही विधि के देखत हवन सब। तिलक के बाद ही उ लोग बाहर आके दुल्हा के चुमेलन सब, चुमाई के विधि संपन्न करेलन जाओ। दोनों पक्ष के घी, चावल, अक्षत आदि से हवन होवेला। इनकर बाद कन्या के पिता या भाई पान के पत्ते पर चंदन घिस कर वर के माथे पे लगावेला। दोनों पक्ष के मिलल धान, तेल, हरदी और डूब से दोनों हिस्सा में बांटल जाला। एगो भाग कन्या पक्ष के लोग अपन संगे ले जालन सा और दूसर भाग के वर पक्ष अपन घरे रखेलन सर। उही हरदी तेल और डूब से हरदी विधि दोनों पक्ष के संपन्न होखी। इस गीत के सार बस यही है, तिलक न सिर्फ एगो रस्म है बलूक पूरा परिवार और समाज खातिर गर्व, गौरव तथा खुशी के पर्व है। गीत में भोजपुरिया समाज के सांस्कृतिक संवेदना, पारिवारिक एकता और धार्मिक आस्था सब कुछ झलकता। यही खातिर त आजो तिलक गीत सुनत सुनत मन भावुक होवेला और हमनी के परंपरा पर गर्व महसूस होवेला।

बहुत धन्यवाद बब्जा हमने के सहयोगी जय गणेश डाव सिंह के अबरी हला भी इसने को गीत लेके आपदा ब्याह गीत विवाह गीत ई जो एल्बम है मंगलाचरण महात्मा गांधी संस्थान में बनावल गलबा हमनी के ढेर कोई हमनी के फोन करके पूछलन जा कि ई सब गीत लोग के कहां से के मिले तो सगबजा आए महात्मा गांधी संस्थान में हिजा पर एक घर सीढ़ी बनल बा आप लोग सगबजा हमनी के हिजा पर जो विभाग भाव जैसे आके ई ले और कहे नहीं देश विदेश में जेबा शादी में तई सब गीत बजवाई बा अच्छा लगी सुने के एक नवा रूप नवा रंग दे के तो धरोहर के सरोवर कार्यक्रम हिजा पर समाप्त करब थे जा आपके बहुत बहुत धन्यवाद हमनी के साथ दिला हमनी के जितना सहयोगी लोग ही कार्यक्रम में भाग ले लन जा उन लोग के भी बहुत बहुत धन्यवाद हमनी के तकनीकी सहयोगी संजू तोको के भी धन्यवाद आज बजगल कहे कि योगेश के पकड़ के अनलग और उकर जोन बुझवल के हवला सब जन रहल अबरियाला जाना था तनिक नहीं जानी हुई खातिर योगेश के आन दिलक बहुत धन्यवाद संजू भाई फिर मिलब जा एगो नवा कार्यक्रम लेके धरोहर के सरोवर तबले हमनी के साथ देते रहिया नमस्ते।

0: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your station. बुधवार 27 मई आज की चर्चा कार्यक्रम मैं हूँ रत्ना उपस्थित हो चुकी हूँ आज के इस कार्यक्रम को लेकर जो स्वास्थ्य पर आधारित रहता है और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड नो टोबैको डे यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस। और जैसे कि हम जानते हैं समाज में आजकल ये समस्या हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, दीमक की तरह ये हमारे युवा पीढ़ी को खोखली करती जा रही है। ना केवल युवा पीढ़ी, हमारे जो वृद्ध वर्ग के लोग हैं, हमारे हर आयु के जो लोग हैं उनको ये बहुत ही हानि पहुंचा रहा है। और आज कल देखा गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ऐसे बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि हम लोगों को अवगत करा सके कि तंबाकू किस प्रकार से हमारे जीवन को हानि पहुंचाता है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये संदेश दे सके कि तंबाकू और अन्य मादक द्रव्य जो हैं वो जीवन में हमारे स्वास्थ्य को किस प्रकार से नुकसान पहुंचा रहा है। और आज हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्रालय से उपस्थित हुई डॉक्टर हीरा हमारे साथ जुड़ेंगी। आपको ये भी याद दिला दें कि इस कार्यक्रम के साथ हमारा प्रोडक्शन पर हमारा सहयोग दे रहे हैं, तकनीक पर हमारे साथ है कादिया, साथ ही साथ प्रोडक्शन असिस्टेंट उरुसा और हमारे प्रोड्यूसर हैं जिनेश। ये कार्यक्रम का सीधा प्रसारण रेडियो मॉरिशस पर आप सुन रहे हैं, इसका सीधा प्रसारण देख पा रहे हैं MBC के तीसरे चैनल पर और इस कार्यक्रम को आप फॉलो कर पाएंगे फेसबुक पेज पर। साथ ही साथ इस कार्यक्रम का रीब्रॉडकास्ट किया जाएगा दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के अंतर्गत रेडियो मनोरंजन पर। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं डॉक्टर फाइजा हीरा का जो हमारे साथ जुड़ चुकी है। डॉक्टर हीरा आपका फिर से स्वागत है।
3: नमस्कार, आदाब सारे श्रोताओं को।
2: हाँ जी, और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे वर्ल्ड नो टोबैको डे पर यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो इसको मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है?
3: तो हर साल में हम 30 मई को हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाए जाते हैं, नो टोबैको डे। तो इसमें हम सेंसिटाइज करते हैं लोगों को, हम दिखाते हैं कि तंबाकू कितना कैसे हमारे शरीर को कितने सारे डिजीज हो सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकता है। तो इस साल जो थीम है WHO के हिसाब से तो वो है अनमास्किंग द अपील काउंटरिंग निकोटीन एंड टोबैको एडिक्शन। तो ये टारगेट करते हैं स्पेशली यंगस्टर्स को क्योंकि वो टोबैको इंडस्ट्री जो है एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और जो बहुत सारे प्रॉफिट्स बहुत सारे पैसे करते हैं। तो वो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, टैक्टिक्स यूज़ करते हैं ताकि वो यंगस्टर्स और यंग एडल्ट्स और सबको अट्रैक्ट कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स की। जैसे सिगरेट में अगर हम लेते हैं एक एग्जांपल ऑफ वो कैसे कर सकते हैं, तो सिगरेट में वो फ्लेवरिंग डाल सकते हैं उसमें, तो अच्छे अच्छे फ्लेवर हैं, स्वीटनर हैं, तो वो जो निकोटीन का टेस्ट है, निकोटीन ऐसे पियो निकोटीन उसके बैड टेस्ट होते हैं, तो अगर वो उसमें एडिटिव डालते हैं, फ्लेवर डालते हैं तो वो अट्रैक्टिव हैं और वो जो

0: टेस्ट ऑफ निकोटीन है वो दब जाता है, तो ये अट्रैक्टिव है लोग. या अगर उसके पैकेज हैं, पैकेज अगर अट्रैक्टिव हैं तो लोगों को खरीदने का मन होगा. मॉरिशस में हमने हमारे रूल्स हैं कि हमारे प्लेन पैकेजिंग है और कोई भी पब्लिसिटी ये सब नहीं अलाउ है मॉरिशस में.
1: और जैसे डॉक्टर जी, जब हम बात करते हैं, आप बता रहे हो कि सिगरेट में स्पेशली जैसे निकोटीन पाया जाता है, तो देखा गया है कि इसमें भी बहुत सारे प्रकार हैं. जैसे भारत में तो आपने देखा होगा बीड़ी भी लेते हैं लोग, बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा है, पान मसाला है, ये सारी चीज़ें भी लेते हैं जिनमें टोबैको की मात्रा रहती है. तो इन सारी चीज़ों में हम क्या ये कह सकते हैं कि इसमें से सबसे ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है, या ये सारे खतरनाक हैं?
0: सारे खतरनाक हैं, लेकिन जैसे कुछ ज्यादा कुछ कम. जैसे हम गुटखा लेते हैं वो हाईली एडिक्टिव है और वो मेजर हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है. उसका कोई सेफ लेवल नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे ये गुटखा जो है वही च्यूइंग टोबैको है जैसे हम बताते हैं. तो ये एक सेफ नहीं है, कोई सेफ लेवल नहीं है. और देखा गया है कि एक साल में 650 मिल इंसान जान गवा सकते हैं
1: पूरे विश्व भर का, बता रहे हैं.
0: हाँ, पूरे स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में. तो ये स्टैटिस्टिक है दिया गया,
1: यानी
0: है
1: कहा गया, जैसे डॉक्टर बता रही हैं 6.5 लाख से भी ज्यादा लोग जान गंवाते हैं तंबाकू के सेवन के कारण.
0: हाँ, क्योंकि उसमें जैसे उसके प्रिपरेशन में ही एक चीज है उसमें जो हम बोलते हैं बेटल नट जो हम बोलते हैं, वो एक ग्रुप वन ह्यूमन कार्सिनोजन मानी जाते हैं जो इसमें डालते हैं. तो इसी से वो बहुत सारे कैंसर्स हो सकता है. और कैंसर्स के बगैर वो ओरल सब म्यूकोसिस फाइब्रोसिस हो सकता है और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है. तो ये सब
1: होने के
0: चांसेस हैं. अगर हम बीड़ी लेते हैं तो बीड़ी जो है वो बहुत चीप है.
1: हाँ जी,
0: ईजीली अवेलेबल, चीप है, लेकिन उसके जो कंटेंट है निकोटीन का वो बहुत हाई है. अक्सर 21 मिलीग्राम निकोटीन है उसमें. और अगर हम एक सिगरेट लेते हैं उसमें 1 मिलीग्राम हो सकता है. तो वो आपने देखा कितने ज़्यादा हैं. और वो ईजिली अवेलेबल हैं, फिल्टर नहीं है उसके. मैन्युफैक्चरिंग जब मैन्युफैक्चर करते हैं तब भी बहुत चीप
1: उसका
0: है.
1: जो प्योर फॉर्म है वही है.
0: तो वो जो लीफ लेते हैं उसको रैप करने के लिए तो वो बहुत धीरे से जलता है. तो इंसान को ज़्यादा फोर्स करना पड़ता है, ज़्यादा खींचता है, तो इससे कार्बन मोनोक्साइड ज़्यादा आ जाता है और उनके जो सब्सटेंसेस हैं कम्बशन के और ज़्यादा, क्योंकि सांस लेना बहुत फोर्सिंगली उसको जला रहे हैं. तो वो जो शीत का कम्बशन है उसके हिसाब से तो वो तौ ज़्यादा हो रहा है उस इंसान के शरीर में. और उसको उसके पास फिल्टर भी नहीं है. तो सब वो जो केमिकल्स हैं सब
1: डायरेक्टली
0: तो वो बहुत बहुत हाईली टॉक्सिक है.
1: बिल्कुल, मैं हमारे श्रोताओं को ये बताना चाहूँगी, जैसे डॉक्टर जी ने अभी भी बताया कि बीड़ी में उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और सिगरेट में कम, पर इसका ये मतलब नहीं है कि सिगरेट आपके लिए फ़ायदा करेगी, क्योंकि सिगरेट का लेना भी, धूम्रपान करना, ये चाहे किसी भी फॉर्म में आप ले रहे हो, वो आपके सेहत को लंबे रन में नुकसान पहुंचाता ही है. यानी इसमें कोई शक नहीं कि ये पॉइजनस है, ये बहुत ही ज़्यादा विषैली पदार्थ है. और मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी डॉक्टर जी, पैसिव स्मोकिंग क्या है? क्योंकि कई सारे लोग जानते हैं कि चलिए धूम्रपान, जो खुद धूम्रपान करते हैं, जो खुद स्मोक करते हैं, उनके लिए तो हानिकारक है ही, पर पैसिव स्मोकिंग क्या है ये मैं चाहूँगी आप हमारे श्रोताओं को बहुत ज़्यादा समझाएं. और क्या पैसिव स्मोकिंग भी खतरनाक हो सकता है?
0: तो पैसिव स्मोकिंग जो है, अगर कोई और इंसान स्मोक कर रहा है तो जो आसपास के लोग हैं वो ये ब्रीद करता है, इनहेल करता है, तो वो जो हेल्थ हैजर्ड हैं, जो बीमारियां हैं, बराबर का रिस्क, परसेंटेज रिस्क है. तो दोनों सेम हैं. अगर मैं खुद

0: तंबाकू ले रही हूँ या सिर्फ उसका जो धुआं है वो इनहेल कर रही हूँ तो सेम है, बराबर का बीमारी होगा।
1: यानी कह सकते हैं कि अगर घर में कोई धूम्रपान करता है तो घर में रहने वाले लोगों का भी चांसेस है बीमार पड़ने का।
0: हाँ, सेम चांसेस है, रिस्क सेम है।
1: उतना ही खतरनाक है। ऐसा नहीं है कि हम स्मोक नहीं करते पर हमारे फैमिली मेंबर में से कोई स्मोक करता है तो हमें कुछ नहीं होगा। बिल्कुल जैसे वो कह रहे हैं कि आप उसी एनवायरमेंट में रहते हैं, सांस लेते हैं, तो डेफिनेटली ये आपके बीमार होने के चांसेस को भी बढ़ा देता है। तो डॉक्टर जी, मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये जो तंबाकू है, टोबैको है, इसकी लत लगती कैसे है? मतलब मान लीजिए आजकल की जो यंग जनरेशन है, जो ग्रोइंग जनरेशन है, उनके लिए आजकल, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं, ये एक तरह से उनके मन में है क्यूरियोसिटी, जानना है कि क्या ये लत लग सकती है, ये सोचकर वे लोग अपना पहला स्मोक लेते हैं। बट क्या तंबाकू पहली बार में ही उसको लत लगा सकता है, और ये लत लगती है तो कैसे लगती है?
0: तो ख़ास तौर पे हम यंगस्टर्स पे फोकस क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे आपने बोला, दे वांट टू एक्सपीरियंस थिंग्स, ट्राई करना है, तो इसलिए हम फोकस करते हैं यंगस्टर्स पे। तो बहुत सारे कारण हैं कि वो लोग क्यों सिगरेट शुरू करते हैं। एक है पीयर प्रेशर, और दूसरा है स्ट्रेस, स्ट्रेस की वजह से। तो जैसे आजकल यंगस्टर्स, अगर उनके पास कोई भी सोर्ट ऑफ स्ट्रेस है, तो वो जैसे फिजिकल एक्टिविटी कर सकता है, कुछ और कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, लेकिन वो लोग चूज़ करते हैं जो सबसे इजी है। तो वो, क्योंकि पहले अगर एक इंसान ने पहले सिगरेट लिया तो उसको टेम्पररी एक प्लेजर होता है, एक रिलीफ होता है और एक प्लेजर होता है, तो इसलिए वो नेक्स्ट टाइम अगर किसी स्ट्रेस सिचुएशन में है तो फिर लेना शुरू करेंगे। लेकिन फर्स्ट सिगरेट से ही उसको लत लगना शुरू करते हैं,
1: मतलब फ्रॉम द फर्स्ट
0: सिगरेट, क्योंकि हमारे ब्रेन जो है ना, उनके निकोटीन रिसेप्टर्स होते हैं, हम उसको खुल जाता है। तो अगर एक सिगरेट लिया तो जैसे माने एक रिसेप्टर्स खुल गया, तो अगर दो सिगरेट लिया तो दो रिसेप्टर्स खुल गया। तो जितना ज़्यादा लेंगे उतना ही हम वो सब रिसेप्टर्स, वो लत हमारे अंदर इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसीलिए अगर कोई इंसान हो सकता है कि 20 सिगरेट्स ले रहे हैं, 40 सिगरेट्स ले रहा है, फिर भी उनको जैसे यूज़ हो गया है, अब उसको कुछ और चाहिए, कुछ स्ट्रॉन्गर चाहिए,
1: मतलब उनका डोज थोड़ा
0: स्ट्रॉन्गर चाहिए, तो वो जाता है दूसरे चीज़ें हैं, जैसे मास की तरफ जाता है, दूसरे चीज़ें की तरह जाता है जो चीपर है और ईजीली अवेलेबल है। तो इससे अधिक और बिगड़ जाता है। तो जो निकोटीन का जो एडिक्टिव नेचर

0: है, दूसरे चीज़ें की तरह जाता है जो चीपा है और इजीली अवेलेबल है, तो इससे एडिक्शन और बिगड़ जाता है. तो जो निकोटिन का जो एडिक्टिव नेचर है, जिसमें हम सिगरेट जिसको भी छोड़ना है तो हम उसकी मदद करते हैं
1: जी. तो देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो जो भी लोग पहली ही पफ लेते हैं, पहला ही धूम्रपान करते हैं, उनके दिमाग पर ये असर करना शुरू कर देता है.
0: हाँ.
1: और आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं कि निकोटीन जो लेते हैं, या निकोटीन जैसा आपने बताया, जैसे वो दिमाग पर किस प्रकार का केमिकल इफेक्ट छोड़ता है और किस तरह से वो आपके अंदरूनी शरीर को, इंटरनल ऑर्गन्स को कैसे वो अफेक्ट करता है?
0: तो वो जो निकोटीन सिगरेट में, अगर हम एक सिगरेट लेते हैं तो उसमें वो निकोटीन है जो एडिक्टिव नेचर है, जो एडिक्शन करता है. और बाकी 7000 केमिकल्स हैं उसमें जो ये सब,
1: मतलब एक ही सिगरेट में आप कह रहे हैं कि 7000
0: केमिकल्स हैं. और उसमें से वो टार है, उसमें पेट्रोलियम है, उसमें
1: वो सारी हानिकारक
0: साइनाइड है, साइनाइड हाइड्रोजन साइनाइड है, उसमें बहुत सारे जैसे डिटर्जेंट में यूज़ करते, अगर अगर ऐसे सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, एसीटोन है जो हम नेल पॉलिश

0: चीजें हैं उसमें, तो ये 7000 जो है वो केमिकली प्रूवन है. हाँ, तो इसके अलावा और भी हो सकता है. तो ये जो केमिकल जो साइंटिफिकली प्रूवन है 7000 ये है. टॉ है, बहुत सारे चीजें हैं, हैवी मेटल्स हैं, तो जैसे कैडमियम है, सब मेटल्स हैं. तो ये सब जो है अगर हमारे शरीर में जाता है तो हमारे सेल्स में जाता है, वो माइक्रोसेल्युलर लेवल पर वो डिवाइड अबनॉर्मली डिवाइड होता है, इसीलिए कैंसर शुरू करता है. तो वो जो केमिकल्स हैं वो सब कैंसर क्रिएट करते हैं और सब डिजीजेस जो हैं. तो जैसे हम मुंह से शुरू होता है तो ओरल कैविटी में जो भी ऑर्गन है उसका कैंसर हो सकता है, और लंग्स का कैंसर हो सकता है, और ये भी नहीं सर्वाइकल कैंसर भी हो सकता, प्रूवन किया गया है कि अगर कोई स्मोक करता है तो सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कुछ भी हो सकता, कोई भी कैंसर हो सकता है, ये नहीं कि ओनली रेस्पिरेटरी ट्रैक कैंसर्स, तो कुछ भी हो सकता है. और ऑन द अदर हैंड वो जो सिगरेट लेते हैं उनके जो ब्लड वेसल्स हैं वो अफेक्ट करता है, तो उस इंसान को हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, जैसे मैंने बोला वो सब केमिकल्स जो हैं वो पैंक्रियास को डैमेज कर सकता है, और डायबिटीज हो सकता है. कभी कभी पेशेंट आ जाता है हमारे पास, उनके कोई ऐसे आ जाता है जैसे हार्ट माइकोडल इन्फॉक्शन से, हार्ट डिजीज से आता है इमरजेंसी में, तो उसके उनके ओनली फैक्टर रिस्क फैक्टर होते हैं स्मोकिंग. तो स्मोकिंग जो है, सिगरेट जो है, काफी है बहुत सारे बीमारियों
1: को शुरू करने के लिए. और जैसे आपने बताया कि एक ही सिगरेट में मोर देन 7000 जितने केमिकल्स पाए जाते हैं, जिनके नाम अभी आपने जो गिनवाए, आप खुद मैं खुद चौंकना हूँ कि मतलब ऐसे ऐसे सब्सटेंस यूज किए गए हैं जिनको हम नॉर्मल जीवन में हम उसका ग्रहण कभी नहीं करेंगे, हम उसको सेवन नहीं कर सकते क्योंकि हम जानते हैं कि वो पॉइजनस है. पर सिगरेट में पाए जाने वाले ऐसे खतरनाक जो केमिकल्स हैं वो आपके पहले पफ में ही आपके शरीर में उतरते ही वो आपके शरीर में कुछ ऐसे रिएक्शंस करते हैं जिसके कारण आपको आगे चलकर बहुत ही भारी नुकसान हो सकता है. लेकिन मैं डॉक्टर जी यहाँ पर आपको पूछना चाहूँगी, कई सारे लोग कहते हैं कि भाई मैं कभी कभार स्मोक करता हूँ, मुझे ऐसी कोई लत नहीं लगी है, इस बात में कितना फैक्ट है, कितना तथ्य है, कितनी सच्चाई है?
0: ये एडिक्शन जैसे मैंने बोला वो एडिक्शन के डिफरेंट लेवल्स होते हैं
1: जी.
0: तो इंसान पे डिपेंड करता है, कोई कोई भी ले सकता है, कभी कभी ले सकता है, लेकिन फिर भी ले तो रहे हैं
1: जहर, तो, मतलब लो चाहे बड़ी मात्रा में लो चाहे छोटी मात्रा में, पर वो जहर ही है.
0: जहर ही है. तो एक ही काफी है, जैसे हमने बोला है कि वो जैसे ये सब बीमारियां डिपेंड नहीं करता है कि कितना स्मोक करते हैं. ऑफकोर्स जो ज्यादा ले रहे हैं उसका ज्यादा है, लेकिन हमने एक्चुअल में पाया गया है, हमारे पास एक पेशेंट था जो 23 ईयर्स ओल्ड का था, और उसका वो सिर्फ 10 सिगरेट लेती थी
1: एक दिन में
0: 10 सिगरेट लेते थे. 23 ईयर्स ओल्ड में उसको एक लंग कैंसर हो गया है, और जैसे डायग्नोसिस के वक्त पे वो असिम्टोमेटिक था, ऐसे ही एक ब्रोंकाइटिस से शुरू हो गए. तो एक वीक के बाद ब्रोंकाइटिस ठीक नहीं हो रहा है, जब एक्सरे किया तो देखा गया कि ऑलरेडी एक कैंसर हो गया. तो वो जैसे टिल दिस डायग्नोसिस वो 3 महीने बाद मर गए, 23 ईयर्स ओल्ड यंग गाय. तो ये बताने के लिए कि कोई जैसे हमारे पास है पेशेंट जो 90 ईयर्स ओल्ड है, जैसे हमारे पास एक पेशेंट था जो 19 ईयर्स ओल्ड है, 15 जब उसको 15 ईयर्स ओल्ड था वो एक पैकेट सिगरेट पीते थे, अभी उसको 19 ईयर्स ओल्ड हो गया. तो फिर 19 ईयर्स ओल्ड में उसको कैंसर हो गया, 6 महीने बाद उसका देहांत हो गया है. तो ये दिखाने के लिए कि शरीर पे डिपेंड करता है. तो कोई भी यंग, हमारे यंगेस्ट पेशेंट हमें मिला था 16 ईयर्स ओल्ड, तो और वो कैंसर जो है लंग कैंसर जो है वो असिम्प्टोमेटिक हो सकता है, तो यही सबसे डरावनी, जैसे साइलेंट किलर है,

0: अगर हमारे कोई सिम्टम
1: मतलब आपको
0: है,
1: भनक भी नहीं लगेगी
0: हाँ,
1: कि आप आपको लगेगा मैं नॉर्मल नॉर्मल हो रहा है, पर जब तक आपको पता चलेगा तब तक बहुत देर
0: हो चुकी होती। तो वो लंग कैंसर जो है जब कॉम्प्लिकेशन शुरू होने आता है जैसे मेटास्टासिस ये सब, तब सिम्टम आना शुरू करते हैं। डिपेंड करता है, डिफरेंट टाइप्स होते हैं
1: जी।
0: तो कभी कभी जो टाइप्स होते हैं मॉरिशस में हमें उसका ट्रीटमेंट नहीं है तो इसलिए अब्रॉड जाना पड़ेगा। तो इसीलिए पहले सिगरेट अगर हम लेने जा रहे हैं तो सोच 10 बार सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। और जैसे मैंने बोला हमारे यंगस्टर्स आजकल सिर्फ सिगरेट नहीं पी रहे हैं तो दूसरे चीज़ें उसमें ऐड कर रहे हैं जो और भी खतरनाक हैं। और कुछ कुछ चीज़ें हैं कि हमें पता ही नहीं है क्या डाल रहे हैं उसमें। तो इसके हिसाब से हमारे ट्रीटमेंट जो है सिर्फ सिगरेट निकोटीन एडिक्शन से ताल्लुक है, दूसरे चीज़ें से एडिक्शन वो हम ट्रीट नहीं कर पाएंगे। तो अगर किसी ने शुरू किया तो रिवर्स बैक नहीं कर सकते हैं,
1: मतलब रिवर्स गियर नहीं है हाँ, आप उसे फिर से ठीक नहीं कर पाओगे। तो आप जब आप पहली सिगरेट का पफ लेने जा रहे हैं तो ये ज़रूर दिमाग में रखिएगा कि आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं और आगे जाकर एक डेड एंड है जहां पर ना केवल आपका शरीर, आपके साथ जुड़े हुए आपके परिवार, आपके जो साथी हैं, आपके जो बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, उसके लिए भी ये बहुत ही बड़ा खतरा आप मोल ले रहे हैं।
0: और हो सकता है कि भी आप खुद नहीं ले रहे हैं हाँ। लेकिन आसपास के आपके जो दोस्त हैं या कोई पब में गया है, डिस्कोटेक में गया है तो आप इनहेल कर रहे हैं
1: वो स्मोक
0: हाँ, पैसिव स्मोक है तो आपके एडिक्शन धीरे धीरे अंदर से भी शुरू हो गया है। तो इट वॉन्ट टेक लॉन्ग कि आप भी बोलेंगे चलो मैं भी ले लेती हूं।
1: जैसे कहते हैं ना संगत का असर, जहां पर आप बैठते हैं उसका हाँ, असर तो होता ही है।
0: तो जैसे हैं पहले पहले हम लेते हैं, हम खरीदते हैं सिगरेट लेते हैं, लेकिन एडिक्शन जब एडिक्शन शुरू हो जाता है तो हमारे जो ब्रेन है वो हमें डिक्टेट करेगा। तो हम खुद जाके खरीदेंगे, जैसे हमें पता है कि बुरा है, इतने सारे चीज़ें हो सकता है इससे और महंगा भी है। अगर आप लेते हैं एक पैकेट अराउंड 50 रुपीज़ है, तो कुछ इंसान दिन में एक पैकेट ले रहे हैं, साथ ही 20 सिगरेट या 40 सिगरेट ले रहे हैं, तो उससे ज़्यादा भी है। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे, अगर एक पैकेट यूज़ कर रहे हैं तो एक महीने में 7,500 हो जाता है, अगर दो पैकेट ले रहे हैं तो 15,000। तो आजकल आपने देखा कि कितने सब चीज़ महंगा हो गए हैं, तो ये सब ध्यान में रखना चाहिए शुरू करने से पहले। और जैसे मैंने बोला वो यंगस्टर्स जब शुरू करते हैं तो फिर बाद में वो खुद, वो दिमाग, वो शरीर खुद लेने
1: मतलब
0: चाहेगा।
1: उनके दिमाग में वो कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको हाँ, गाइड कर सके।
0: तो वो जो शरीर आपको जैसे ये सेम है दूसरे एडिक्शन से, दूसरे सब्सटेंस अब्यूज से सेम है। और सिगरेट वो बेसलाइन माने जाते हैं दूसरे सब्सटेंस अब्यूज के। तो सिगरेट जो बेसलाइन है, जो लोग सिगरेट लेते हैं
1: वो आगे चलकर ऐसी चीजों का भी सेवन
0: इस्तेमाल करेंगे।
1: बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपने शुरू में समझाया कि किस तरह से शरीर इसका आदि होने लगता है, किस तरह से लत लगती है, किस तरह से आपके शरीर को ऐसा महसूस होने लगता है कि बहुत अच्छा फील हो रहा है, हालांकि ये अच्छा फील होने वाली जो लत है वो एक सिगरेट के पफ से ही शुरू होती है। और वर्ल्ड नो टोबैको डे जो 30 मई को मनाया जाएगा और उसका उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम ये सूचना दें कि एक पफ भी जिंदगी दांव पर लगाने वाली बात हो रही है। तो यहाँ पर, और जैसे डॉक्टर फाइजा ने बताया कि इसमें कोई रिवर्स गियर नहीं है, आपने अगर शुरू किया है तो आप खुद सोच सकते हैं कि आगे चलकर कितना बड़ा खतरा मोल लेंगे आप अपनी जिंदगी के साथ। जी हाँ, वर्ल्ड नो टोबैको डे पर आज का ये कार्यक्रम आधारित है। एक गीत का ब्रेक लेते हैं, आते हैं थोड़ी ही देर में।

0: के तीसरे चैनल पर देख पा रहे हैं और फेसबुक पेज पर भी आप इसे फॉलो कर पा रहे हैं। इसी का रीब्रॉडकास्ट किया जाएगा दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच। और जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे। और जैसे कि समय बदलता जा रहा है, एक टाइम था जब तंबाकू लिया जाता था, उसका सेवन किया जाता था, फिर आया बीड़ी के फॉर्म में उसे लिया जाने लगा, उसके बाद आया गुटखा फॉर्म में, और आज मॉडर्नाइजेशन के साथ सिगरेट के फॉर्म में उसे लिया जाने लगा, सिगार के फॉर्म में लिया जाने लगा। और साथ ही साथ आज भाई कहते हैं ना कि एआई का ज़माना है, और एआई के ज़माने में ई सिगरेट्स और वेप जैसी चीज़ें का भी सेवन इस्तेमाल किया जाता है। और कई सारे यंग जनरेशन का ऐसा मानना है कि वेप इज़ नॉट लाइक सिगरेट, यानी वो सिगरेट की तरह नहीं है और वो ज़्यादा सेफ है। आइए जानते हैं डॉक्टर फाइजा से। डॉक्टर जी, ई सिगरेट और वेप, इसमें अंतर क्या है और क्या ये सिगरेट जितना ही खतरनाक हो सकता है?
1: हाँ, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। यही वो मिसकंसेप्शन है, लोग सोचते हैं कि जो वेप है, ई सिगरेट है, वो सेफर है सिगरेट से, लेकिन उसमें सिर्फ ता नहीं है, लेकिन वो निकोटिन का कंसंट्रेशन उसमें बहुत ज़्यादा है, कुछ कुछ में 50% ज़्यादा है एक सिगरेट में, तो वो एडिक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर कोई इंसान सिर्फ वेपिंग ले रहे हैं या सिगरेट ले रहे हैं, तो डेफिनेटली वो नॉर्मल सिगरेट लेना शुरू करेंगे। तो ये मिसकंसेप्शन है। तो मॉरिशस में ये बैन है, सेल्स बैन है ये सब, तो फिर भी वो इतना ही उससे ज़्यादा, सिगरेट से ज़्यादा खतरनाक है। जैसे मैंने बोला, वो निकोटिन एडिक्शन करता है, तो अगर एक सिगरेट ले रहे हैं तो 1 मिलीग्राम निकोटिन ले रहे हैं, तो अगर एक वेप में 50% ज़्यादा है तो वो एडिक्शन का लेवल भी ज़्यादा होगा। तो इसी वजह से, लेकिन आजकल ये मिसकंसेप्शन है कि ये सेफ है, लेकिन ये बिल्कुल सेफ नहीं है, ऑन द कंट्रेरी ये ज़्यादा ख़तरनाक है। और उसके जैसे बच्चे आजकल भी बच्चे के पास भी पाए जाते हैं, तो ये सब पेरेंट्स को भी बहुत ध्यान से बच्चे को मॉनिटर करना पड़ता है, देखना चाहिए कि क्या कर रहा है। जैसे अगर एक पेरेंट्स स्मोक कर रहा है, तो वो कैसे अपने बच्चे को ये बताएंगे?
0: यही मेरा अगला सवाल था कि मान लीजिए अगर कोई पेरेंट स्मोक कर रहे हैं, और बच्चों को हम कैसे एडवाइस दें कि आप स्मोक ना करें?
1: हाँ, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग से बच्चे ऑलरेडी के थोड़ा एडिक्शन शुरू होते जा रहे हैं,
0: बिल्कुल सही,
1: कंस्टेंटली। तो और अगर पेरेंट्स के एब्सेंस में वो लोग तो सिगरेट चुरा सकते हैं,
0: सही,
1: हाँ, ये स्मोक, ऐसे ही स्मोकिंग शुरू करेंगे बच्चे भी,
0: बिल्कुल। तो डॉक्टर जी, मैं ये भी पूछना चाहूँगी, जैसे आप बता रहे हो कि किस तरह से, जैसे हेल्थ के इश्यूज़ की बात करें, तो ऐसे कई सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं जो सिगरेट स्मोकिंग से शुरू होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे मॉरिशस में डायबिटीज़ बहुत ही बड़ी मात्रा में पाया जाता है, डायबिटीज़ और कार्डियक प्रॉब्लम्स, तो क्या जो स्मोक करते हैं, क्या उनको इससे बहुत अधिक मात्रा में खतरा हो सकता है?
1: हाँ, खतरा हो सकता है, जैसे मैंने बोला, और ख़ास तौर पे यंग एडल्ट्स, उम्र नहीं है आजकल, तो आप अगर कार्डियक यूनिट में देखेंगे तो 24 इयर्स ओल्ड का पेशेंट पा सकते हैं हार्ट प्रॉब्लम में। पहले तो सिर्फ बुज़ुर्ग लोग, जब हम बोलते थे कि हार्ट डिजीज़ ये सब, तो सिर्फ बुज़ुर्ग लोग याद आते थे, लेकिन अभी यंग 23 इयर्स ओल्ड 25 इयर्स ओल्ड ये सब, उनको हार्ट अटैक हुआ या उनको हेल्थ इश्यूज, कार्डियक इश्यूज हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला, वो जो सिगरेट स्मोक्स हैं वो ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है, और हमारे शरीर में तो हर जगह पे ब्लड वेसल्स हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल माने हार्ट में वो सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हुआ है, तो वो हार्ट डेफिनेटली काम ठीक तरह से नहीं करेंगे। तो अगर ब्रेन से है तो स्ट्रोक हो सकता है, कुछ कुछ लोग अपाहिज भी हो सकते हैं जैसे स्ट्रोक की वजह से। तो जो पावर है, जैसे हाफ द बॉडी, अपर लिम, लोअर लिम, तो अगर एक वर्किंग पर्सन, एक वर्किंग यंग एडल्ट को लेते हैं, तो उसके कितने सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके कितने सारे रोल्स हैं। अगर उसका स्ट्रोक हो गया और वो बेड रिडन हो गया तो उसका कंसिक्वेंसेस आप खुद सोच सकते हैं। काम नहीं कर पाएगा, फिर उसके लिए केयर कंस्टेंट केयरिंग करना पड़ेगा, उसका इनकम

0: कहाँ से आएगा, तो ये सब सोचना पड़ेगा।
1: ये सारी चीजें पैकेज में आती हैं,
0: पैकेज में आती हैं, और जब आता है तो ऐसे जैसे पैकेज में आता है और विदाउट नोटिस आता है, जैसे मैंने बोला कोई भी सिम्टम नहीं होगा, ऐसे झट से आपको जैसे चेस्ट पे पेन आना शुरू करेंगे। और कुछ कुछ जो डायबिटीज है उनको पेन भी नहीं होता है, क्योंकि डायबिटीज जो है नर्व्स एंडिंग्स को नर्व्स को नम करते हैं, तो इंसान हो सकता है उसको क्रीज का जग जो हम बोलते हो रहा है, लेकिन उसका कोई दर्द नहीं हो रहा है,
1: फीलिंग
0: भी नहीं हो रहा है। तो हम जब टेस्ट करते हैं, ECG करते हैं, तब दिखाई देता है कि ये इंसान से ठीक तरह से बैठा हुआ उसको।
1: डॉक्टर जी, यहाँ इसमें कितना सच्चा सत्य है कि ऐसा कहा जाता है कि जो बहुत यंग एज में स्मोक करना शुरू करते हैं, आगे चलकर उनकी आईसाइट या सुनने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है, क्या इस बात में कोई सच्चाई है?
0: हाँ, क्योंकि जैसे हमने बोला वो जो रेटिना में उसके बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, तो अगर उस इंसान को एसोसिएटिंग अदर डिजीज हो, जैसे हाइपरटेंशन हो, ग्लूकोमा हो सकता है, जैसे टेंशन लीजिए उनको आँख में वो ब्लीडिंग हो सकता है, तो सब वेसल्स जो है वीक हो गया है, तो ब्लीडिंग हो सकता है रेटिना में, तो ऐसे सडन लॉस ऑफ साइट हो सकता है, ऐसे अंधा हो जाता है सडन।
1: और जब हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं, आजकल इनफर्टिलिटी रेट भी आपने देखा है सोसाइटी में बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ता जा रहा है, जहां पर आगे चलकर मतलब मान लीजिए एक कपल शादी करते हैं और काफी साल के बाद भी उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है, तो क्या सिगरेट स्मोकिंग से इनफर्टिलिटी आ सकती है? हाँ। और अगर आ सकती है तो किस मात्रा तक मतलब उसको अफेक्ट करता है?
0: तो इनफर्टिलिटी जो है बहुत सारे कारण हो सकता है। आजकल आपने देखा कि औरतें बहुत देर से कंसीव डिसाइड टू कंसीव, आइडियली 30 ईयर्स पहले बच्चा होना चाहिए, लेकिन आजकल लड़कियां बहुत करियर ओरिएंटेड होते हैं, तो उनके जैसे 30 से के बाद होता है, तो जितने उम्र बढ़ेगा तो उतने ही कॉम्प्लिकेशन होगा, तो ये एक कारण है इनफर्टिलिटी के लोग बहुत देर से शादी करते हैं, शादी के बाद भी वो लोग इमिडिएटली कंसीव नहीं करते हैं, वेट करेंगे, और जब तक कंसीव के लिए डिसाइड करेंगे तब अगर तब एक साल के बाद अगर बच्चे नहीं हो रहा है तब हम डायग्नोज करते हैं इनफर्टिलिटी को, तो आप सोचे कितने सारे साल गुजर गए हैं, तो तब अगर अब तब ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो वो औरत तो 40 तक तो पहुंच ही जाएगा।
1: बिल्कुल,
0: तो इसीलिए सारे महिला को सोचना पड़ेगा अपने
1: एज फैक्टर है
0: कार्य तो है अपने जगह पे, लेकिन अपने पर्सनल लाइफ और अपने हेल्थ ये सब साथ
1: ध्यान में रखना,
0: बैलेंस करना चाहिए सबको।
1: और जहां पर हम सिगरेट स्मोकिंग की बात करते हैं,
0: सिगरेट्स और अदर थिंग्स जो हम ऐड हो सकते हैं, जैसे हम बहुत सारे फास्ट फूड लेते हैं, प्रोसेस फूड लेते हैं, तो ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हम अपने ही शरीर को अपने
1: नुकसान
0: पहुंचाते हैं, तो ख़ास तौर पे इनफर्टिलिटी फीमेल और मेल दोनों के, तो उस औरत को मिसकैरेज हो सकता है अगर वो स्मोक करता है या पैसिव स्मोकिंग कर रहा है, अगर प्रेगनेंट भी हो गए तो बेबी को लो बर्थ वेट हो सकता है, उसको डिलीवरी भी बहुत जल्दी हो सकता है, प्रीटर्म बेबी जैसे हम बोलते हैं, तो ये सब कारण हैं। और मेल में तो बहुत सारे इश्यूज हैं इनफर्टिलिटी, खास तौर पे सिगरेट की वजह से, तो इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक न्यू कंसेप्ट डाला गया था हमारे क्लिनिक्स प्री कंसेप्शन केयर, तो जैसे एक कपल ने डिसाइड किया कि अब मुझे बच्चा होना है, कंसीव करना है, तो वो हमारे पास आए तो हम फुली स्क्रीन करते हैं महिला को, फॉर एग्जाम्पल अगर महिला को अनीमिया है तो हम उसकी अनीमिया को करेक्ट कर सकते हैं, अगर वजन ज्यादा है, वजन का भी अगर ज्यादा है तो इनफर्टिलिटी हो सकता है, तो हम उसके वजन कम करने के लिए बोलेंगे, और अगर वो इंसान जैसे स्मोक करता है तो उनको रिफर करेंगे वो स्मोकिंग सेसेशन, तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, जैसे प्रिपेयर करेंगे, फिर वो कंसीव कर सकते हैं।
1: तो यानी ये भी कह सकते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग भी एक बहुत

0: ही बड़ा फैक्टर है इनफर्टिलिटी के लिए, जहाँ पर आगे चलकर आपको बच्चे कंसीव करने में भी बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। और आज लोग बड़ी मात्रा में पैसे लगाते हैं एक बच्चा प्राप्त करने के लिए, एक बच्चे के लिए प्रेग्नेंट होने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और हेल्थ को दांव पर लगाना पड़ता है। डॉक्टर जी, यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि किस तरह से लत लगती है, किस तरह से हेल्थ इश्यूज होते हैं, और हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे इस राह पर ना जाएं, मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी आपसे कि डेफिनेटली यहाँ पेरेंट्स का रोल, फैमिली का रोल बहुत अहम है, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे सिगरेट की लत उनको लग चुकी है, तो एक पेरेंट कैसे उसे पता लगा सकता है? क्या उसके फिजिकल अपीयरेंस में, क्या उसके कोई बिहेवियरल अपीयरेंस में कोई ऐसा कोई मतलब आप नोट कर सकते हैं जिसके द्वारा उनको ऐसा कोई सिम्टम मिले?
1: कि हाँ, वैसे आजकल हमारे यंगस्टर्स बहुत चालाक हैं तो वो ये सब जानने के लिए पेरेंट्स को उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। आजकल पेरेंट्स ही हम इतने बिजी रहते हैं तो बच्चे को कम टाइम देते हैं, और बच्चे को भी वो एजुकेशन करिकुलम की वजह से स्कूल हैं, ट्यूशन हैं, तो ये सब
0: उनके बिहेवियर्स को नोट करने का टाइम नहीं है।
1: तो ऐसे हो सकता है कि उनका वो स्मेल होता है, वो सिगरेट स्मेल आ जाता है, उनके होंठ जैसे डार्कन पिगमेंटेशन हो सकता है, उनके दांत में भी चेंज हो सकता है, वो कलरिंग जैसे डार्कनिंग हो सकता है, और हाथ में भी, हाथ वो जो स्किन टेक्स्चर है उससे भी पता चलता है कि कुछ ले रहे हैं, लेकिन वो लोग चुप चुप के लेते हैं।
0: बिल्कुल
1: हाँ, तो इसलिए पेरेंट्स को बहुत सावधानी से जैसे स्पॉट चेक कर सकते हैं, कभी भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, कभी भी जैसे जाके मिल सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है कि वो पीयर ग्रुप्स जो हैं, किन किन लोगों के साथ दोस्ती कर रहे हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और जैसे डॉक्टर जी आप बता रहे थे कि ट्रीटमेंट करने के लिए, मान लीजिए अगर कोई सिगरेट, मान लीजिए अगर ये प्रोग्राम सुनकर अगर किसी के मन में आता है सिगरेट छोड़ना है, तो उनको कहाँ जाना चाहिए, कैसे वो हेल्प ले सकते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की? हाँ। या किन से मिलना चाहिए, क्या ये कोई काउंसलिंग सेशन के द्वारा इसे रोका जा सकता?
1: हाँ,
0: है
1: तो हमारे हर 5 रीजनल हॉस्पिटल में वो स्मोकिंग सेसेशन क्लिनिक है, तो डिपेंड करता है आप किस जगह पे हैं। जैसे हमारी जगह, मैं जहाँ पे काम करती हूँ रीजन 5 में कांडस हॉस्पिटल में, तो कांडस हॉस्पिटल में सैटरडे 9 से 12 होते हैं, और ईव कॉटे में है जो हमारे रीजन में है, ईव कॉटे हॉस्पिटल कम्युनिटी हॉस्पिटल जो है वो भी सैटरडे सेम टाइम, और स्टैनले मेडिक्लिनिक में है। तो रीजन 5 में हमारे 3 जगह हैं, तो अगर आपको आना है जो सबसे पास है आ सकते हैं, या अगर आप काम करते हैं नियर है, जो भी नियरेस्ट पॉइंट है आप आ सकते हैं। तो वो ट्रीटमेंट कैसे हैं, तो जब आएंगे तो हम आपको काउंसलिंग देंगे, जैसे कैसे छोटे छोटे चीज से आप अपने सिगरेट कम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पूछेंगे उस इंसान के, जैसे कुछ लोग जैसे ही उठते हैं, आँख खोलते हैं, सिगरेट चाहिए, तो हम पूछते हैं, तो इस हमारे क्वेश्चन से हमें पता चलेगा कि उसके डिपेंडेंसी लेवल कितना है। तो हम ट्राई करेंगे वो पहले सिगरेट जो है उसको डिले करने के लिए, तो हम उसको बोलेंगे फॉर एग्जांपल कि आप बेड साइड पे मत रखिए, फॉर एग्जांपल बेड साइड पे, या जब आप टीवी देख रहे हैं पैकेट ऑफ सिगरेट आपके पास हैं, तो जैसे ही मन में आया, दिमाग में आया कि मुझे सिगरेट,
0: या कई बार उनके सामने पड़ी हुई पैकेट देख के
1: तो झट से आप लेंगे और स्मोक करेंगे, लेकिन हम आप उनको ये एडवाइस देंगे कि पास में मत रखिए,
0: विजिबल ना रखिए,
1: ऐसे अलमारी में बंद करके रखिए, तो ऐसे उनको लेजी होगा, उठ के जाना पड़ेगा, तो हो सकता है वो सोचेगा चलो नहीं लेते हैं। तो ये सब टेक्निक्स, और जब खरीदते हैं जैसे हमने बताया है खोल पैकेट मत रखो, यहाँ पे हो सकता है एक रखो या बिल्कुल मत रखो, तो लोग पे डिपेंड करता है,
0: एक साइकोलॉजिकल तरीका, यानी
1: किस तरह से उनको और अगर जब उनको मन आया सिगरेट लेने के लिए तो उनको डाइवर्ट करो, कुछ और सोचिए, ये सब कर सकते हैं, या पानी पीजिए या ब्रीदिंग

0: कीजिए, या अगर आपको जैसे लत आना शुरू किया तो आप ऐसे कुछ खा सकते हैं हेल्दी करके, जैसे कारोट ले सकते हैं, तो जो चूइंग इफेक्ट है आपके दिमाग को वो लत दबा देते हैं। वो लत जो है सिर्फ फ्यू सेकंड्स पे आता है, तो अगर इंसान उस 3 सेकंड्स को मैनेज कर सकते हैं तो वो अपने सिगरेट को डिले कर सकते हैं। तो हमारा ट्रीटमेंट है काउंसलिंग पे, हम उसको ये सब कुछ, और कभी कभी लोगों को पता नहीं है हेल्थ हैजर्ड्स, तो हम उनको बता देते हैं, फिर उनको डर होता है, उनको पता नहीं था। हमारे पास पिक्चर्स हैं, डरावनी सा पिक्चर्स हैं वो कैंसर के ये सब, तो वो देख के वो डर जाता है क्योंकि वो जो पिक्चर्स हैं, बात तो ऐसे ही हवा में चली जाती है, लेकिन जो देखा गया है वो ज़्यादा दिमाग पे टिकता है, तो वो डर होता है। और कुछ कुछ लोग जैसे हैं, उनके दोस्त बीमार हो गए हैं तो इस पे उनको इफ़ेक्ट है, तो वो भी डिटर्मिन है वो स्टॉप करने के लिए। कुछ कुछ लोग महंगाई की वजह से हैं, क्योंकि जैसे हमने काम
1: बहुत
0: किया
1: महंगा,
0: बहुत महंगा
1: बहुत
0: है,
1: महंगा पड़ रहा है,
0: तो ये सब। फिर हमारे ट्रीटमेंट जो है वो हम निकोटीन पैच देते हैं।
1: मैं यही पूछने वाली थी डॉक्टर जी कि निकोटीन गम और निकोटीन पैच क्या ये असर करता है।
0: हाँ, तो जैसे हमने बोला, हम उसको पूछेंगे कि कितने सारे सिगरेट ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम वो निकोटीन पैच के डोज भी उसके हिसाब से लेंगे। तो हमारे 3 पैच हैं, 7 मिलीग्राम, 14 और 21, तो उसके हिसाब से कि कितना ले रहे हैं हम उसको वो पैच देंगे, और उसको कहेंगे 24 आवर्स रखने के लिए। ये क्या करता है, जाके वो रिसेप्टर जो शुरू में बोला था, वो रिसेप्टर जाके ब्लॉक करता है। फॉर एग्जांपल, मैं 20 सिगरेट ले रही हूँ, तो मैंने उसको जैसे 21 सिगरेट दिया है, तो वो डोज जो है काफ़ी है सब रिसेप्टर्स को बंद करने के लिए, तो मुझे मन नहीं होगा, क्योंकि हमारे शरीर को ये सोचा कि निकोटीन वो सिगरेट से मिला है, तो उसको वो लत नहीं होगा। फिर भी कभी कभी होता है, इसके अलावा होता है, फिर हम गम्स डालते हैं, जैसे जब भी वो जैसे लत कि फ्यू सेकंड्स, हम उसको बोलेंगे कि एक च्युइंग गम लेते हैं, वो जो पैच है 24 आवर्स रखेंगे, और जो च्युइंग गम है सिर्फ वो लत जो उस पीरियड का वो च्यू करते हैं। कभी कभी हम बोलेंगे कि तुम निकोटीन पैच मत लो, निकोटीन गम मत लो, कोई नॉर्मल सा गम लो, तो जैसे दिमाग
1: एक तरह से दिमाग से साइकोलॉजी
0: साइकोलॉजी हो जाता है,
1: चलो एटलीस्ट गम ले रहे हैं तो मतलब आपका वो सेटिस्फाई हो रहा है।
0: तो अगर आप एक नॉर्मल सिगरेट भी ले तो वो जो च्यूइंग इफेक्ट है ब्रेन को सोचेगा कि वो
1: असर
0: देता है, जैसे अपने आप को जैसे उल्लू बनाते हैं।
1: बिल्कुल, जैसे एक तरह से वो साइकोलॉजिकली आपको वो खेल रहा है आपके दिमाग से। तो बिल्कुल, हम आज के इस प्रोग्राम के अंत तक आ गए हैं डॉक्टर। मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी, मैं चाहूंगी आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं, जैसे आप बता रहे थे कि सिगरेट स्मोकिंग के लिए जो ट्रीटमेंट्स दी जाती हैं वो अवेलेबल है, पर उसके अलावा आज ये जो यंग जनरेशन्स है, जो यंग एडल्ट्स है, वो ऐसे कई सारे मिक्सचर्स लेती हैं, क्या इसके लिए कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल
0: है? उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि वो जो सब्सटेंसेस यूज करते हैं हमें खुद पता नहीं वो क्या है, तो इसके लिए नहीं है। तो जैसे मैंने बोला, अगर आप सिर्फ सिगरेट ले रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट है, अगर उसमें कुछ और डाल रहे हैं तो उसके लिए ट्रीटमेंट नहीं है, और उसके एडिक्शन भी डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा भारी होगा। और हम जैसे साइंस बेस्ड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट पे जाता है जो WHO का है, तो अगर ये सब जो यूज़ करते हैं लोग यूज़ कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है वो कौन सी सब्सटेंस है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट नहीं होगा।
1: तो हमारे श्रोताओं को जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं तो पहले ही स्मोकिंग अगर लेने जा रहे हैं तो 10 बार सोचे इसकी कंसिक्वेंसेस के, और ये क्या इम्पैक्ट करते हैं अपने फैमिलीज पे, अपने बच्चे पे ये सब, और कितना महंगा पड़ेगा, और ख़ास तौर पे यंग जैसे हमने बोला है, अगर फॉर एग्जांपल किसी को हार्ट डिजीज़ हो गया तो वो कैसे काम करेगा, तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। और जो स्मोक कर रहे हैं तो हमारे पास ज़रूर आइए, हम उनके मदद करेंगे। तो हर रीजनल हॉस्पिटल में पूरे आइलैंड में फैला गया है, तो नियरेस्ट जैसे जो सबसे नियरेस्ट हैं जा सकते हैं। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है तो अपने

0: हॉस्पिटल में जा सकते हैं या कभी भी अपने नियरेस्ट CHCs कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स या एरिया हेल्थ सेंटर्स में जाके पता करवा सकते हैं और ज़रूर आएगा और हम हमारे मदद लीजिए।
1: बिल्कुल। और यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय से डॉक्टर फाइजा हमारे साथ जुड़ी, साथ ही साथ हमारे साथ प्रोडक्शन टीम, हमारी टेक्निकल टीम भाई कादेय, साथ ही साथ उरुसा और जिनेश हमारे साथ जुड़े, हमारे जितने भी दर्शक जितने भी श्रोता इस वक्त हमारे साथ रहे, थैंक यू सो मच। बस आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाए कि तंबाकू का सेवन हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। तो चलिए साथ मिलकर एक प्रण लेते हैं कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को इस खतरे से किस प्रकार बचा सकते हैं। इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

0: अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपके साथ सुमेरा। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार रौदाब। कम बारिश की वजह से जलाशयों पर बहुत दबाव है। पानी की सप्लाई के लिए नए साधन तलाशने की बहुत बड़ी जरूरत है। मुर्शिद के लिए जल संचालन एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। महोबा को सिर्फ 48% भरा है। अधिकारी जल संचालन की रणनीति पर दोबारा गौर कर रहे हैं। नदियों में करीब 50 फिल्टरों की स्थापना की जा चुकी है। इसके अलावा भूमिगत जलाशयों के वास्ते टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। अधिकारी कम महंगी वाली परियोजनाओं को मद्देनजर रख रहे हैं। उपभोक्ताओं की हिफाजत के लिए एक नए कानून पर काम किया जा रहा है। आज सुबह पैदावारों पर मुनहसर एक कार्यशाला लगाई गई, जिसमें उपभोक्ता सुरक्षा मंत्रालय के अफसरों ने शिरकत फरमाई। गैर सरकारी संगठनों और कोमेजा तथा दक्षिण अफ्रीका से नेशनल कंज्यूमर कमीशन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। समाज सुरक्षा दफ्तर रिजिल में सेवाओं को डिजिटलाइज किया गया। लाभार्थियों के दस्तावेजों को डिजिटलाइज बनाने का सुधार अपनाया गया है, ताकि उनको दी जा रही सेवाओं को मजीद तेज तथा आधुनिक बनाया जा सके। लॉन्चिंग के दौरान समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुभों और जूनियर मंत्री कुकान पगापेन भी मौजूद थे। विदेश में वॉशिंगटन में कागज के कारखाने में रासायनिक विस्फोट की वजह से कम एक व्यक्ति की मौत हुई है। 9 लोग अभी भी गुमशुदा है, जबकि दूसरे 9 लोगों के घायल होने की खबर है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। मिहदीदीन लेन सैपल फिनिक्स में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड श्री मनोज कुमार मिहदीदीन, जो कोको के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे इनके भाई रितेश मिहदीदीन के घर मिहदीदीन लेन सैंपल फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलेब्रियन कास्टेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। आलेजाक बॉम्बू में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड श्री सदेव जीतन, जो कॉल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दस बजे इनके भाई सुशील जीतन के घर आलेजाक बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताय सैपिया बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। नॉर्थर्न बाउंड्री कैथोबोन में 40 साल के 40 ईयर्स ओल्ड श्री प्रीत गुरुदयाल, जो आकाश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सुबह दस बजे इनकी माँ मावती गुरुदयाल के घर नॉर्थर्न बाउंड्री कैथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेतो कोदुगौद की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।

0: 94.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
1: नमस्कार दोस्तों, शाम के 4:03 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम दिल से मिले दिल।
2: दिल से मिले दिल,
1: कहिए दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं और ये सफ़र हम ज़रूर तय करेंगे 5 बजे तक। आपके साथ हैं अनुराधा अभी से लेकर 5 बजे और हम आपका साथ ज़रूर देंगे। आप भी हमारा साथ देने की पूरी पूरी कोशिश करें, ऐसे हम कामना करते हैं। और आज का ये ख़ास प्रोग्राम समर्पित है उस व्यक्ति को जिसके बिना हमारी दुनिया अधूरी है। आप सब जानते हैं माँ। तो आइए अपने इस प्रोग्राम को, म्यूजिकल प्रोग्राम को शुरू करते हैं। एक ऐसे गाने हैं जो इसके साथ जो बहुत ही बड़ा भाव भरा हो। तो आइए यशुदास की आवाज़ में ये गीत सुनते हैं।

जो औरों को जीवन देता है और सच की राहों पर चलने वाली है। बिल्कुल आपने सही पहचाना, वो है माँ। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि प्यार, त्याग, ममता और दुआओं का दूसरा नाम है। और आगामी वीकेंड को हम मनाने जा रहे हैं मदर्स डे, बल्कि हम कह सकते हैं ये पूरा सप्ताह माँ के नाम पे समर्पित हैं। चाहे एक दिन या दो दिन, लेकिन हमेशा हम सब के दिलों में माँ का वास होता है। माँ को सलाम करते हैं और आज आप सुनेंगे उनसे, मतलब आप भी उनसे जुड़ी यादें, खूबसूरत गीत और दिल को छू लेने वाली कुछ बातें हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से मिले दिल।

दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज दिल से निकलेंगी वो बातें जो सीधे दिल तक जाएंगी। आपके पास आप कोई संदेश देना चाहेंगे माँ के महत्वों के बारे में, माँ की महत्ता के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे, हमारे साथ बांटना चाहेंगे, तो आप मैसेजेस भेज सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए 5250600 पर, या फिर आप 4028070 पर हमें ज़रूर फ़ोन कर सकते हैं।

और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जितने सारे लोग हमें फोन कर रहे हैं वैसे त्यागोज रारो त्यागोज की सरोज रघु की फरमाइश पर एक गीत मांगा है और चलिए उनके चार बहनों के लिए उनके चार भाइयों के लिए हम ये अगला नगमा करते हैं और आजकल ये गीत बहुत ही प्रचलित है आप सबों के मुख पर ये गीत सुनते रहते हैं वैसे दोस्तों कहा जाते हैं कि भगवान हर जगह तो नहीं हो सकते हैं इसलिए उन्होंने माँ बनाई माँ वो होती है जो हमारी खुशी में मुस्कुराती है और हमारे दुख में सबसे पहले आंसू बहाती है

जी हाँ श्रोताओं, आप सबको तहे दिल से धन्यवाद आपके फोन कॉल्स के लिए। ग्रैंड रिट्रीट से संगीता जी अपने समस्त परिवार वालों के लिए गाना सुनाना चाहा है और ये जो गाना हम चला रहे हैं सब समर्पित है आप सभी सुनने वालों के नाम पे। साथ में लाल माटी से सुनीता जी बोलेला की जकर पास ओकर माह ओके चाहे निमन से देखे के तो ये जो न अगला गीत हम ओकर खातिर और साथ में ओकर बहन इस जो इसी दे रोज रहती है उमा जी, साथ में एक और बहन है उसका जो सीमा, उसका नाम सीमा है वो मौताल पर रहती, उनके भाई जो इसी दे रोज रहती है और साथ में संगीता सिरतन जो लाल माटी रहती है उन्होंने भी एक गाना सुनवाना चाहा है उनके चार भाई बहन मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गीता शांति रानी और उन लोगों की माँ है श्रीमती रामावती, बहुत ही प्यार के साथ सभी रिश्तेदारों और उनकी मामी के नाम भी। जहाँ हम चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए माँ की दुआएं हमेशा हमारे साथ चलती हैं और उनकी एक आवाज़ में जो सुकून मिलता है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। अगर आपकी माँ आपके पास है तो आज उन्हें गले लगाइए और अगर दूर है तो एक प्यारा सा फोन ज़रूर कीजिएगा।

0: शाम के 4:32 हुए हैं और हमारे श्रोताओं के प्यारे प्यारे संदेशों का प्यारे प्यारे मैसेजेस का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हाय नमस्ते, आई एम मुकेश मोहन ऑफ अरियता वाकवा, फर्स्ट टाइम टेक्सिंग, फील प्राउड एंड ग्रेट, व्हाट ए प्रोग्राम, सुपर्ब सिलेक्शन, आउटस्टैंडिंग, योर प्रेजेंटेशन अप लेवल, आई लाइक सॉट एंड सूट टॉक, गॉड ब्लेस यू डियर, आई एम ए मुकेश फैंस एंड ए मुकेश सॉन्ग अकॉर्डिंग योर चॉइस, लव यू बेटी, ब्लेस ऑलवेज। बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुकेश मोहन जिस प्यारे मैसेजेस के लिए, और आपने सभी मातृ दिवस के शुभ अवसर पर के संदर्भ में मुकेश मोहन की ओर से जो वक्वा के रहने वाले हैं अब सभी सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं दी हैं और सुन करके बहुत अच्छा भी लग रहा है। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। अगर मेरे पास मुकेश का गाना, मैं ज़रूर आपके लिए चलवा लूँगी।
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

0: से मिले दिल।
1: जी हाँ, चांदनी पुरुषोत्तम जो ब्रिटानिया रहती हैं, उन्होंने कहा उसके मैसेज में हैप्पी मदर्स डे सभी सभी सुनने वालों के लिए।

और राहुल जो बेल्वेडेयर का रहने वाला है, उसके मैसेज में मैं अपनी माँ को धन्यवाद कहना चाहता हूँ जिन्होंने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। और प्रीति जो वाकवा रहती है, मेरी माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त है।

बल्कि जीवन संवारने वाली होती है। माँ का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। हेलो अनुराधा, स्वेनाल हियर कुकिंग एंड लिसनिंग टू यू इस सॉन्ग रिक्वेस्ट विजयपथ फिल्म का गीत हूँ। वैसे आज माँ त्रे दिवस पर आधारित कुछ गाने हम चला रहे हैं। श्रेनाल जी, आपके मैसेजेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भाई श्रवण, भाभी कृति, अभिनव, किया, नव्या और सभी तिलक परिवार वालों और भाभी मौतजी सभी के लिए। और उमा, हाय हेलो जी उमा, क्यू पिप नाइस कलेक्शन तब सॉन्ग, तो बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी। चलिए आप लोगों के नाम भी हम एक अच्छा सा गाना, प्यारा सा गाना करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए और इस प्रोग्राम में भाग लेने

राजेंद्र रघुपत जी, आप जहाँ से भी हमें सुन रहे हैं, आपकी माँ आपको देख रही है, और आप जहाँ भी हैं, आपकी माँ की दुआएं हमेशा आपका साथ, उसके ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। बस ये मत सोचिए कि आपकी माँ आपके पास नहीं है, उनकी यादें हैं आपके पास, और उसका जो संदेश आपने भेजा उसके पास पहुँच भी गई होंगी।

आप सभी के फ़ोन कॉल्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 4028074052506200 पर आपके मैसेजेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

मैं हूं अनुराधा आपके साथ और एक और मैसेज है महिंद जो पालमा से लिखा है। मुझे भी माँ की याद सता रही है, मेरे लिए भी एक गाना चला देना प्लीज। बोल है माँ तेरी आंचल में छुपा लो गले से लगा लो। चलिए आप सबकी मांग वैसे पूरा नहीं कर सकते लेकिन जितने गाने आज हमने चलाया सब आप ही लोगों के लिए हैं।

माँ के ममता का कोई मोल नहीं, उसके प्यार जैसा इस दुनिया में और कोई बोल नहीं। उसके कदमों में जन्नत बसी है, माँ से बढ़कर कोई दौलत नहीं। वैसे दोस्तों, इसी प्यार और ममता के साथ आपसे अनुमति चाहेंगे, आप सभी माताओं को मदर्स डे, मातृ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। याद है 5 बजे श्री विश्वानंद जी आपका साथ देंगे। और आज के इस मदर्स स्पेशल में बस इतना ही। अपनी माँ से प्यार कीजिएगा, उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि माँ का रिश्ता दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता होता है। मैं हूं अनुराधा, आपसे अनुमति चाहती हूं, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम दिल से मिले दिल प्रोग्राम में। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपनी माँ का ख्याल रखिएगा।

0: प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अर्थात वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, किंतु अहंकार से मोहित मनुष्य यह मान बैठता है कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। श्रोताओं, मनुष्य जब अहंकार में डूब जाता है तब वह यह भूल जाता है कि संसार में अनेक अन्य शक्तियाँ भी कार्य कर रही हैं। वह स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ और सबका नियंत्रक समझने लगता है। इतिहास साक्षी है कि जब प्रकांड विद्वान रावण अहंकार के वशीभूत हुआ, अपना विवेक खोकर सीता माँ का अपहरण किया और तीनों लोकों में अपने आप को ही सर्वशक्तिमान समझने लगा, तभी से उसका पतन शुरू हो गया। और कंस की भी यही परिणति हुई। प्रिय श्रोताओं, एक बार फिर अनकही एक कहानी नामक कार्यक्रम में विश्वानंद आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। अपनी स्वरचित व रोचक कहानी लेकर प्रोफेसर राज भी हमसे जुड़ गए हैं, उनका भी हम दिल से स्वागत करते हैं। तो विलंब न करते हुए चलिए सुनते हैं अनकही एक कहानी प्रोफेसर राज की जुबानी।
1: आपका आभार गुरु बिस्वा। नमस्कार प्रिय श्रोतागण, रेडियो की इन मधुर तरंगों पर गुरु बिस्वा के साथ मैं प्रोफेसर राज आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम अनकही एक कहानी में। भारत की पौराणिक कथाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि वे समाज को दिशा देने वाली जीवन शिक्षाएं भी हैं। इन कथाओं में हमें सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, पुण्य और पाप के बीच संघर्ष दिखाई देता है। हर युग में जब अन्याय बढ़ा, जब अहंकार और अत्याचार ने मानवता को चुनौती दी, तब धर्म की स्थापना के लिए एक नई शक्ति ने जन्म लिया। हाँ श्रोतागण,

0: आज की हमारी अनकही कहानी ऐसे ही एक अत्याचारी राजा कंस की है। कंस जो शक्ति और भय के मद में चूर था, जिसने अपने स्वार्थ और सत्ता के लिए मानवता तक को भुला दिया था। लेकिन यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज अनकही एक कहानी में हम जानेंगे कि कैसे सत्य, धर्म और ईश्वर में आस्था अंततः पाप और अत्याचार पर विजय प्राप्त करती है। तो कहानी इस प्रकार शुरू होती है। मथुरा का उत्सव मार्ग सजा हुआ था। देवकी और वासुदेव रथ पर सवार थे। कंस स्वयं अत्यंत प्रसन्न और अहंकारी मुद्रा में रथ हांक रहा था और हंसते हुए देवकी को देखते हुए कंस कहता है,
1: देखो देवकी, आज मथुरा का कोना कोना तुम्हारी विदाई पर झूम रहा है। लोग मुझे क्रूर कहते हैं, पर आज संसार देख ले कि कंस अपनी बहन से कितना अगाध प्रेम करता है।
0: अपने भाई कंस की बात सुनकर देवकी बहुत भावुक होकर कहती है, भैया, आपका यह स्नेह देखकर मेरी आंखें भर आईं। स्वयं मथुरा का भावी सम्राट मेरा रथ हांक रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। और उसी क्षण हाथ जोड़कर वासुदेव भी कहते हैं, युवराज कंस, आपकी इस उदारता ने यदुवंशियों का सिर ऊंचा कर दिया। इस सम्मान के लिए मैं सदैव आपका भारी रहूंगा। कंस छाती ठोकते हुए कहता है,
1: ऋणी? कंस किसी का ऋणी नहीं वासुदेव, यह तो मेरी शक्ति का प्रदर्शन है। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई योद्धा, अस्त्र या देवता नहीं है जो कंस के वैभव को चुनौती दे सके। मैं अजेय हूं।
0: कंस की बात सुनते ही और उसके छाती ठोक कर अपनी बात को रखते ही अचानक वहां का मौसम बदल जाता है। बादलों की भीषण गड़गड़ाहट और बिजली की कड़क के साथ उत्सव का संगीत थम जाता है। कंस आसमान की तरफ देखता है, तभी एक भारी दैवीय आवाज गूंजती है, ओ मूर्ख कंस, जिस अहंकार में तू अंधा है, जरा होश में आ। तू जिस बहन देवकी को विदा करने जा रहा है, इसी का आठवां गर्भ तेरा काल बनेगा, वही तेरा वध करेगा।
2: सन्नाटा छा जाता है। कंस की आंखें क्रोध और भय से लाल हो जाती हैं और वह तलवार खींचकर चिल्लाते हुए कहता है,
1: कौन है, सामने आओ।
0: रथ से उतरकर देवकी के बाल पकड़ता है और उसे नीचे खींचता है।
1: मेरा काल? यह देवकी की संतान मेरा वध करेगी, मैं इस काल के बीज को जीवित ही नहीं छोड़ूंगा।
2: कांपते हुए देवकी कहती है, भैया शांत हो जाइए, यह आप क्या कर रहे हैं?
1: शांत बैठूं? जो डाल अपनी ही जड़ काटे, उसे पहले ही काट देना बुद्धिमानी है। देवकी, मैं तुझे अभी समाप्त करता हूं, अभी।
0: कंस तलवार हाथ में उठाकर लहराता है। तभी कंस की तलवार के आगे वासुदेव आ जाते हैं और वे कहते हैं,
3: ठहरिए युवराज, अपनी ही बहन का वध, यह महापाप आपको नष्ट कर देगा। मुझे सुनिए, आकाशवाणी ने कहा है कि आठवां गर्भ आपका काल होगा, देवकी नहीं। मैं वचन देता हूं कि इसकी कोख से जो भी संतान जन्म लेगी, मैं स्वयं उसे आपके हाथों में सौंप दूंगा।
1: तुम अपनी संतान मुझे सौंप दोगी? क्या एक पिता ऐसा साहस कर सकता है वासुदेव?
0: वासुदेव कहते हैं, सत्य और वचन यदुवंशियों के प्राण है कंस, मैं अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटूंगा। देवकी के प्राण वक्ष दीजिए, कंस वक्ष दीजिए।
1: ठीक है, मैं तुम्हारे वचन पर विश्वास करता हूं, लेकिन तुम दोनों स्वतंत्र नहीं रहोगे। सैनिकों, इन दोनों

0: को अभी मथुरा के सबसे सुरक्षित कारागार में डाल दो, कड़ा पहरा लगाओ।
1: रोते हुए देवकी कहती है, भैया भैया दया करो, भैया दया करो।
0: कंस के शब्दकोश में दया नाम का कोई शब्द नहीं है देवकी। अब वह काल कोठरी ही तुम्हारा ठिकाना होगा, जहां मैं तुम्हारी हर संतान की मृत्यु का उत्सव मनाऊंगा। ले जाओ इसे।
2: सैनिक देवकी वासुदेव को बंदी बनाकर ले जाते हैं। कंस रथ पर खड़ा होकर हंसता है, पर उसकी आंखों में भय साफ दिखाई देता है। मथुरा का अंधकारमय कारागार है। देवकी वासुदेव बेड़ियों में जकड़े हैं और देवकी नवजात शिशु यानी पहला बच्चा को छाती से लगाए रो रही है। शिशु को चूमते हुए देवकी कहती है, मेरा लाल, मेरा पहला बच्चा। वासुदेव, इस काल कोठरी में जहां सूरज की किरण भी नहीं आती, वहां इस मासूम का क्या भविष्य होगा? वासुदेव अपनी पत्नी देवकी की बात सुनकर कहते हैं,
3: धैर्य रखो देवकी, मैंने कंस को वचन दिया था कि मैं अपनी संतान सौंप दूंगा। एक पिता का हृदय फट रहा है, पर हमें वचन निभाना होगा। तभी कारागार का दरवाजा चरमराहट के साथ खुलता है। कंस हाथ में नंगी तलवार लिए प्रवेश करता है और क्रूरता से हंसते हुए कहता है,
0: कंस के काल के वंश का पहला अंकुर फूट ही गया। लाओ वासुदेव, लाओ अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो।
2: देवकी कंस को देखते ही अपनी शिशु को छिपाते हुए कहती है,
1: नहीं भैया, यह तो पहली संतान है।
2: आकाशवाणी ने आठवें गर्व की बात कही थी, इसे छोड़ दो।
0: दूर हट, शत्रु चाहे पहला हो या आठवां, सांप का बच्चा बड़ा होकर जहर ही उगलता है। वासुदेव, अपना वचन निभाओ, अन्यथा तुम दोनों के प्राण यही ले लूंगा।
2: कांपती आवाज में वासुदेव कहते हैं,
3: देवकी सौंप दो इसे, हम विधाता के लिखे को नहीं बदल सकते। अपने वचन की रक्षा के लिए हमें यह घूंट पीना ही होगा। कंस के पैर पकड़कर देवकी रोती हुई कहती है,
1: भैया तुम्हें बचपन के प्रेम का वास्ता, इस निर्दोष को मत मारो, मुझे मार दो, इसे छोड़ दो।
0: ममता के ये नाटक बंद कर। कंस केवल शक्ति और भय की भाषा समझता है।
2: शिशु को हवा में उठाकर कंस फिर चिल्लाता है,
0: रो तू रो, जितना रोना है रो ले, क्योंकि आज के बाद यहां केवल मेरे शत्रुओं के रोने की आवाज ही सुनाई देगी।
2: कंस पूरी ताकत से शिशु को कारागार की पथरीली दीवार पर दे मारता है। शिशु की चीख के बाद सन्नाटा छा जाता है। चीखते हुए देवकी रोती है,
1: नहीं मेरे बच्चे, पापी कंस, तू राक्षस है, ईश्वर तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा।
2: तलवार से खून पोंछते हुए कंस कहता है,
0: यह कंस का न्याय है। सैनिकों, इस कोठरी पर पहरा और सख्त कर दो। जब भी नया शिशु जन्म ले, मुझे तुरंत सूचना मिलनी चाहिए। देवकी, अभी तुझे ऐसे छह और दुखों से गुजरना है।
2: कंस पहले बच्चे को मारते हुए हंसते हुए बाहर निकल जाता है। देवकी दीवार पर लगे खून को छूकर रो रही है। भाद्रपद मास की घनघोर अंधेरी रात है। आठवीं संतान के रूप में गोकुल से लाई गई नवजात कन्या देवकी की गोद

0: गोद में है। कंस तलवार लिए पागलों की तरह प्रवेश करता है और हांफते हुए आंखों में डर लिए कहता है,
1: कहां है मेरा काल? देवकी, वासुदेव, तुम्हारी आठवीं संतान को मेरे हवाले करो। आज कंस अपने सबसे बड़े भाई का अंत कर देगा।
0: रोते हुए देवकी कहती है, भैया, आकाशवाणी ने पुत्र कहा था। यह तो निर्दोष कन्या है। एक लड़की भला तुम्हारा वध कैसे कर सकती है? इस पर दया करो। वासुदेव भी कहते हैं, कंस, नीति समझो। एक नवजात बच्ची को मारकर क्या अपनी वीरता कलंकित करोगे?
1: चुप रहो। पुत्र हो या पुत्री, यदु वंश के इस आठवीं संतान को जीवित छोड़ना अपनी मृत्यु को निमंत्रण देना है।
0: कंस कन्या को छीन लेता है।
1: आज विधाता के इस विधान को मैं अपने हाथों से मिटा दूंगा।
0: कंस कन्या को पत्थर पर पटकने के लिए हाथ उठाता है, पर उसके हाथों से छूटकर हवा में ऊपर उठ जाती है। कारागार की छत गायब हो जाती है और आकाश में दिव्य प्रकाश फैल जाता है। वह कन्या हवा में अष्टभुजाधारी देवी योग माया का रूप धारण कर सिंह पर सवार हो जाती है। कंस भय से कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ता है और कांपती आवाज में कहता है,
1: या क्या माया है? तुम कौन हो?
0: भयंकर अट्टहास के साथ महामाया कहती है, ओ मुरकंस, तू मुझे क्या पटकेगा? मुझे मारने से तेरी मृत्यु नहीं टल सकती, क्योंकि तुझे तेरे पापों का दंड देने वाला इस पृथ्वी पर जन्म ले चुका है।
2: गली गली तेरी लाज जली जी और रब्बा।

0: है वह? मुझे बताओ।
1: महामाया हंसते हुए कहती है, वह गोकुल में सुरक्षित पहुंच चुका है कंस। उसने तेरे विनाश की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। अब तेरा अंत निश्चित है। देवी महामाया बिजली की करकराहट के साथ विलीन हो जाती हैं। चारों ओर फिर अंधेरा छा जाता है और कंस भय से कांपने लगता है। कंस अपने दरबार में बदहवास टहल रहा है। मुकुट उसका हिला हुआ है और चेहरा उतरा हुआ है। दो सैनिक दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं, महाराज की जय हो। आधी रात को इस तरह बुलाने का क्या आदेश है महाराज? सैनिक का कॉलर पकड़कर कंस कहता है,
2: सुनो, गोकुल और आसपास के राज्यों में जाओ। पिछले कुछ दिनों में जितने भी नवजात शिशुओं ने जन्म लिया है, उन सब का वध कर दो।
0: लेकिन महाराज, निर्दोष बालकों की हत्या? जनता विद्रोह कर देगी।
2: विद्रोह की ऐसी की तैसी, मुझे उस काल का सिर चाहिए। पूतना, त्रिनावर्त और बकासुर जैसे असुरों को बुलाओ। उनसे कहो कि गोकुल में तबाही मचा दे। मुझे हर हाल में उस बच्चे की मृत्यु की खबर मिलनी चाहिए।
1: जो आज्ञा मथुरापति। सैनिक तेजी से चले जाते हैं। सिंहासन पर कंस गिरते हुए बैठता है और सिर पकड़कर कहता है,
0: क्या मेरा काल गोकुल में है? अब मुझे न दिन में चैन मिलेगा और न रात में नींद, जब तक वह बालक मर नहीं जाता।
1: पूरी सभा में तनावपूर्ण माहौल है। कंस हाथ में मदिरा का पात्र लिए घूम रहा है। वह पात्र को फर्श पर फेंक देता है। तभी गुप्तचर धूल से लथपथ होकर गिरते हुए आता है और थरथराते हुए सूचना देता है,
0: महाराज, महाराज, गजब हो गया, अनर्थ हो गया महाराज।
1: गुप्तचर के बाल पकड़कर उठाते हुए कंस चिल्लाते हुए कहता है,
2: सीधे बोल, क्या पूतना ने उस बालक का वध कर दिया?
1: रोते हुए गुप्तचर कहता है,
0: नहीं महाराज, पूतना स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो गई। उस चमत्कारी बालक ने दूध के साथ साथ पूतना के प्राण ही चूस लिए। गोकुल के लोग उसे कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण।
2: असंभव, एक शिशु पूतना को कैसे मार सकता है? कहां है मेरी बाकी योद्धा? त्रिनावर्त, बकासुर और अघासुर को भेजो। गोकुल को शमशान बना दो।
1: महाराज, वे सब मारे गए महाराज। त्रिनावर्त बवंडर बनकर उसे ले गया, पर बालक ने उसका गला घोंट दिया। बकासुर ने निगलना चाहा तो बालक ने उसकी चोंच फाड़ दी। अघासुर अजगर बना तो उसका पेट फाड़ दिया। आपके सारे असुर तिनके की तरह बिखर गए महाराज, तिनके की तरह बिखर गए।
2: चुप कर, यह कैसे हो सकता है? यमराज के दूतों को एक ग्वाले का लड़का खेल खेल में मार रहा है, यह क्या हो रहा है?
1: तभी प्रधान सेनापति आते हैं और कहते हैं, महाराज, अब स्पष्ट है कि वह कोई साधारण बालक नहीं है। वह प्रतिदिन शक्तिशाली होता जा रहा है।
2: वह बढ़ता जा रहा है और यहां मेरी छाती पर सांप लौट रहे हैं। मुझे रात को नींद नहीं आती सेनापति। आंख मूंदते ही मुझे वह बालक अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है। बताओ मैं क्या करूं?
1: महाराज, बल से काम नहीं बनेगा महाराज। अब आपको छल का सहारा लेना होगा। उसे गोकुल से निकालकर मथुरा बुलाना होगा महाराज, जहां हमारे खूंखार पहलवान चानूर और मुष्टिक उसका काल बनेंगे।
2: सही कहा तुमने, छल। हाँ, छल। उसे मथुरा बुलाना होगा, जहां काल बनकर कंस स्वयं बैठा है सेना।

0: राष्ट्रपति तुरंत योजना बनाओ जिससे वह बालक स्वयं अपनी मौत के कुएं में चलकर आए।
1: सभी लोग राजमहल के गुप्त मंत्रणा कक्ष में पहुंचे हुए हैं। गंभीर विचार विमर्श चल रहा है। कंस ऊंचे आसन पर बैठा हुआ है। पास में पहलवान चानूर खड़ा है। सामने यदुवंशी अक्रूर जी गंभीर मुद्रा में खड़े हैं। कुटिलता से मुस्कुराते हुए अक्रूर जी से कंस कहता है,
0: आइए चाचा अक्रूर, पधारिए, मथुरा के सबसे बुद्धिमान यदुवंशी का स्वागत करते हैं हम। आज मुझे आपकी एक बहुत बड़ी सेवा की आवश्यकता है चाचा जी।
1: अक्रूर जी कहते हैं, महाराज को प्रणाम। आज्ञा कीजिए महाराज, आज यदुवंशियों के लिए क्या आदेश है?
0: आदेश नहीं, निवेदन है। मैंने मथुरा में भव्य धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। मैं चाहता हूं कि आप स्वयं रथ लेकर गोकुल जाएं और नंद के दोनों बालकों कृष्ण और बलराम को यहां आमंत्रित करके लाएं।
1: संदेह से अक्रूर जी कंस की ओर देखते हैं। कृष्ण और बलराम? महाराज, वे तो अभी अबोध बालक हैं। उन्हें इस राजकीय यज्ञ में बुलाने का भला क्या औचित्य है? क्रोध से आंखों में झांकते हुए कंस कहता है,
0: मुझसे छल मत करो चाचा। पूतना बकासुर अघासुर को मारने वाला अबोध नहीं हो सकता। वह मेरा काल है और मैं अपने काल को स्वयं बुलाकर यहां मारूंगा।
1: यदि वे आपके शत्रु हैं तो मुझे माध्यम क्यों बना रहे महाराज? क्या आप निमंत्रण देकर उनके साथ घात करेंगे?
0: नहीं, घात नहीं, यह मल युद्ध होगा। अखाड़े में जब वे चानुर और मुष्टिक से लड़ेंगे तो खेल खेल में ही उनकी हड्डियां चूर हो जाएंगी, और यदि वे बच भी गए तो द्वार पर खड़ा कुवल या पीड हाथी उन्हें कुचल देगा।
1: उसी समय चानूर भी छाती ठोकते हुए कहता है, उन दोनों बच्चों की गर्दन मरोड़ने में मुझे क्षण भर का समय नहीं लगेगा। क्रूर जी, आपको तो पता है। क्रोधी स्वर में अक्रूर जी कहते हैं, यह अधर्म है महाराज। निमंत्रण देकर अतिथियों की हत्या करना महापाप है। मैं इस षड्यंत्र का हिस्सा नहीं बन सकता। तभी तलवार की मूठ पर हाथ रखकर ठंडी आवाज में और गुस्सेल रूप में कंस चिल्लाता है,
0: सावधान अक्रूर, तुम्हारे इस इनकार की कीमत कारागार में बंद देवकी और वासुदेव को चुकानी पड़ेगी। यदि तुम गोकुल नहीं गए तो सूर्यास्त पहले मैं उन दोनों का सिर धड़ से अलग कर दूंगा। अब सुनो, उनके प्राण या मेरा आदेश।
1: कांपते हुए मन में कृष्ण को स्मरण कर सोचते हैं और अक्रूर जी कहते हैं, शायद विधाता की यही इच्छा है कि प्रभु यहां आकर इस पापी का अंत करें। फिर वे कहते हैं, शांत हो जाइए महाराज, मैं विवश हूं। देवकी वासुदेव की रक्षा के लिए मैं कल सुबह ही गोकुल जाकर उन्हें आदर सहित मथुरा ले आऊंगा। पीठ थपथपाते हुए कंस कहता है,
0: बहुत अच्छे, नंद से कहना कि मैं उनकी वीरता से प्रसन्न होकर उन्हें पुरस्कृत करना चाहता हूं।
1: अक्रूर जी मन ही मन सोचते हैं, पुरस्कृत तो तुम होगे कंस अपने कर्मों के फल से। और फिर कहते हैं, जो आज्ञा महाराज। और यह कहकर अक्रूर जी

0: भारी मन से बाहर निकल जाते हैं। और इधर कंस चानूर से क्रूरता से हंसते हुए देखता है और कहता है,
1: देखा चानूर, चूहा स्वयं बिल्ली के बिल में आने को तैयार हो गया। यह धनुष यज्ञ नहीं, उस कृष्ण का अंतिम संस्कार होगा।
0: और मथुरा की भव्य रंगशाला सजी हुई है, अखाड़ा तैयार हो चुका है। सबसे ऊंचे मंच पर राजा कंस स्वयं सिंहासन पर बैठे हैं, जिसके पैर भय से कांप रहे हैं। बीच में पहलवान चानूर और मुष्टिक छातियां ठोक रहे हैं। तभी बाहर से सैनिकों की चीख पुकार और हाथियों के चिंघारने की आवाजें आती हैं। उन आवाजों को सुनकर कंस घबरा जाता है और बोलता है,
1: यह कैसा कोलाहल है? सेनापति, क्या अक्रूर उन ग्वालों के छोरों को लेकर आ गए?
0: तभी एक सैनिक लहूलुहान अवस्था में अखाड़े में दौड़ कर गिरता है और कहता है,
2: महाराज, अनर्थ हो गया, विनाश आ गया।
1: सीधे बोल मूर्ख, क्या मेरे महाबली युवल या पीठ हाथी ने मुख्य द्वार पर ही उस कृष्ण का कचंबर निकाल दिया?
0: कांपते हुए सैनिक कहता है,
2: नहीं महाराज, कृष्ण ने खेल खेल में उसके दांत उखाड़ दिए और बलराम जी ने उसकी पूंछ पकड़कर उसे हवा में घुमा दिया।
1: क्या
2: हाथी मृत पड़ा है और वे दोनों भाई उसी दांतों को अस्त्र बनाकर अखाड़े की ओर बढ़ रहे हैं।
1: क्या कुवल या पेट भी मारा गया? चानूर, मुष्टिक, सावधान हो जाओ, वे काल के टुकड़े भीतर आ रहे हैं।
0: द्वार से उसी क्षण श्री कृष्ण और बलराम प्रवेश करते हैं। चेहरों पर अलौकिक तेज और हाथों में हाथी के खूनी दांत हैं। जनता जय कृष्ण के जयकारे लगाने लगती है।

0: अखाड़े में श्री कृष्ण और बलराम जब प्रवेश करते हैं तो वहां की जनता जय कृष्ण के जयकारे लगाने लगती है और जय श्री कृष्ण के जयकारा सुनकर कंस क्रोधित हो जाता है और जनता पर चिल्लाते हुए कहता है,
1: चुप रहो, तो तुम ही हो नंद के छोड़े। तुमने मेरे असुरों को मारा, हाथी का वध किया, लेकिन यह कंस का अखाड़ा है, यहां से जीवित जाना असंभव है।
0: मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, कंस मामा, हम तो यहां केवल आपका धनुष यज्ञ देखने आए थे, पर आपके सैनिकों ने द्वार पर हमारा स्वागत हाथी से कराया। अब बताइए आगे का क्या खेल है?
1: असली खेल तो अब शुरू होगा। आओ हमसे मल युद्ध करो। यदि पुरुषों का रक्त है धमनियों में तो हमसे दो दो हाथ करो।
0: श्री कृष्ण की बात सुनते ही चानूर अपनी मूछों पर ताव देते हुए यह बात कहता है। तभी बीच में बलराम गर्जना के साथ आते हैं, कान्हा, बहुत हो गई इसकी बकवास, यह मुष्टिक मेरा शिकार है और तू इस चानूर का घमंड चूर कर। और यह कहकर बलराम मुष्टिक की तरफ झपटते हैं। अखाड़े में भयंकर मलयुद्ध शुरू हो जाता है। चानूर पूरी ताकत से कृष्ण पर प्रहार करता है, पर कृष्ण बिजली की फुर्ती से बच जाते हैं और हांफते हुए चानूर कहता है,
1: तू बच क्यों रहा है कृष्ण, सामने आकर वार कर।
0: श्री कृष्ण अलौकिक मुस्कान के साथ कहते हैं, चानूर, कंस के पाप का घड़ा तुम जैसे पापियों के बल पर ही टिका है। चलो अब तुम्हारा समय समाप्त हुआ। श्री कृष्ण अचानक चानूर की दोनों भुजाएं पकड़कर उसे हवा में चक्र की तरह घुमाते हैं और पत्थर पर दे मारते हैं। चानूर वहीं ढेर हो जाता है। दूसरी तरफ बलराम जी एक जोरदार घूंसा मुष्टिक की छाती पर मारते हैं जिससे वह भी मर जाता है। और ये सारी चीजें देखकर मंच पर कंस थरथर कांपने लगता है।
1: चानूर, मुष्टिक, उठो, सैनिकों, बाण चलाओ, इन दोनों बालकों को यहीं भून डालो।
0: तभी मेघ जैसी आवाज के साथ श्री कृष्ण कहते हैं, कंस, तुम्हारे ये भारे के सैनिक अब तुम्हारा साथ नहीं देंगे। देखो तुम्हारा शिव धनुष टूट चुका है, तुम्हारे मल मारे जा चुके हैं, अब तुम्हारे पापों का हिसाब करने की बारी है मामा। तभी बलराम भी कहता, कान्हा, अब और प्रतीक्षा मत कर, इस अत्याचारी का मुकुट इसके सिर से नीचे गिरा। कंस जहां सबसे ऊंचे राज सिंहासन पर बैठा है, श्री कृष्ण एक ही छलांग में कंस के ठीक सामने पहुंच जाते हैं। कंस के अंगरक्षक और सैनिक भय के मारे अपनी तलवारें छोड़कर भाग रहे हैं। उस अखाड़े में चारों ओर हर हर महादेव और नारायण नारायण की गूंज है।

0: अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर अपनी भारी तलवार लहराता है। उसकी आंखों में मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा है। आक्रोश और डर से चीखते हुए तलवार तान कर कंस चिल्लाता है,
1: दूर हट जागवाले के छोड़े, तू कंस को डराना चाहता है? मैं मथुरा का अधिपति हूं, मगध नरेश जरासंघ का मित्र हूं, देवताओं को अपने पैरों तले रौंदने वाला कंस हूं मैं। कंस, तू साक्षात काल भी है तो आज कंस की इस तलवार की धार देख।
0: अत्यंत उग्र और गर्जनापूर्ण स्वर में आंखें क्रोध से लाल किए हुए श्री कृष्ण कहते हैं, कंस, तेरा यह खोखला अहंकार अब तुझे नहीं बचा सकता। अपनी इस जंग लगी तलवार का भय किसे दिखाता है पापी? तेरी इस क्रूरता का अंत करने स्वयं महाकाल यहाँ प्रकट हुआ है। देख अपने चारों ओर, जिन पापों की नींव पर तूने यह महल खड़ा किया था, आज उसकी एक एक ईंट तेरे विनाश का उत्सव मना रही है। कंस, उत्सव मना रही है। पागलों की तरह तलवार से कृष्ण पर वार करता हुआ कंस कहता है,
1: मैं नहीं मानती किसी आकाशवाणी को, मैं नहीं मानता किसी विधाता को। अगर तू मेरा काल है तो मिटा दूंगा इस काल को। मर जा कृष्ण, तू मर जा।
0: कंस पूरी ताकत से तलवार चलाता है, पर श्री कृष्ण बिजली की फुर्ती से वार को खाली कर देते हैं। कृष्ण आगे बढ़कर एक जोरदार प्रहार कंस की कलाई पर करते हैं, जिससे उसकी तलवार छिटक कर दूर जा गिरती है। कंस निहत्था हो जाता है। कंस के बाल पकड़कर उसे सिंहासन से नीचे घसीटते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, यह तलवार निर्दोषों का रक्त बहाने के लिए उठी थी ना कंस? इसे हाथ से तूने मेरी माँ देवकी के 6 नवजात शिशुओं को पत्थरों पर पटका था, है ना? बोल अत्याचारी, कहाँ गई तेरी वह क्रूरता, कहाँ गया तेरा वह अट्टहास? भूमि पर गिर कर हाँपते हुए अपमान और गुस्से से तड़प कर कंस पीरा से तड़पते हुए कहता है,
1: छोड़ मुझे कृष्ण, तू छल कर रहा है। एक राजा पर इस तरह हाथ उठाना मर्यादा के विरुद्ध है कृष्ण।
0: कंस की छाती पर अपना पैर रखकर करकती आवाज में श्री कृष्ण दहाड़ते हुए कहते हैं, मर्यादा, जो पापी अपनी ही बहन के बाल पकड़कर उसे काल कोठरी में डाल दे, जो अपने बूढ़े पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर सिंहासन छीन ले, उसके मुंह से मर्यादा शब्द शोभा नहीं देता कंस? तूने मथुरा की भूमि को निर्दोषों के रक्त से सींचा है, आज इस धरती की एक एक धूली तुझसे अपने अपमान का प्रतिशोध मांग रही है, अपने अपमान का प्रतिशोध मांग रही है कंस। तभी जंजीरों में जकड़े देवकी और वासुदेव हांपते हुए वहां प्रवेश करते हैं। देवकी अपने मरे बच्चों को याद कर रो पड़ती है। आक्रोश और आंसुओं के साथ देवकी कृष्ण को देखते हुए कहती है, कृष्ण मेरे लाल, इस राक्षस को मत छोड़ना, इसने मेरी कोख सुनी की है, इसने मातृत्व का चीर हरण किया है, इस पापी को इसके कर्मों का दंड दे बेटा, इसके कर्मों का दंड दे। कृष्ण के पैर के नीचे दबा हुआ दर्द से चीखते हुए कंस कहता है,
1: देवकी, वासुदेव, अपने इस यमराज जैसे पुत्र को रोको, मैं आत्मसमर्पण करता हूं, मुझे छोड़ दो कृष्ण, मुझे छोड़ दो।
0: भयंकर गर्जना करते हुए साक्षात नारायण के महाकाल के रूप में श्री कृष्ण वहां उपस्थित है। वे कंस को कहते हैं, कंस, कंस की शब्दावली में दया नाम का कोई शब्द नहीं होता, ये तेरे ही शब्द थे ना, तो सुन, आज नारायण के न्याय में भी तेरे लिए केवल मृत्यु ही शेष है। तेरा पाप का घड़ा कंठ तक भर चुका है कंस, अब इस पृथ्वी पर तेरे पाप का अंत निश्चित है। श्री कृष्ण पूरी ताकत से कंस को हवा में उठाते हैं और अखाड़े की उस पथरीली भूमि पर पूरी शक्ति से दे मारते हैं। कंस के मुंह से रक्त का फवारा फूट पड़ता है। उसका

राजमुकुट टूटकर धूल में मिर जाता है। कंस तड़पते हुए अंतिम सांस लेता है और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं और जनता कृष्ण और बलराम का जय जयकार करने लगती है और कहती है, अधर्मी कंस का नाश हो, कंस का वध हुआ, द्वारकाधीश की जय, प्रभु श्री कृष्ण की जय, बलराम की जय। और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगती है, शंखनाद गूंज उठता है। श्री कृष्ण शांत मुद्रा में आते हैं और अपनी माँ देवकी और पिता वासुदेव की बेड़ियाँ अपनी उंगलियों के स्पर्श से तोड़ देते हैं। माता पिता के चरणों में सिर झुकाकर अत्यंत सौम्य स्वर में श्री कृष्ण कहते हैं, मातश्री, पितृदेव, आज यदुवंश स्वतंत्र हुआ। इस धरती से अधर्म के सबसे बड़े अंधकार का अंत हुआ। अब मथुरा में पुनः धर्म, न्याय और शांति की स्थापना होगी। कृष्ण को गले लगाते हुए भावुक स्वर में वासुदेव कहते हैं, धन्य हो कृष्ण मेरे पुत्र, आज तुमने पृथ्वी का भार हर लिया। पुत्र, अधर्म चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत सत्य के हाथों ही होता है। आज धर्म की विजय हुई।

है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो।

सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।

सोच लो, या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल, लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल।

0: तो प्रिय श्रोतागण, आपने अभी अभी एक बहुत ही दिलचस्प रोचक कहानी का रसास्वादन किया, उसका आनंद उठाया, जिसका शीर्षक है कंस। हम अब प्रोफेसर राज जी से उसका केंद्रीय संदेश जानना चाहेंगे।
1: जी प्रोफेसर राज जी। जी प्रिय श्रोतागण, कंस एक शक्तिशाली राजा था जी, लेकिन शक्ति के अहंकार में उसे क्रूर और निर्दयी बना दिया था। उसने अपने भय और स्वार्थ में निर्दोष लोगों पर अत्याचार किए और यहाँ तक कि अपनी बहन देवकी तथा वासुदेव को भी कारागार में बंद कर दिया
0: जी।
1: यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भय और अहंकार मनुष्य को अंधा बना देते हैं। सत्ता और शक्ति यदि धर्म से दूर हो जाए तो वे विनाश का कारण बनती हैं, और सत्य को चाहे जितना दबाया जाए वह अंततः विजयी होकर ही सामने आता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस बात का प्रतीक है कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब धर्म की रक्षा के लिए दिव्य शक्ति अवश्य प्रकट होती है। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है, पाप पर पुण्य की, असत्य पर सत्य की और अधर्म पर धर्म की विजय निश्चित है
0: जी।
1: इसके अलावा एक संदेश और है और उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है गुरु विश्वा आपके लिए
0: जी अवश्य,
1: कि एक पुत्र का अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य होता है और कृष्ण के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आप किस तरह सोचते हैं?
0: जी, एक पुत्र का अपने माता पिता के प्रति जो कर्तव्य होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बचपन से ही माता पिता बच्चे की देखरेख करते हैं, खासकर मान लीजिए एक पुत्र हो उसकी देखरेख करते हैं, तो पुत्र का यह कर्तव्य है कि वह अपनी माँ का या अपने पिता का अच्छी तरह से ख्याल रखे और अपने परिवार में या अपने परिवार का नाम रोशन करे, पढ़ लिख कर
1: जी,
0: सुकर्म करके। ओके, तो इस प्रकार से अब देखिए, एक बहुत अच्छा उदाहरण है, मैंने ये संस्कृत से पढ़ा हुआ है, कि एक ही चंद्र, मतलब एक ही चांद, चांद की चांदनी पूरी रात्रि को प्रकाशित कर देती है।
1: बिल्कुल
0: उसी प्रकार एक ही अच्छा पुत्र, कुलीन, सुयोग्य, एक परिवार का नाम रोशन कर देता है, कैसे, उस चांद की तरह, उस चांद की चांदनी की तरह
1: जी, जी।
0: तो यदि पुत्र कुलीन हो, शिक्षित हो, योग्य हो तो यही काफी है, हमें 10 पुत्रों की आवश्यकता नहीं, एक ही पुत्र या एक ही पुत्री काफी है जो कुलीन हो।
1: बिल्कुल
0: जी,
1: आपने बहुत अच्छी बात कही कि पुत्र और पुत्री दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है और पुत्र और पुत्रियों दोनों को सोचना चाहिए
0: जी।
1: जहां तक मैं आपके उत्तर को समझ रहा हूँ कि हमारा खून का रिश्ता है, चाहे हम सुख में हो या दुख में हो, हम जहां से उत्पन्न हुए हैं हमें उनका साथ कभी भी मरते दम तक
0: नहीं छोड़ना चाहिए।
1: इस बार की जो लोकोक्तियां हैं हिंदी में है, दुधारू गाय के लातों सहल जाला, दुधारू गाय के लातों सहल जाला
0: जी।
1: इसका अर्थ हमारे श्रोतागण खोजेंगे, हिंदी में जो लोकोक्ति है वह है घर बैठे गंगा नहाना, घर बैठे गंगा नहाना। पिछली बार जो लोकोक्तियां पूछी गई थी उसका अर्थ गुरु विश्वा बताएंगे। भोजपुरी में लोकोक्ति जो पूछी गई थी, जेकरा हाथ में कमाई ओकरा मुंह में मिठाई,
0: जी हाँ, उसका अर्थ है जो कमाता है वही सुख का आनंद लेता है
1: जी। और हिंदी में लोकोक्ति थी, एक ही थाली के चट्टे बट्टे
0: जी हाँ।

0: इसका भावार्थ है एक जैसे स्वभाव या विचार वाले लोग। श्रोताओं, इस लोकोक्ति पर आधारित एक छोटी सी कहानी है, कृपया इसका रसास्वादन कीजिए। राहुल और समीर बचपन से घनिष्ठ मित्र थे। लोग उन्हें देखकर कहते एक ही थाली के चट्टे बट्टे। दोनों की आदतें भी समान थी, मेहनत से जी चुराना और तुरंत हार मान लेना। एक दिन उनके गुरु ने घोषणा की कि मेहनती व्यक्ति को विशेष ज्ञान मिलेगा। दोनों ने परिश्रम करने की कोशिश की पर जल्द ही पुरानी आदतें लौट आईं और वे पीछे रह गए। गुरु ने समझाया कि समान सोच अच्छी हो सकती है पर गलत आदतें जीवन बिगाड़ देती हैं। यह सुनकर राहुल ने खुद को बदल दिया और मेहनत करने लगा। समीर भी धीरे धीरे इस परिवर्तन से प्रभावित हुआ और परिश्रमी बन गया। दोनों से हम यह सीखते हैं कि संगति और अच्छी सोच ही जीवन को सुखमय बनाती है। श्रोताओं,
1: इस लोकोक्ति को आधार बनाकर स्वरचित लघु कथा सुनाने के लिए आपका हृदय से आभार गुरु विश्वा।
0: धन्यवाद।
1: प्रिय श्रोतागण, हर युग में समाज को ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े हो सकें। क्या आपने कभी अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई है? क्या आपने किसी कठिन परिस्थिति में भी सत्य का साथ दिया है? अनकही एक कहानी आपको आमंत्रित करता है अपनी ऐसी प्रेरक कहानियां हमें लिखकर भेजने के लिए जो सत्य, साहस, न्याय और मानवीय मूल्यों से जुड़ी हो। आपकी चुनी हुई कहानियां हमारे रेडियो कार्यक्रम में प्रसारित की जाएंगी और आगे चलकर एक पुस्तक का हिस्सा भी बनेंगी। तो आइए हम अपने भीतर के साहस और सत्य को पहचानें और अपने जीवन में धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। अपनी रचनाएं भेजें इस ईमेल पर professorrajsekhar@gmail.com। हमसे जुड़े रहिए, सुनते रहिए, लिखते रहिए, क्योंकि आपकी एक सच्ची कहानी किसी और के जीवन में आशा और सत्य का प्रकाश जगा सकती है। धन्यवाद। नमस्कार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए प्रोफेसर राज जी। श्रोताओं, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रमशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य का पतन अर्थात डाउनफॉल होने लगता है। श्रोताओं, जब कंस ने भविष्यवाणी सुनी कि देवकी का आठवां पुत्र उसका वध करेगा, तब उसके भीतर तीव्र क्रोध उत्पन्न हुआ। उसे अपना जीवन बहुत प्यारा था। अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण उसे यह भ्रम हो गया कि वह अपनी मृत्यु को रोक सकता है। मोह के वशीभूत होकर वह भविष्यवाणी को भूल गया और बुद्धिहीन हो गया। नवजात शिशुओं की हत्या और साधु संतों पर अत्याचार करने लगा। बुद्धि नष्ट होने के बाद उसका अंत निश्चित हो गया। इसीलिए अहंकार और क्रोध ही विनाश के मूल कारण है। प्रिय श्रोताओं, अब हम अपने कार्यक्रम के अंत तक आ पहुंचे हैं। अब विश्वानंद और प्रोफेसर राज को विदा दीजिए। अगले सप्ताह पुनः एक ऐसी ही प्रेरक व दिलचस्प कथा लेकर आप सभी लोगों के समक्ष हम उपस्थित होंगे। आप सभी लोगों ने हमें ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए कोटिशः धन्यवाद और नमस्कार।

0: शाम के ठीक 6 बजे हैं अहम खबरें सुनिए मोगोवाकवा सिर्फ 48% भरा है अधिकारी जल संचालन रणनीति पर दोबारा गौर कर रहे हैं नदियों में फिल्टरों की स्थापना और भूमिगत जलाशयों के लिए टेंडर प्रक्रिया मुख्तलिफ कदमों में शामिल समाज सुरक्षा दफ्तर रुजिर में सेवाओं को डिजिटलाइज किया गया लाभार्थियों के की दस्तावेजों को डिजिटलाइज बनाने का सुधार अपनाया गया ताकि उनको दी जा रही सेवाओं को और तेज तथा आधुनिक बनाया जा सके सर्दी जुकाम से बचने के लिए टीकाकरण अभियान देश के सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में शुरू अब तक 65,000 से ज्यादा लोगों ने ये टीका लगवा लिया है और यूरोप में गर्मी की तेज लहर स्पेन में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है नमस्कार और आदाब कल कम बारिश की वजह से जलाशयों में बहुत दबाव है जलाशयों पर बहुत दबाव है पानी की सप्लाई के लिए नए साधन तलाशने की बहुत बड़ी ज़रूरत है मुर्शस के लिए जल संचालन एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है मोगोवाकवा सिर्फ 48% भरा है अधिकारी जल संचालन की रणनीति पर दोबारा गौर कर रहे हैं नदियों में करीब 50 फिल्टरों की स्थापना की जा चुकी है इसके अलावा भूमिगत जलाशयों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है अधिकारी कम महंगी वाली परियोजनाओं को मद्देनजर रख रहे हैं पानी को स्टॉक करने के वास्ते भी कदम उठाए जा रहे हैं नीतू शाजिहा
1: मई के इस महीने में मोगोवाकवा की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है द्वीप का प्रमुख जलाशय केवल 48% तक ही भरा हुआ है इस वर्ष भी गर्मी में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई फरवरी जिसे आमतौर पर सबसे अधिक वर्षा वाले महीनों में गिना जाता है उसमें भी सामान्य वर्षा का केवल 27% ही दर्ज किया गया इस स्थिति का प्रभाव केवल जलाशयों पर ही नहीं बल्कि नदियों पर भी पड़ रहा है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण पिछले कुछ वर्षों में गर्मी की बारिश लगातार कम होती जा रही है
2: Durant 5 dernières années, nous avons gagné 2 ou 3 l'événement de déficit pluviométrique. Actuellement, nous avons un stock total de à peu près de 66% de maximum. Mais l'année dernière, nous avons fini d'afficher un stockage de à peu près 80-85%. Nous avons un déficit de à peu près 22% quand nous comparons à l'année dernière. Et quand nous comparons à l'année 2024, Côté là, nous avons gagné bon l'appli durant la période de janvier, février, mars. Nous avons un déficit de plus que 50%.
1: हर साल दोहराई जाने वाली स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को राष्ट्रीय जल नीति में बदलाव लाना पड़ा है मुख्य उद्देश्य है जल आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाना
2: Sa réservoir qui nous est rempli durant le mois de janvier, février, mars, c'est ça même, ça stock là nous servit durant le mois d'octobre, novembre et décembre. Mais cette fois-ci, nous pas fin de récit rempli ça. Ça veut dire que ça stock qui nous est là actuellement là, nous besoin faire durer le plus longtemps possible.
1: प्रस्तावित समाधानों में नदियों में कंटेनराइज्ड प्रेशर फिल्टर्स की स्थापना भी शामिल है अब तक लगभग 50 इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं
2: Ça l'IP aide beaucoup à pallier ban manque dans ban région très déficitaire. Côte, par exemple, si il y a ban forage, c'est-à-dire ban borehole qui peut chuter, bien à partir de là, ce qui peut arriver, c'est que je peux pallier ce ban manque là à travers ban containerized pressure filters. Il y a un ban appel d'offres qui nous finit lancer pour ça, pour faire ban forage, tout ça. Développe ban forage davantage dans différentes parties de l'île, mais surtout nous pouvons donner priorité dans ban région un peu sec.

0: जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक अन्य प्रस्ताव मिनी डैम्स का निर्माण। ऊर्जा मंत्रालय वाटर डिसैलिनेशन की संभावना पर भी अध्ययन कर रहा है। इस संबंध में एक टेंडर जारी किया जा चुका है।
1: उपभोक्ताओं की हिफाजत के लिए एक नए कानून पर काम किया जा रहा है। आज सुबह पैदावारों पर मुनहसिर एक कार्यशाला लगाई गई जिसमें उपभोक्ता सुरक्षा मंत्रालय के अफसरों ने शिरकत फरमाई। गैर सरकारी संगठनों और कोमिजा तथा दक्षिण अफ्रीका से नेशनल कंज्यूमर कमीशन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कुनल गुजी, आशिता रघु।
2: उपभोक्ता संरक्षण के लिए नए कानून के तहत परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले जिस पहलू पर विचार किया गया वह है उत्पादों की सुरक्षा। कॉर्पोरेट जोखिम या मुनाफे के अनुपालन पर ध्यान देना बहुत आसान है, लेकिन हमें कभी भी वास्तविक मानवीय कीमत को नहीं भूलना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन प्रमाण पत्र उत्पाद की मजबूती जैसे प्रदर्शन मानदंड तथा बाजार निगरानी तंत्र, ये सभी पहलू जिम्मेदार व्यापार सुनिश्चित करने के लिए नए कानून में शामिल किए जाएंगे। उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि आयातित उत्पाद मॉरिशस पहुंचने से पहले सुरक्षित और मानकों के अनुरूप हों।
3: Product safety is a shared responsibility.
2: उत्पाद सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है। प्रस्तावित महत्वपूर्ण उपायों में असुरक्षित वस्तुओं को वापस मंगवाने से जुड़े कड़े प्रावधान, अनुचित अनुबंध शर्तों पर रोक और कानून लागू करने की क्षमताओं को और मजबूत बनाना शामिल है। आसिम के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों के बीच प्रोटोकॉल को भी स्पष्ट करना आवश्यक है। मॉरिशस उपभोक्ता संघ की एक सिफारिश ये है कि उपभोक्ताओं के लिए सहायता तंत्र स्थापित किया जाए जिसमें कानूनी सहायता भी शामिल हो।
4: Au-delà de la sécurité, la possibilité qu'ils ont pas gagné satisfaction, qu'ils ont capable challenge ça.
2: सुरक्षा से अधिक असंतुष्टि होने पर आपको अदालत तक जाने का अवसर मिलेगा। उत्पाद के साथ साथ सेवा पर भी बल डाला जा रहा है। उचित लेबलिंग का होना अनिवार्य है। उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय ऐसे कानूनी ढांचे पर विचार कर रहा है जो ऑनलाइन बिक्री, भ्रामक विज्ञापनों और ग्रीन वॉशिंग जैसी मौजूदा समस्याओं के खिलाफ उपभोक्ताओं के अधिकारों को और मजबूत बनाए।
1: कल राष्ट्रसभा में कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल को दूसरी पढ़त पर पेश किया गया। संविधान में सुधार लाने के मकसद से प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम ने लोकतंत्र को मजबूत करने, सरकारी संस्थाओं में असमानताओं को खत्म करने और सुधारों में जनता के फायदों को ध्यान में रखने पर जोर दिया। टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता, इतला करने की आज़ादी, जुडिशियल और चुनाव प्रणाली में सुधार, आयोग इन सभी पहलुओं का जायजा लेगा। अब्दुल बुला की रजनी बेकर।
5: दूसरी पढ़त पर कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन बिल के प्रस्तुत किए जाने के दौरान प्रधानमंत्री ने इस विधेयक के महत्व पर जोर दिया। खासकर सरकारी संस्थाओं में निष्पक्षता बढ़ाते हुए लोकतंत्र को मजबूत करते हुए। इसके अलावा डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आयोग के उद्देश्यों पर भी बात की जो अपने कार्यों में जनता के हितों को आगे रखेगा। उन्होंने कहा,
6: By this bill we take an important step to fulfill An electoral promise.
5: इस विधेयक के साथ एक अहम कदम उठा रही है चुनाव वचनों का पालन करने की दिशा में। आज हम संविधान में सुधार नहीं ला रहे हैं बल्कि स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, इसे कायम करने की बात कर रहे हैं। इस बात पर जोर देना जरूरी है कि एक स्वतंत्र कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन जिसके अंतर्गत विस्तृत रूप से परामर्श किए जाएंगे, संवैधानिक सुधारों की जांच की जाएगी और राष्ट्रपति तथा इसके साथ साथ सरकार को सुझाव पेश किए जाएंगे। आयोग को सभी विचारों को सुनने की जिम्मेदारी होगी, विशेषज्ञों के साथ बातचीत की जाएगी, साथ में सिविल सोसाइटी संस्थाओं के साथ, राजनीतिक पार्टियों के साथ, कानूनी पेशेवरों के साथ, एकेडमिक्स भी और नागरिकों के साथ भी। संवैधानिक सुधारों पर केवल राजनीतिज्ञों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, पूरा राष्ट्र ही इससे संबंधित है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने सरकारी टेंडरों की अपील में पारदर्शिता की अहमियत पर बल डाला और साथ में उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि आयोग के कार्यों की प्राथमिकताओं में खबर की स्वतंत्रता भी शामिल है। उन्होंने कहा,
6: फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट विल बी इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस गवर्नमेंट एंड द कमीशन विल एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल।
5: ये सरकार फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट पेश करेगी और आयोग संवैधानिक सिद्धांतों की जांच करेगा।

0: देश को लंबे समय तक अंधेरे में रखा गया है। दूसरी बात, आयोग सीनियर ऑफिशियल्स अपॉइंटमेंट कमेटी कायम करने की बात की जांच करेगा, जो प्रमुख सरकारी संस्थाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति पर सुझाव देगा। ये पाया गया है कि पिछली सरकार के शासन के दौरान किस तरह बुरे प्रभाव पड़े, जब स्वतंत्र कही जाने वाली संस्थाओं के प्रमुख राजनीतिक कारणों से कार्यरत रहे, न कि योग्यता और ईमानदारी के बलबूते पर कार्य करते रहे। इसके परिणाम स्वरूप संस्थाओं को भारी नुकसान पहुंचा, स्थिति चिंताजनक होती चली गई। इसके अतिरिक्त आयोग न्यायिक अधिकारों के संचालन पर सुझाव भी तैयार करेगा, जैसे कि एक नई अपील अदालत कायम करने की संभावना पर, साथ ही सुप्रीम कोर्ट में एक संवैधानिक डिवीजन को लेकर भी। इसके अलावा डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन की स्वतंत्रता सुदृढ़ करने पर भी चर्चा। डॉक्टर नवीन राम गुलाम के अनुसार आयोग गणराज्य के राष्ट्रपति की नियुक्ति पर एक इलेक्टोरल कॉलेज कायम किए जाने की भी जांच करेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि मॉरिशस के चुनाव प्रणाली पर भी कार्य निर्धारित है। उन्होंने कहा, हमारी चुनाव प्रणाली की अखंडता सबके लिए नींव की तरह है। एक चुनाव जो स्वतंत्र नहीं है, न्याय संगत नहीं है, विश्वसनीय नहीं है, तो चुनाव है ही नहीं। लोकतंत्र का प्रदर्शन है लोकतंत्र का पोशाक पहने हुए। अतः आयोग चुनाव सुधारों के कॉम्प्रिहेंसिव समझदार पैकेज की जांच करेगा। चुनाव आयुक्त के लिए ज्यादा मजबूत अधिकार और स्वतंत्रता निर्धारित है, इलेक्टोरल सुपरवाइजरी कमीशन के लिए भी। तीव्र गति से न्याय, चुनाव विवादों को लेकर भी कदम, जिससे लोगों की चाह की झलक मिले। एक कारगर विपक्ष की जरूरत है, किसी भी लोकतंत्र में इसकी आवश्यकता है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। इसके अलावा राजनीतिक पार्टियों के रेगुलेशंस भी हैं, चुनावी फंडिंग भी है, सदस्यों के लिए राइट टू रिकॉल की भी बात है। जब गंभीर व्यवहार हो, इस पर भी गौर करना चाहिए। आयोग को राज्यसभा के सदस्यों की रक्षा की दिशा में भी कार्य करना है, संसद की गरिमा और मतदाताओं द्वारा दिए गए मैंडेट बनाए रखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने अंत में इस आयोग के कायम करने की सरकारी फिलोसोफी का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को कभी भी 2014-2024 जैसी स्थिति में जाने नहीं देना चाहिए। ये विधेयक एक शुरुआत होगी इस दिशा में।
1: बिगिनिंग ऑफ द गारंटी दैट इट विल नेवर बी अगेन द सेम। विद दीज वर्ड्स मैडम स्पीकर, आई कमेंड द बिल टू द हाउस।
2: और कल रात राष्ट्रसभा में इस बिल पर बहसें जारी रखी गईं। विपक्ष नेता जुले जोंग और कई सरकारी सांसदों ने इस विधेयक पर अपना अपना नज़रिया पेश किया। इसका मकसद एक ऐसे आयोग का गठन करना है जो संवैधानिक सुधारों को प्रस्तावित करे, खासतौर पर बुनियादी हक की हिफाजत और लोकतांत्रिक इदारों की मजबूती शामिल है। अनिशा मदया, रजनी बेकर।
3: जुले जोंग ने इस विधेयक में मौजूद कई असंगतियों पर जोर दिया।
4: Cette réforme est-elle dictée par des principes ou par un calendrier politique? With regard to the consultation process, Madam Speaker, Section 7.1 outlines a four-stage process, which is good, but it lacks safeguards. No timeline, no requirement to publish submissions, no obligation to explain how public input shape recommendations.
3: श्रम मंत्री रेजा उद्दीन ने आलोचनाओं का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि इस विधेयक को कई चरणों के अंतर्गत अमल में लाया जाएगा।
5: This document will be made public. Everybody will have a chance to see what have been the recommendation of the committee. And then we'll move to cabinet. Cabinet will examine it and then we will come to this house with an act of parliament to implement the recommendation of that committee.
3: Rodrigues ke sansad Francisco François ne ummeed zahir ki ki is vidhyak mein Rodrigues par bhi puri tarah se dhyan diya jaye. Saath hi unhone sarkar ke samne char prastav pesh kiye.
6: Amendment clause 3 to guarantee an independent gender balance geographically representative commission with a commissioner from Rodrigues. Second, added new clause 7.8 to set and let's say an 18-month deadline requiring tabling of a final report and mandate a full parliamentary debate. Third, added new clause 4.1t small t to constitutionally reinforce the entrenchment of Rodrigues' autonomy, not as a consequential amendment but as a first order constitutional commitment. Fourth, and a new clause 4.1u to establish a constitutional

0: right to digital access and e-democracy framework.
1: बहुमत के सांसद रोशन झमन का मानना है कि संविधान पर गौर करने का समय आ गया था.
2: If we are to modernize this mama de constitution, we must do it through the structured, expert-led and serious process outlined in this very bill.
1: जबकि श्वाना पेरांजे ने इस विधेयक की निंदा की.
3: Il faut parler de la réforme du système électoral qui ne figure pas dans ce texte. La dose de proportionnel, la représentation des femmes au Parlement, l'équilibre de nos circonscriptions, rien de tout cela n'est confié à la Commission. La fin de la déclaration communautaire obligatoire, elle non plus, n'y figure pas.
1: इसके अलावा रविराज बिचुक ने एक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के महत्व पर भी बात की, जिसकी बदौलत अतिरिक्त पारदर्शिता होगी.
4: La constitution qui inscrira la freedom of information va renforcer l'action, l'accès à l'information publique, mais par là même va encourager la transparence des dirigeants, la responsabilité et va instaurer une culture d'accountability.
1: Stéphanie Auchel ne is vidhyak ki ahmiyat par baat ki.
5: Le Constitutional Review Commission Bill n'est pas simplement un texte de plus dans l'agenda parlementaire. C'est une invitation à ouvrir les fenêtres de notre maison commune, à faire entrer l'air du temps et à dire avec courage notre République mérite d'être regardée, réparée, modernisée, renforcée.
6: समाज सुरक्षा दफ्तर रोजिल में सेवाओं को डिजिटलाइज किया गया. लाभार्थियों की दस्तावेजों को डिजिटलाइज बनाने का सुधार अपनाया गया ताकि उनको दी जा रही सेवाओं को और तेज तथा आधुनिक बनाया जा सके. लॉन्चिंग के दौरान समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुभो दुनिया और जूनियर मंत्री कुगान पगापेन भी मौजूद थे. कागजी फाइलों के ढेर से डिजिटल व्यवस्था की ओर. रोजिल कार्यालय में सामाजिक सुरक्षा विभाग ने लाभार्थियों की फाइलों के डिजिटलाइजेशन की शुरुआत के साथ एक ऐसी सुधार प्रक्रिया शुरू की है जिसे अधिकारी ऐतिहासिक बता रहे हैं. समाज सुरक्षा मंत्रालय को डिजिटलाइज करने की परियोजना 2013 में ही शुरू हो चुकी थी, पर कुछ हुआ नहीं था. इसलिए अब 10.5 मिलियन फाइल्स को स्कैन किया जा रहा है. इस पहल को एक ऐसे तंत्र के समाधान के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है जो बड़ी संख्या में आवेदनों और भरे हुए आर्काइव्स की चुनौती का सामना कर रहा है. समाज सुरक्षा मंत्रालय एक बड़ा मंत्रालय है जहाँ इन फाइलों में लोगों का जीवन है. इस सरकार की बड़ी परियोजनाओं में ये एक है और इसे सफल बनाने के लिए काफी साधन उपलब्ध कराए गए हैं. आज सामाजिक सुरक्षा सेवाओं पर 3 लाख से अधिक लाभार्थी निर्भर हैं, जिनके लिए हर महीने लगभग 8 लाख रुपए चुकाए जाते हैं. हम एक ऐसी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं जहां लाभार्थी के प्रमाण पत्र के माध्यम से ही उसके फाइल तक पहुंच पाएंगे. ई सोशल सिक्योरिटी परियोजना के तहत चलाया जा रहा ये अभियान बेसिक ओल्ड एज पेंशन लाभार्थियों की फाइलों से शुरू हुआ है. कुल मिलाकर लगभग 1.5 करोड़ फाइलों को करीब 18 महीनों में डिजिटलाइज किया जाना है. इस पहले चरण के लिए 16 अधिकारियों को तैनात किया गया है. हालांकि आवश्यकता बढ़कर लगभग 100 कर्मचारियों तक पहुंच सकती है. वहीं कागजी फाइलों को 10 वर्षों तक सुरक्षित रखा जाएगा, जिसके बाद उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा.
7: सर्दी जुकाम से बचने के लिए टीकाकरण अभियान देश के सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में शुरू हो गया. अब तक 65,000 से ज़्यादा लोगों ने ये टीका लगवा लिया है. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सर्दी की शुरुआत की वजह से अभी से ही टीका लगवाना चाहिए, जिसका असर 2 हफ्ते बाद होता है. सिंचा मुटू अशिता रघु.
8: मॉरिशस में हर सप्ताह 4,000 से अधिक श्वसन संक्रमण के मामले दर्ज किए जा रहे हैं और सर्दियों के आगमन के साथ ये संख्या बढ़ने की आशंका है. फ्लू के खिलाफ टीकाकरण विशेष रूप से जटिलताओं के जोखिम वाले लोगों के लिए सुरक्षा का एक प्रभावी उपाय बना हुआ है. फ्लू के कारण कभी कभी जटिलताएं उत्पन्न होती हैं, विशेषकर 5 वर्ष के आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाएं, वृद्ध जनों, विकलांग तथा जिन लोगों को पहले से ही अन्य गंभीर बीमारियां हैं जैसे दिल की बीमारी, श्वसन
6: अस्थमा, कैंसर, मधुमेह इत्यादि। अतः इन लोगों को साइनस, ब्रोंकाइटिस तथा सबसे गंभीर निमोनिया भी हो सकता है। हर वर्ष प्रचलित वायरस स्ट्रेन के अनुसार

एक नया वैक्सीन उपलब्ध कराया जाता है। यदि अभी तक टीका नहीं लगाया है तो लगवा लेना चाहिए, जिससे फ्लू संबंधी 3 सक्रिय वायरसों से सुरक्षा प्राप्त होगी, जिनमें H1N1,

0: मैं टीका उपलब्ध होता है हर साल अप्रैल या मई महीने में मैं टीका लगवाने आती हूँ। मैं अस्पताल हाइपरटेंशन के अपॉइंटमेंट पर आया था तभी मैंने ये टीका लगवाया। पहली बार के लिए ये टीका लगवाया है क्योंकि बहुत लोग सर्दी जुकाम से प्रभावित हो रहे हैं। मैं अस्थमा का मरीज हूँ इसीलिए हर साल टीका लगवाने आता हूँ जिससे मैं सुरक्षित रहूँ। पहले खरीद कर टीका लगवाते थे, अभी सरकार की ओर से मिल रही है। अब तक स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों और सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के माध्यम से 65,000 से अधिक लोगों को ये वैक्सीन दी जा चुकी है।
1: काफी वक्त से मेनोपॉज करीब 50 साल या 50 साल के बाद की उम्र वाली महिलाओं को प्रभावित करता है, लेकिन जिंदगी के नए तरीकों से जैसे दबाव, खान पान, हार्मोनल चेंज वगैरह से मेनोपॉज की अवधि में बदलाव आया। बहुतों के लिए ये एक टाबू है जो अक्सर बुढ़ापे से जोड़ा जाता है। इसका असर जिस्मानी के साथ साथ एहसासों और पेशेवराना जिंदगी पर भी पड़ता है। सुयाकत अस्पताल में हालिया चंद मरीजों का कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किया गया, उनकी हालत गंभीर थी। स्विस मेडिकल सर्विसेज से विदेशी डॉक्टर प्रोफेसर शॉल यू ने सर्जरी की, साथ में उन्होंने आम जनता की भलाई के लिए कौमी डॉक्टरों के साथ अपनी महारत बांटी। लोकतांत्रिक कोंगो गणराज्य के इतुरी राज्य में इबोला से प्रभावित इलाकों में नई मुसीबत आई है। वायरस के फैलाव पर काबू पाना अब एक जंग को रोकने के बराबर है। अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोंगो में इबोला के चलते अधिकारियों ने एक प्रिपेयरनेस प्लान को विकसित किया। बंदरगाह और हवाई अड्डे पर कदम उठाए जाएंगे। कल राष्ट्रसभा में स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने इसका ऐलान किया। सुयाक अस्पताल को जरूरत पड़ने पर आइसोलेशन केंद्र बनाया जाएगा।

0: वाशिंगटन में एक कागज के कारखाने में रासायनिक विस्फोट की वजह से कम एक व्यक्ति की मौत हुई. 9 लोग अभी भी गुमशुदा है. दूसरे लोगों के घायल होने की खबर है. पश्चिम यूरोप में गर्मी की तेज लहर है. ग्रेट ब्रिटेन में मई महीने में सबसे गर्म दिन दर्ज हुआ. तापमान करीब 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. इन दिनों में यूके में तापमान 17 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है. फ्रांस और जर्मनी में भी पारा बहुत ऊंचा है. आने वाले दिनों में स्पेन के लिए 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी का अनुमान है. कल इसराइल ने लिबनान के दक्षिण पूर्व में हवाई हमले किए. दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है. 31 लाशों की पहचान की जा चुकी है जिनमें कई बच्चे शामिल हैं. इसराइली फौज का कहना है कि उसने हिजबुल्ला के 100 से ज्यादा मूल ढांचों पर हमला किया. आज सऊदी अरब में सभी हाजी आखिरी रिवाज मुकम्मल कर रहे हैं और आज खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहिम की सुन्नतों पर अमल किया गया जिन्होंने रब का फरमान बग़ैर किसी सवाल से कबूल किया था. आज हमारे मोशन हाजियों ने भी शैतान का अक्कास करने वाले 3 सुतूनों की तरफ यानी जमारात पर कंकर फेंकने की सुन्नत पूरा किया और ईद उल अधा आज मना रहे हैं.
1: आज सऊदी अरब में हाजियों को पूरा दिन हज के बाकी मरहलों से गुजरना पड़ रहा है. सभी हाजी आखिरी रिवाज मुकम्मल कर रहे हैं. पूरी रात मुज़दलिफा में खुले आसमान तले शब बिताने और कंकड़ जमा करने के बाद आज सुबह सवेरे तमाम हजाज जमारात की तरफ कंकड़ फेंक कर सुन्नत पर अमल करते हैं. आज हमारे मर्शन हाजी भी शैतान का आकाश करने वाले 3 सुतूनों की तरफ कंकर फेंकने की सुन्नत पूरा कर रहे हैं और ईद उल अधा मना रहे हैं. 13वीं जिलहिजा तक हाजी जमारात पर कंकर फेंकने की सुन्नतें निभाएंगे तब हज बाकायदगी से पूरी होती हैं.
0: आम हालत हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है. अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान आज रात और कल सुबह बादल घिराएंगे और पूर्व तथा सेंट्रल प्लाटो में कुछ बारिश होगी. दूसरे इलाकों में कोहरा छाया रहेगा. कल दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा. हवा पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं. लगूनों के उस पार समुद्र चंचल रहेगा. 2 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी दक्षिण वाले लगूनों में. तापमान सेंट्रल प्लाटो में न्यूनतम तापमान 17 से 19 अधिकतम 23 से 25. साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 24 अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच

0: तो ये थी अब तक की खबरें आप तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारे तकनीकी साथी शिव नागिया की मदद मिली है. आपके ध्यान के लिए बहुत शुक्रिया. नमस्कार और आदाब. शोक समाचार सुनिए.
1: NBC Radio.TV.
0: नंबर 12, नंबर 12, सेराफिन लेसालिन पोर्टलुई में 83 साल की 83 years old, श्रीमती लक्ष्मी देवी वीरापेन, श्रीमती लक्ष्मी देवी वीरापेन जो अक्का देवी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी कल सपहर तीन बजे इनके घर नंबर 12, नंबर 12, सेराफिन लेसालिन पोर्टलुई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लेसालिन की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 3 PM. शिवाला रोड रेनियों मोगैल पिटी राफ्रे में 70 साल के 70 years old, श्री धनेश्वर राम कलावन जो देवानंद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी कल एक बजे इनके घर शिवाला रोड रेनियों मोगैल पिटी राफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM. नॉर्दर्न बाउंड्री कैथरबोन में 40 साल के 40 years old, श्री प्रीत गुरुदयाल जो आकाश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी कल दिन के 10 बजे इनकी माँ माउती गुरुदयाल के घर नॉर्दर्न बाउंड्री कैथरबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेटों को दुगौत की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM. आलिजाग मोबू में 60 साल के 60 years old, श्री सादेव जीतन जो कॉल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं. अर्थे कल 10 बजे इनके भाई शोसील जीतन के घर आलिजाग बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोता सैपिया बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM. मीदीन लेन सैंपल फिनिक्स में 57 साल के 57 years old, श्री मनोज कुमार मेहदीदीन जो कोको के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं. अर्थे कल 10 बजे इनके भाई रितीश मेहदीदीन के घर मेहदीदीन लेन सैंपल फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आलिब्रियों कास्टेल की शमशान भूमि ली जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM. बोरिक लेन मोसेलमों सैंत आंद्रे में 82 साल की 82 years old, श्रीमती शांति ब्रजमोहन पैदाइशी नाम सालिक जो साधु मेन्यूजी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई हैं. आर्थिक कल एक बजे इनके बेटे अमरदास ब्रजमोहन के घर एसू बोरिक लेन मोसेलमों सैंत आंद्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआ मौशों तेरूज की शमशान भूमि ली जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM. ई टू जीना स्ट्रीट ला फेम बॉम्बू में 64 साल की 64 years old, श्रीमती शांताबाई बिहारी पैदाइशी नाम लक्सीमो जो मीला के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं. अर्थे कल एक बजे इनके घर जीना स्ट्रीट ला फेम बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोता सैपिया बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM. रॉयल रोड नोवेल फ्रांस में 83 साल के 83 years old, श्री राधाशुर फुलमोन जो प्रेम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी कल डेढ़ बजे इनके बेटे रमेश फुलमोन के घर रॉयल रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारी जानी रोजबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM. पेटिट रिविया में 64 साल की 64 years old, श्रीमती उमावती तलू पैदाइशी नाम बुदन जो मीता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी और कारो लालियान वाकवा की रहने वाली थी की मृत्यु हो गई हैं. अर्थे कल सुबह साढ़े नौ बजे मुरा फ्यूनरल पिचित्रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बैलेंस

0: फेरीनो नंबर 5 की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टमोरा टॉफ बस 9 AM। आर्या मंदिर रोड पिचराफरी में 77 साल की 77 years old श्रीमती कुसमोती रामेसो, श्रीमती कुसमोती रामेसो जो कुम कुमुआ के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 10 बजे इनके घर आर्या मंदिर रोड पिचराफरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोमास्कल पिचराफरी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। बाउंड्री रोड सेंट पैट्रिक कैथरबोन में 66 साल के 66 years old के श्री सीउलाल सीबालक जो सीलाल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल सुबह साढ़े नौ बजे इनके बेटे ऋषि सीबालक के घर बाउंड्री रोड सेंट पैट्रिक कैथरबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 9 AM। फ्रांस में 75 साल के 75 years old श्री महेश दुकारन जो मोसेलमों कुंजू प्लैन दी पापाई के रहने वाले थे की मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी कल डेढ़ बजे पेरिस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वही के शमशान भूमि दी जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1:30 PM। शोक में दुबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: अपने घर में मिला लीजिए। इस वक्त शाम के ठीक 6:32 हो गए हैं।
5: RM3 Radio.

गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, देवी और सज्जनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं नई सोच कार्यक्रम में। कैसे हैं जी आप सब लोग? हम तो यहाँ पर फिट एंड फाइन हैं, बस आप लोगों के होने का एहसास अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलिए एक न्यू आइडिया हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए।

रात बाकी है और बात भी बाकी है मेरे दोस्त। इस वक्त शाम के 6:38 हो गए हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी दोस्तों, आज की जो नई सोच है काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम आपको आपसे पूछना चाहेंगे, अगर आप किसी इम्तिहान में किसी कोशिश में आप हार गए हैं तो इसका मतलब है जिंदगी रुक गई है। इट्स ओके यार, ये जिंदगी रुकने वाली बात नहीं है। इट्स ओके, होता है। अगर एक इंसान एक काम के लिए 2 मिनट लगता है और मुझे 5 मिनट लगता है, देन इट्स ओके। अगर मैं मोटा हूं तुम पतले हो तो इट्स ओके। अगर मैं लेफ्टी हूं वो राइट हैंड में लिखता है, सो इट्स ओके। छोटी छोटी बात को लेकर के हमें इतनी ज्यादा माथा पच्ची नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग माथा पच्ची करना शुरू करेंगे ना, तभी हम लोग स्ट्रेस को इनवाइट करेंगे अपनी जिंदगी में, जो कि गलत है। ऐसे मत करना। आप अपनी जिंदगी को एक मुस्कुराहट के साथ बिताइए। इसी को हम कहते हैं जिंदगानी।

यस दोस्तों, इस वक्त शाम के 6:46 हो गए हैं, आपकी बारी आ गई है, इसलिए हम भी यहाँ पर पहुंच गए हैं आप लोगों के फुल एंटरटेनमेंट के साथ रेडियो मनोरंजन की लहरों पर अभी के साथ। दोस्तों, एक नया आइडिया हमेशा हम लेकर के आ जाते हैं ताकि आप लोगों की जिंदगी में एक स्पाइस आ जाए, एक नई उमंग आ जाए, और इस उमंग के साथ आपको भी एक नई ऊर्जा मिलेगी काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, समस्याओं का डटकर सामना करने के लिए। और इसके लिए हम हर हफ्ते एक ही बार आते हैं, लेकिन जब आते हैं एकदम जबरदस्त बातें लेकर के आते हैं। इसके लिए हम आपको कहना चाहेंगे थैंक यू सो मच। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो नई सोच है वो ये है कि आप अपनी जिंदगी की किताब में एक नया चैप्टर लिखने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप कौन सी कोशिश में लगे हुए हैं, आपकी नई कोशिश क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है, आपका विजन क्या है, आपकी आइडिया क्या है, आपके एग्जीक्यूशन क्या है, इसके बारे में आपने सोचा है या अब सोच रही है या फिर सोच लिया है। और अगर सोच लिया है तो इसके लिए आपने शुरुआत कहाँ से की है, इसके बारे में सोच विचार करना बहुत जरूरी है।

इस जुनून को बरकरार रखने के लिए हम भी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा इसी गीत के साथ, जो अगला गीत है, इसी गीत के साथ हम बढ़ेंगे दिलों की आवाज कार्यक्रम, और रात के 9 बजे तक हम आपका साथ यहाँ पर देते जाएंगे। और इसके लिए आप हमें मैसेजेस भेज सकते हैं 1525062000, या फिर आप हमें फोन कर सकते हैं 1-402-4-0-2-8-0-7-0 पर। आज की जो नई सोच है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह से अपनी लाइफ को मेंटेन करते हैं, अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं, अपनी लाइफ को अपने खुद अपने मतलब मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तब जाकर के लगेगा कि हाँ आप में वो बात है। लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप कुछ ना कुछ कीजिए, कुछ ना कुछ प्रयास कीजिए, कुछ ना कुछ ढूंढिए, खोजिए, रिसर्च कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए, आप क्वेश्चन पूछिए, डू क्वेश्चनिंग, तब लगेगा कि हाँ आपकी जिंदगी में एक लक्ष्य है, आपकी जिंदगी और ज्यादा मतलब सामने आएंगे।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त रात के ठीक 7 बजे हैं।

गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन वेलकम बैक फॉर यू दिलों की आवाज कार्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, हम आपका साथ देंगे यहाँ पर रात के 9 बजे तक। कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे, हम यहाँ पर चलाएंगे जी।

0: अभी अभी तुम गाना गा रहे थे।
1: जी
0: गाना गा रहे थे।
1: जी जी, मगर ऐसी गलती कभी नहीं होगी।
0: ऐसी गलती रोज होगी।
1: जी
0: जी, ऐसी गलती रोज होगी। आज से तुम क्लाउन, एक जोकर, जो गाएगा और हंसाएगा।
1: मैं जोकर?
0: हाँ।
1: आपके यहाँ? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब।
0: देखो, मेरा नाम साहब नहीं, मेरा नाम महेंद्र है।
1: जी महेंद्र साहब।
0: तो साहब
1: नहीं, साहब
0: महेंद्र।
1: महेंद्र साहब,
0: यू आर ए क्लाउन, सिंगिंग क्लाउन।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सुंद्रा भैया,
1: महेंद्र साहब जोकर।
2: सुंद्रा भैया,
1: नमस्ते। आपके लिए। दादा, दादा।
2: हाँ
1: हाँ, दादा दादा।
2: पर्ची बस। स्वीडन
1: स्वीडन।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: में करता नहीं बार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार?

हाँ बाबू, ये सर्कस है और ये सर्कस है शो 3 घंटे का।

0: आपसे एक सवाल पूछना चाहता
1: हूं। पूछिए। आप मीना से मोहब्बत करते हैं? जी। क्या मैं मीना से मोहब्बत करता हूं? सवाल ये नहीं कुमार साहब, सवाल है क्या मैं मोहब्बत करता हूं? जवाब है हाँ, मैं मोहब्बत करता हूं इस दुनिया से, बच्चों से, बूढ़ों से, औरतों से, मर्दों से, फूलों से, पत्थरों से।
0: मिस्टर राजेश, आपके इन फूल पत्थरों में कुमीना नाम की लड़की भी
1: है?
0: तो फिर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मीना एक हीरा है जिसे तराशा नहीं गया, एक राग है जिसे गीत बनने का मौका नहीं मिला। मीना एक निहायत अच्छी कलाकार बन सकती है, बहुत बड़ी फिल्म स्टार बन सकती है। मिस्टर राजू,
1: आपका मतलब है आप उसे बड़ी फिल्म स्टार बना सकते हैं?
0: जी हाँ, मगर वो आपकी बेइंतहा इज्जत करती। अगर आप यहां रहे तो मीना को उभरने का, निखरने का, संवरने का मौका नहीं मिलेगा। वो आपके साए में हमेशा दबी रहेगी, बुझी रहेगी, चिंगारी की तरह सुलगती रहेगी, मगर शोला कभी नहीं बन सकती। अगर मौका मिला मिस्टर राजू, तो एक दिन निहायत अच्छी कलाकार बनकर दुनिया के सामने आएगी, मगर उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको
1: एक छोटी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुमार साहब, आप एक मशहूर फिल्म स्टार हैं, लेकिन एक जोकर की हस्ती को नहीं समझ सकते। इस दो टांग के आवारा बादल को कोई बेड़िया नहीं डाल सकता, ना सोने चांदी की, ना प्यार मोहब्बत की। मीना को आप एक नई जिंदगी दे रहे हैं, इतना ख्याल रखिएगा, किसी को नई जिंदगी देना बड़े जिम्मेदारी का काम है।
0: आप बिल्कुल ठीक कहते हैं मिस्टर राजू। आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं मीना को पहली बार दुनिया के सामने पेश करूंगा, आप भी उसके साथ आएंगे ना?
1: मैं आऊंगा या मैं जाऊंगा, मगर मीना आपके पास वक्त पर पहुंच।

0: इतनी जल्दी भूल गई इस स्वर को, मीनू मास्टर को, मीनू मास्टर के इस घर को जिसका किराया कुछ नहीं, जहां हम बड़े मजे ले लेकर कुछ नहीं खाया करते, है ना?
1: छी, कितने जाले लग रहे, बिल्कुल भूतिया महल लगता है।
0: हाँ मीना, इन मकड़ी के जालों में पुरानी यादों के भूत रहते हैं।
1: आज कैसी बातें कर रहे हो?
0: बात यह है मीना, आज से तुम्हारा नया सफर शुरू होता है। जिस दुनिया में तुम जा रही हो, मैं चाहता हूं इस झोपड़े की तस्वीर अपने दिल में साथ लेती जाओ, काम आएगी। कभी कभी पुरानी

0: दिनों की याद सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है।
1: तो क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? तुम्हारी मदद के बिना मैं क्या कर सकूंगी?
0: नहीं मीना, अब तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं होगी। अब तो मैं तुम्हें दूर से सिनेमा के पर्दे पे चमकता हुआ देखूंगा और जोर से ताली मारूंगा।
1: और तुम खुद
0: मीनू मास्टर, मेरी फिक्र मत करो मीनू मास्टर, मेरे लिए दुनिया के और सब दरवाजे खुले हैं।

0: देखा मीनू मास्टर, ये साड़ी फिर दीवार बन गई है। अब तुम जाओ जल्दी, वरना प्रेस कॉन्फ्रेंस में देर हो जाएगी। वहां सब जर्नलिस्ट और फोटोग्राफर तुमसे मिलने के लिए बेकरार होंगे। और हाँ, अपनी फिल्म के प्रीमियर का इनविटेशन भेजना ना भूलना। जाओ।
1: तुम नहीं चलोगे?
0: नहीं मीना, और एक बात याद रखना, सीधी चली जाना, पीछे मुड़ के मत देखना, ना आज ना कल।

लेडीज एंड जेंटलमैन, सर्कस की तारीख में आज की रात एक यादगार रात होगी, क्योंकि बरसों के बाद आज फिर आपके सामने आ रहा है आपका प्यारा हंसता गाता जोकर राजू। मैं नहीं जानता पिछले 20 वर्षों में वो कहां था, उसने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, ये तो बेचारा राजू जानता है या उसका दिल जानता है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं वो जहां भी था, जिस हाल में भी था, सुखी था, दुखी था, खुशहाल था, मुफलिस था, बीमार था, वो लोगों में खुशी बांट रहा था। और ये वो दौलत है जो जितनी लुटाई जाए उतनी ही बढ़ती है।

जी हाँ बिल्कुल, दैट वाज जीना या हाँ मरना या हाँ। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये जो गीत है स्पेशली हम डेडिकेट करना चाहेंगे एवेंट से हमें याद कर रही हैं विक्रांत, उनके सभी दोस्तों के नाम। इस वक्त वे लोग नाइट शिफ्ट पे काम कर रही हैं। मुझे पता है कि ऐसे टाइम पर नाइट शिफ्ट पे काम करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए ना, आपको एनर्जी डेफिनेटली मिलेगी। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। नमस्ते, अभी कैसे हैं? हम तो एकदम फाइन हैं। दिल छू लिया, क्या बात है, थैंक यू सो मच। दिस इज अनीता फ्रॉम फिकॉन फ्लाका। ये गाना मेरे नाम कीजिए प्लीज़।

बाप रे, मूड एकदम रोमांटिकली सेट हो गया है जी। ऐसे गाने सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इस आभादाभी जिंदगी में एक ठहराव सा महसूस होने लग गया है। बहुत सारे लोग इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं, सो ड्राइव सेफली। हल्की सी बारिश, बारिश की बूंदों के साथ आप लोग भी हमारे साथ जुड़ जाइए जी। अब हम बात कर रहे हैं गेरुआ, यानी कि अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाजों में। ये गाना खासकर हम डेडिकेट करना चाहेंगे उषा के नाम, जो ब्रह्मस्थान के रहने वाली हैं। उन्होंने कहा कि मैं मोटी नहीं हूं अभी, मैं खाते पीते इंसान वाले फैमिली से हूं। क्या बात है जी, खाते पीते खानदान से हूं। अच्छी बात है जी उषा, ये गाना खासकर आपके नाम।

जी हाँ दोस्तों, ये जो रंग है गेरुआ है, लेकिन आप लोगों का जो रंग है हमारे रंग में रंग गए है, यही बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्त।

चलिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं कौन, वी डू हैव जलीला जियाद और रेहाना जो फिनिक्स के हैं, वे बकरीद के लिए तैयारी कर रही हैं और हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। अभी से ही हम आपको बहुत बहुत सारे बेस्ट विशेष देना चाहेंगे। अनु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये कहा कि कविता जो मोचिदा के रहने वाली हैं उनके लिए अगला गीत हो जाए और सभी सुनने वालों के नाम। थैंक यू सो मच। ये गाना खासकर हम महेंद्र के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे जो पालमा के रहने वाली हैं। अगर चाहत नहीं होती हमारी जिंदगी में तो कुछ भी नहीं होता, मैं भी नहीं होता, आप भी नहीं होते और ये दुनिया भी कायम नहीं होता। इसीलिए जिंदगी में चाहत का होना बहुत जरूरी है।

इस वक्त रात के ठीक 8 बजे हैं। वेलकम बैक फॉर योर दिलों की आवाज कार्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, 402-80-70 पर आप हमें फोन कर सकते हैं। कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे ये हम चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। यू मे सेंड अस मैसेजेस हैपनिंग ऑन 5250-6200। ये गाना खासकर हम यजूर के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे। उनके दो दोस्त हैं रिजो और दबागी।

वक्त रात की 8:35 हो गए हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्योति हमारे साथ जुड़ गई है फ्रॉम शातुबिनागस। उन्होंने कहा कि अगला गीत आशनी के लिए हो जाए। साथ ही साथ हैं रेखा, सुरेखा और जितने सारे जो मैंडब फैमिली हैं उनके लिए वो अगला गीत की फरमाइश कर रही है। एक बहुत ही सुंदर गीत है टीना फ्रॉम द मूवी नमस्ते लंदन। और दिल से हम आप सब लोगों को कहना चाहेंगे नमस्ते नमस्ते जी। इतने सारे फोन कॉल्स, बाप रे, चलिए हम लेंगे अभी। सो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कौन? वी डू हैव मुकेश मोहन। उन्होंने कहा हैप्पी मदर्स डे टू ऑल आवर ब्यूटीफुल मदर्स। वो इस वक्त वाकवा से हमें सुन रही हैं। थैंक यू सो मच। ये गाना हम आपके नाम डेडिकेट करना चाहेंगे।

दोस्तों ये गाना खासकर हम डेडिकेट करना चाहेंगे जनाब इब्राहिम के नाम. वी डू हैव नंदा फ्रॉम पाई और साथ ही साथ हैं बाबू अनातवा जो हमेशा हमारे साथ जुड़ जाते हैं. थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत अच्छा लगा. हम लोग मिलेंगे डेफिनेटली नेक्स्ट वीक. तब तक अभी की ओर से नमस्कार और आदाब.

0: भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमपीसी रेडियो पर। कमट धमाल और ये मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमपीसी रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमच जलसा हंगामा।
2: सब संगतियों के आज प्रताप सिंह सितालू की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह तो अरमन पसंद रेडियो चैनल एमबीसी रेडियो मॉरिशस और एमबीसी रेडियो मनोरंजन। जी हाँ, दोनों चैनल पर हमने की प्रोग्राम चला था भोजपुरी तड़का और हमने की प्रोग्राम चला था टिकटॉक पेज पर भी रेडियो मॉरिशस के। तो जितना कोई हमने की रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर हमने देखा था और जितना कोई रेडियो पर हमने की सुना था, सब कोई के तहे दिल से स्वागत करते जा। आज की रात गमत की रात, जलसा की रात, नाचब सा गावब सा झुमब सा कमरवा ढुलावब सा अभी से लेके रात के 11 बजे ले। और आज है बुधवार की रात, बुधवार 27 मई साल 2026। है मई महीना के, है मई महीना मुझे था काफ़ी लंबा बा है। अभी दिमाग की फिनी हुई फेत मामा के संगे हो कि नहीं। तो सकबत जहाँ हमने की टेलीफोनी करे काजगो देव जगो विद सैंग पर और अपन पसंदीदा भोजपुरी गीत के मांग करे, लाइन खुलल बा। और याद रखिया ये प्रोग्राम है गीत मांगे के इधर उधर की बात ना करिया है, गीत मांगिए बी शॉर्ट एंड स्वीट ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगन के सब से मौका दे। अब थोड़ा मन करता है गीत मांगे के फ़ोन के जरिए तक आसंदे का या टिकटॉक पेज पर हम कह सकब ओहू पर गीत मांगे जैसे कि हमके देखा था वजह लाइव। तो टाइप करिए प्रताप जी हमके मन करता है गीत सुने के तेल करती तो गीतवा डाल दे वापस। हेलो नीतीश बोला कि नमस्ते, हाय टीना, हाय रिया, वीर बुधू जी हमने के देखा था, लैला और पहल का गाना है होरनिया हमर उरल जला नाच ना तेरे। स्मिता उपिया की तो आगे लगभग सब रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के लिसनर्स के नाम खास हम खास जितना कोई टिकटॉक पर हमने देखा था है गीत तलो के नाम होरनिया उरल जला। स्मिता उपिया की तो आगे लगभग और ये गीत नुसहिया एंजल ऐशा शनज संगीता महातारा और संजय बिहारी गीत और खातिर। फिर है गीत रेखा रामा खातिर भी जो हमने साथ दे वन। तो जितना सकब है फेसबुक है टिकटॉक पेज शेयर करे, सोशल मीडिया पर शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये प्रोग्राम सकी फॉलो करे। और ये थोड़ा याद दिलाते जा कि भोजपुरी तड़का प्रोग्राम चलेला लेंजी से लेके दिमाग की रात ले रात के 9 बजे से 11 बजे ले एमबीसी के रेडियो पर। रेखा रामा नमस्ते और तुहरा स्वागत बा। चले एक साथ सुने पहल का गीत होरनिया हमर उरल जाला।

होरनिया गिरल जला और ला जला गिरा बापरे बाप। और कल गुरुवार 28 मई के दुनिया भर में मॉरिशस में बहुत धूमधाम से हमने मनाव सा ईद उल अदा जिक अपनी बकरीद भी बोईला सा तो जितना भी संगत आलोक अभी रात के उनके सुनता तो ईद उल अदा बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला से प्रार्थना कर रहा सा कि हाई ईद के जो त्यौहार है सबके जीवन में ढेर मना प्यार और खुशहाल आई। तो ईद उल अदा के बकरीद भी बोला जाला और ई इस्लाम के वो बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। ई त्याग आज्ञाकारिता और इंसानियत की भावना के प्रतीक के रूप में मनावल जाला। और ई त्यौहार के संबंध प्रोफेट इब्राहिम और उकर बेटा इस्माइल के कहानी से जुड़ल बा। कहानी के अनुसार अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की परीक्षा ले खातिर ओके अपन सबसे बेटा के कुर्बानी बोलक करे के। हजरत इब्राहिम अल्लाह के आज्ञा मानने के लिए तैयार हो गए। जब वो कुर्बानी दे जाता है तभी अल्लाह जो ओकर निष्ठा देख के उकर बेटा की जगह एगो डुम्बा भेज दिलक। ई घटना के याद में मुसलमान ईद उल अजहा मनावेलन सा कुर्बानी करेलन सा। और ई संदेश देवेला कि इंसान को भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा त्याग और दया करनी चाहिए। तो है जो त्यौहार है सबके बहुत बहुत मुबारक। फजीर के सबको स्नान करके नया कपड़ा पहन के मस्जिद जाएन जा, ईदगाह में नमाज पढ़े लन सा, एक दूसरे के ईद मुबारक बोले लन जा और कुर्बानी होला और साथ में घर परिवार में सेवैया तैयार होला मिठाई।

तैयार होला गोश बिरयानी बनेला और सब कोई मिलके बैठ के जुन खालन सा परिवार सहित ईदी भी मिलेला जुरी जुरी कादो मिलेला और ईद की जुन त्योहार है इस सब के एक साथ आने रहता है जितना कोई काल मनयन जा ईद उल अधा के त्योहार त ईद मुबारक एमबीसी की पूरी टीम की ओर से हमारे ओर से हमारे परिवार की ओर से जितना कोई अभी रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन सुनता सब कोई के ईद उल अधा बहुत बहुत मुबारक चला ईद के त्योहार पर एगो प्यारा संगीत जुबेदा लुत्फ लेके जाए ईद के त्योहार बा हम आतान कर पा हम कदी सेवैया जरूर भेज दिया जा नाजिला हमने की देखा था हाय नाजिला ईद मुबारक और सलीमा बलता बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा जोली गीत खातिर

हाई वीकेंड के हमने मनाओ बस मातृ दिवस मदर्स डे फेट दे में तो माँ के कबो नहीं भूलैया है माँ जो ना इस संसार में सबसे महान है माँ देवता देवी में भी भगवान में भी सबसे ऊंचा है माँ लड़का जब कोनो दुख में रहेला दर्द होला तब बोलेला आयो माँ हाँ कि नहीं आयो पाओ बोला सा पर सबसे बोला सा आयो माँ काहे कि हमने के अंतरात्मा हमने के मन से हमने के हृदय से जो शब्द निकलेला सबसे पहले वो है माँ और एगो माँ जो है वो 9 महीना ले अपन लड़का के अपन पेट में अपन खून से सींचेला ओके भोजन देवेला फिर दुनिया में आने ला है और कितना कुछ एगो माँ जितना करी अपन लड़का खातिर लड़का नहीं सकी चुका है कबो भी नहीं देवकी भी माँ रहल यशोदा भी माँ रहल देवकी जन्म दिला कृष्णा भगवान के यशोदा माँ पालन करलन तो दोनों माँ है ना अब कैकेयी भी माँ है सुमित्रा भी माँ है कैकेयी चाहे कैसे भी रहल पर राम ओके बराबर प्यार करत है अपन माँ लिखा और अपन माँ के बच्चे निभाए खातिर और लड़का चल गए वनवास 14 वर्ष अभी कोनो लड़का बा जो माँ की बात सुनी 14 वर्ष खातिर सकी जाए वनवास चेला उंगली में गिने के कौन लड़का इतना आज्ञाकारी है हैं तो कहीं कहीं चाहे कैसे भी रहल वो राम के वनवास भेजलक पर राम भगवान कबो का निरादर नहीं करलक कबो को सिक्खिस में नहीं बतेलक वो कौतरे बोललक माँ तुम के जुन बोला हम जाप हम तोहरा आज्ञा के पालन करब तू खोजत हो हम जाप 14 वर्ष के लिए वनवास तो जरूर हम जाप वनवास और राम घर वनवास बाद में कैकेयी पछताला उदासी मंथरा के बाद में आके वो राम के भेज रख 14 वर्ष के लिए थी पर बाद में वो पछताला रोवेला पर जब राम आवेला तो राम के अपन गली से लगाए बोला माँ तो काहे रोवत हवे हम तो अपन आज्ञा के पालन तोहर आज्ञा के पालन कर ली नहीं रो माँ नहीं रो हम वापस चले दी तो देखा है माँ बेटा के जो प्यार है देख के ब्रह्मा विष्णु महेश भी आसमान से फूल बरसावेला तो ये बोली चाहते कि जो माँ के त्योहार केवल एक दिन नहीं चाहे रोज के मनाए के

अगर अपन माँ से प्यार कर रहा है तो अपन माँ की देखभाल करिए, अपन माँ खाती सब अच्छे बोलते थे फिर मामा के कौन कादू, माँ के कादू नहीं चहेला, सबसे बड़ा कादू तो तू हो अपन माँ बाप की, हाँ कि नहीं। माँ चाहेला कि थोड़ा सा समय ओकर खातिर निकालो, ओकर से बच्चा हुआ ओके लेके जाओ घूमे एगो रेस्तोरा एगो खाए के या कहूँ जेला दुखते लगे, तो माँ जो है वो आशीर्वाद देवेला। माँ जहाँ भी रहेला वो अपन लड़का के दिल से हमेशा आशीर्वाद देवेला, वो चाहे वो क्रिमिनल हुए चाहे कि नहीं हुई, पर ओकर माँ खातिर वो क्रिमिनल नहीं है, ओकर लड़का है, ओकर करीजा का टुकड़ा है। तो जितना कोई कि माँ बाप बा माँ बाप के आदर सत्कार करिए, जेकर माँ बाप नहीं बात होकर रोए के पड़ जाला, कहे कि है जो त्यौहार है ना ये पारिवारिक त्यौहार है, फैमिली फेस्टिवल जहाँ पर सबको एक साथ मिलकर बैठ के बच्चा आइला सा है, तो माँ बाप की कबो निगरी से नहीं करिए। तो जितना कोई हमने की सुना था सबको क्या बोला था मातृदेव, जितना महिला लोग सुना था नारी लोग सुना था देवी शक्ति हमने की सुना था दुनिया भर में मॉरिशस में दुनिया भर में, तो दादी हुआ नानी हुआ चाची हुआ बहू हुआ माँ हुआ बेटी हुआ सब महिला लोग बोलते हैं हैप्पी मदर्स डे MBC की पूरी टीम की ओर से। और एक गीत तो लोग के नाम माँ नीरज कुमार मधु की आवाज़ में।

ता सास ससुर के कादो देबा ता माँ बाप के भी चाह कादो दे के कोनो कोनो छोकरा लोग खाली सास ससुर के कादो देवेला अपन घर के माँ बाप के कादो नहीं देबा ऐसे दिल नहीं दुखाया हो माँ बाप दिसंबर ही माँ बाप के कादो

0: नहीं चेला माँ बाप लगे कादे बा पर वो चाहे कि लड़का लोग का साथ दे लड़का लोग निवन से रही माँ बाप के खुशी लड़का लोग के खुशी में बा हाँ कि नहीं और माँ बाप लड़का लोग के पढ़ावेला लिखावेला ताकि लड़का लोग अपन पैर पर खड़ा हो अपन जिम्मेदारी निभाए अभी लड़का पर निर्भर करेला कि जब तू बड़ा आदमी बन गईला तो कैसे तोरा अच्छा अपन माँ बाप की सेवा करे कि श्रवण कुमार के दिखा राम के दिखा राम भगवान रहल हैं फिर भी मनुष्य रूप में अपन माँ बाप की कितना सेवा करलक श्रवण कुमार मरते दम तक जहाँ लेकर प्राण गल पर माँ बाप की सेवा कर लगता कहे हमने इंसान अपन माँ बाप की सेवा नहीं करी रहा सर जानी रहा सर कबो कबो होला कि माँ को बात बोल दिला कि पिताजी को बात बोल दिला उम्र के साथ तो दिल की लग जला पर वो माँ है एगो बाप है ना हाँ हो जला का कर माफ कर दिया ओके अगला गीत है लाली लाली कान पलते मिराई में मकई को संगत लाइन पे कौन से मिल जा हेलो जी नमस्ते हेलो
1: हेलो
0: नमस्ते
1: नमस्ते जी
0: तो हाँ शुभ नाम तो हाँ शुभ नाम
1: हम विकास बोलते हैं
0: विकास कहाँ से बोला था वह
1: हम रोस्टर से बोला था
0: तो हाँ स्वागत बा भैया बोला अगला गीत क्या खातिर
1: अगला गीत सब लोग जुन सुनो था
0: हाँ
1: और जो भोजपुरी के बरवा देवा था
0: आ, कौन गीत सुन बा बोला
1: हम एक गीत मांग मंदानी की आवाज में और भोजपुरी गाना है दंगल मूवी की है और हो काशी है काशी हिलेला पटना हिले
0: भोजपुरी है
1: हाँ भोजपुरी
0: फिल्म के नाम है जंगल
1: दंगल
0: दंगल डी ए ओके एक मिनट टाइप करते हैं दंगल ओके okay, हाँ। भोजपुरी गीत गीतवा कैसे शुरू होला
1: काशी हिलेला पटना हिलेला
0: काशी हिलेला पटना
1: दंगल
0: दंगल अरे खोजब गीतवा अभी गीतवा के कर खातिर
1: काशी हिलेला पटना हिलेला हाँ,
0: हाँ, हिले। हाँ के कर खातिर मांगते हुआ
1: सब लोग जो सुना था
0: और तू भोजपुरी भाषा बड़ी जोरी से बचा ला आ हा हा कहाँ से सीख ले भोजपुरी बचा के
1: नानी के साथ रहनी दादी के साथ रहनी
0: हाँ।
1: तो कुछ नहीं पा बात बात करके तो प्रोग्राम सुननी
0: हाँ और जीवन में कौन सी करेला तू दोस्त कौन सी करेला
1: हम तो बातों में काम करेला अभी तो 2 महीना हो बा घर आई लई है और ही को छोटा सा काम करते हैं
0: अभी फिर से बातों में जब काम करे की मॉरिशस में रहबा
1: मन नहीं करता जाए के
0: ओके ओके बहुत जान के बहुत खुशी हो कि देखा विदेश में जाता रहता है भोजपुरी की भाषा के कबो नहीं भुलाई लिया हुआ ये बहुत गर्व की बात है बहुत खुश हुई कि ऐसे ने कुछ संगतियां मिला जो विदेश में जाके भी भोजपुरी अभी ली बतियाला
1: शुक्रिया भाई
0: हाँ तो अगला गीत तुम्हारे खातिर तुम्हारे सब परिवार खातिर ओके
1: शुक्रिया शुभरात्रि भाई
0: ओके शुभरात्रि बाय ये रलम की को संगति अर्जुन है बहुत प्यार से हमने की टेलीफोनिक कर लन अगला गीत नवीद खातिर शाह खातिर भी जो बहुत प्यार से हमने की सुनता और देखा था वन सा टिकटॉक पेज पर रेडियो मॉरिशस से था कैसे देखा जा रहा देख को नहीं जाने ला हमने की पुरानिया लोग तो जब तुम्हारा पोता बा थी सेंगजे के पोता अब तो कर में रहेला रेडियो मॉरिशस से को पेज बा तो कर में टिकटॉक बा तो टिकटॉक में जेबा था तू सकबा हमने की लाइव देखे भी हमने की प्रोग्राम चला था लाइव रेडियो मॉरिशस से जो मनोरंजन पर और इकर जो टिकटॉक पेज है यहाँ पर ही जितना कोई कमेंट्स भेजा था कमेंट्स पढ़ते इससे समय से मैं सब नहीं सकीला सा पढ़े कहे कि कमेंट्स ढेर आवा था पर जहाँ ले सकीला सा हमने तो कमेंट्स पढ़ ही रहा सा तो अगला गीत चली लाली लाली कान पलते मीरा में मकई तो गीतों में को संदेश बा कि चेहरा कोनो ना कोनो चीज पलौते के अभी देखा तो दुनिया भर में झगड़ा होता है दूसरा देश में तो चेहरा पलौते के कहे कि खिजारी मौते जब देख बार सब चीज महंगा हो ले जाएगा इन्फ्लेशन होला महंगा होला तो हमने के प्रॉब्लम है कहते चेहरा कोनो ना कोनो चीज पलौते के अगर तोहर द्वार में जगह बा या तोहर जौदे बा तो सब कोनो ना कोनो चीज पलौते जैसे कुतो मिली प्याज पीमा बनान ये सब सकब प्लांटे ये सब प्लांट में तो आगे कामे आए हैं कितना किन बा बोला था और रहेगी तो आज उन गैलक बा लुई फ्रीमैन लागा कर व्यक्ति के नाम वहाँ गैलक बा लाली लाली कान पलांटे मिराई में मकई और अभी देखो सर लाइन में की बा हेलो हेलो टेलीफोन करके नहीं बता रहा सर का हो हेलो हेलो थोड़ा सुनाता है बच्चा हुआ हेलो आई एम सॉरी, टेलीफोन करके नहीं बचा रहा सर।

दिस इज बड़ी बात है ऐसे तो लोग करवा सोता लड़का लोग का सिखाई बस जब टेलीफोन नहीं करवा तो बतिया बतियाइया जा प्रादा दीदी आनंदा हेलो जी नमस्ते अगला गीत और कहती लाली लाली कान पर मिराई में मकई जोर्डन हाय जोर्डन सेंट ओबन एस एस एस से यस जोर्डन आई अगला गीत और खातिर और ग्रेट टेन रेड के सेंट ओबन एस एस एस के सब स्टूडेंट्स लोग खातिर ओके जोर्डन दिस इज फॉर यू और जोर्डन जो है बहुत प्यार से उनके देखा था टिकटॉक पेज पर और सुना था सो चलो एक साथ सुने हैं गीत लाली लाली कान पलाते मेरे में मकई लाली लाली कान पलाते

रात के 9:42 होता है तू सुनत हो जा रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन और टिकटॉक पेज पर हन की फॉलो करे तो थैंक यू जी अगला जी तो जोड़ी छोकरी से प्यार करीला जिक्र खातिर हम रोज जीला आप गीतवा पर नाचब से गीतवा ढेर कोई की फेवरेट सॉन्ग और गीतवा खातिर हमने क्या ढेर माना जन हद जिका सहित रहेला और बेशक गीत चलाओ तो चलाओ जा सब कोई खातिर जितना कोई हमने की देखा था और सुना था जिश्ना खातिर उस्मान खातिर दोवंती कुंज फिर जोदान हमने के साथ देवतन सुमिता ननलाल जेशना लक्ष आमी ऑल राइट और विकास और जितना कोई हमने के लिखा था अभी टिकटॉक पेज पर जितना कोई रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन सुना था तय गीत लोग के नाम और जितना कोई जोड़ी जोड़ी छोकरी लोग के खुशियाँ देखे के लोग से बात करे के एस एम एस करे के गीत वो लोग खातिर भी सब करकतिया परिवार थ्रियोले से होवन जा साथ में हरकू परिवार महाराणा प्रताप रेन थ्रीली थ्रोबिश के होवन जाओ लोग खातिर साथ में ये गीत चलाओ एमिली करपानन के नाम जो हमके साथ देवतवन इंदिरा चिंताराम जी हवन गीत मंगले हवन होकर बेटा जाए बहु पूनम बीता चंदन बहु प्रिया और सब चिंताराम परिवार खाते चल एक साथ सुने गीत जोली छोकरी से प्यार करीला गीतों में चाहे नाचे के नाचब से गाओब से संगे संगे

0: बहुत ही बढ़िया गीत रहा जोड़ी छोकरी से प्यार करी रहा कुनाल हीलाल के गावल गीत जोड़ी गीत रहा हाँ कि नहीं जोड़ी छोकरी लोग खुशी हो गए सुन लग था जोड़ी छोकरी की गीत चाहते लोग नाचे लग लन था सका जब लाइन पकड़ से मिलब जा हेलो हेलो
1: दादा

0: समाचार। श्यामा जी शुभ नमस्कार, कैसे समाचार?
1: समाचार उतने बजट ना तेल बात ना आचार
0: बा। अभी तेल से जिससे आचार होगा हो कि नहीं
1: देखा हुआ कैसे हमारा मूसलाधार बारिश हो जाते।
0: बाप रे बाप, ऐसे पानी बरसते हो लगे
1: देखा था ना।
0: बाप रे बाप, कौन लाउ दो हा कहां पर है?
1: गांव गुप।
0: तो दिन के पानी नहीं बरसल हुआ?
1: नहीं आज नहीं बरसल बा, दो तीन दिन खूब पानी बरसल बा।
0: अभी रात के बरसता था, ठंडा था और ठंडा
1: बरसता है देखा।
0: और लास्ट
1: सब फुहार फातर हो जाए, फजर को उठबा ना। हां दो दिन के कैसे बल्ला कितनो पानी बरसी।
0: हाँ
1: कितनो घामा कर आदमी ने अनसाला। दो दिन पानी बरस, पानी बिना तो अकाल पड़ल।
0: हाँ तो देखा तो
1: पानी बिना कुछ नहीं होला।
0: बड़ी सिकुड़ सिकुड़ नहीं यार।
1: दो दिन पन्या अगर बरस गल तो आदमी अनसा जाला। का है
0: का आज नहीं की कैसे अनसा जालन से कोनो कोनो देश तन को पानी नहीं बरसेला।
1: भाई की तो हम मखे डाल दिया।
0: कौन सुनते हैं?
1: सुना नयन के दादा के पुसर पासल ललका चिड़ैया।
0: ललका चिड़ैया, ललका मुर्गा नहीं, ललका चिड़ैया।
1: हाँ ललका चिड़ैया।
0: हम
1: सब कहते गीत नहीं खुशी रहा सुनने के हम।
0: ओके ओके, सबके अपन अपन पसंद बा ना।
1: हाँ अपन अपन पसंद के बात है। मजा जाना कैसे है नाम नहीं पहले के आदमी ऐसा ना।
0: हाँ गेम जाना था। तू तो कितना बरिश लड़का लोग के पर कितना पीढ़ी लोग के पढ़ा दिलो माता जी। जितना लड़का लोग तो हर बात बोलते
1: हैं बड़का
0: बड़का डॉक्टर मजिस्ट्रेट हवे तो हम
1: देखे तो शरम लग जाके जब गोर लगे लंस तो
0: काहे गे
1: शरम लग जाए।
0: हमरे तरफ जेलिप कितना कोनो डॉक्टर बा अबोका बा इंजीनियर बा कबू जब लोग पिता पिता नर्स तो काके चुमा ले वाला गाल में कैसे मिशे ओबे रापेलमा मिशे।
1: हाँ तो डॉक्टर कैसा बन गल हमारे से कोई चीन है ला कोई नहीं चीन है ला कब कब हमने के याद दिलाया
0: कब कब हमने नहीं हमने अपन जेलिप के नहीं चीनी ला सा हाँ कि नहीं।
1: अब हमने लड़का में देख ले रही सर ना,
0: छोटा में देख ले रही सब
1: छोटा में देख रही सर। अब गए एक दिन जिस मौसम है गांव गुप के तो एक डॉक्टर है बताते हैं मैडम तब हमके देख रहे मैडम लोग तो कुछ कुछ बेगिस से तो हम के टाक के तो हम गए वो को तो रिश्ते तो हम के देखा था थे तो हम बोली ए तो पास में सो तो ऐसा नहीं को दूसरा नाम बोली बोलते वही लाखों समय पे दिमाग दे लोग तो कुछ कुछ बेगिस से
0: ऐसे क्या तो याद कर लग बा।
1: हाँ वो हमके याद कर लग हाँ एगो दूसरा डॉक्टर रामदानी हो एगो लेपुक में डिप्टी बन रहा थोड़ा दिन खाती रामदानी वो बेचारा ऐसे से डॉक्टर एस लोग कितना हो वन सजे बोले बिताले बहन जी की माया उबिये अब तू वो बे एक किसान ला तो हम अपन भाई से के बोला मैं तेल भेटा रहा बोला तब रिजा तू कहे बोले किसान ला तो बोले नहीं सके सुनने

0: कैसे
1: जन्मा माता जी ने जन्म ना
0: ऐसे
1: भगवान के आशीर्वाद है की ऐसा निमन काम से कर ली सभी लिए हम तभी करते है कॉलेज में
0: हम है ये बोला भगवान निमन काम कर ली तो आज हमारे रिट्रेट जाना कितना बरस हो गया 23 हो गए
1: भगवान के लिए सौ बलिस दे जी ले बा
0: सौ बलिस नहीं जी अब नहीं खुशी है जी के सौ अब ये तो दे चूर चूर कर बाद दरा
1: हाँ ये माता जी सौ बलिस होते सौ बलिस की गातो आकर्षित है गुबुद गातो इतनी खाई ना
0: नहीं तो हम लानी वैसे वो नहीं कर रहा बिया रो
1: एक वो यज हवन कर
0: 75 होल ना
1: हाँ
0: तो हमारे भाई लोग हमारे 9 गो भाई रहे तो भाई 4 गो गुजर गल
1: ओके
0: तो हमारे भाई बोले सबले बड़ा हमी रही ना तो हमारे भाई बोले तो किसो हम कैंसो हम तोरा नहीं मंगाते गो हवन करे के हम तो पहले अपने सपन हवन कर रही तो अब बोले मैं थोड़ा गांव के आदमी लोग कह रही थे करे के
1: एगो भोजन कर दे के
0: बड़ा हवन
1: हां धोवा दे के
0: जब सुसान कैंसो के हवन हो गल तब 80 होल तो हमारे भाई बोला अब इतना 80 होल बतला एगो हवन परी करे के तब एगो हवन कर ली
1: कर ले चाहो
0: तो अभी से कुआ अभी 80 दे होला अब जाते 80 कुआ में अब लाद डाल दी हां प्रताप जी
1: चलो
0: अब नहीं जाते कैसे मैं जिंदगी
1: अच्छा से हो हमें के आशीर्वाद हमें के प्यार तो और संगी बा
0: सब कोई के प्यार हला आज हम पहचान अगर बनल तो है रेडियो से पहचान बनल
1: रेडियो के जरिए तू कितना बड़ी
0: कैसे बोला बहन जी कमला के कबो नहीं सका भुलाई
1: अभी भी याद करे
0: नहीं सका भुलाई
1: उधर जिले में रहल कमला जी नहीं उधर जिले में रहल कमला नहीं
0: गुरु नहीं रहल तब जब प्रोग्राम कर किसी भी तुम्हारे प्रोग्राम में भाग ले होते हैं ना
1: तो
0: हरदम हम के बोली एमबीसी आई के हम बोला नहीं बहन जी मैं नहीं आऊंगी नहीं आ सकती हूँ सच्चे के केले नहीं सकत रही वो
1: उम्र के
0: बहन जी बहुत उबलीजेगा ए जब चौरवा से पांचवा वाला बोलक ना बता अब देखना कैसे आएंगी किसको लेकर आएंगी लेकिन मैं आपका नाम जोड़ देती हूँ
1: ओके जी ओके
0: सुंदर ना तब हमरा पड़ल उबलीजे जाके हमारे भाई के लेके
1: रिश्ता जुड़ गए श्यामा जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में भाग लीला आले शुभ रात्रि तो चल दादा के पुसल पसल ललका चिरैया उरल जाला हई गीत चला था जिश्ना खातिर फिर डेवी गोम्स और खातिर और है गीत चला था इस किशोर जी के नाम जो हवन फ्लिक ऑफ लाख से मिक्सा दे होता हेलो हेलो पूजा नमस्ते है गीत और नाम जीनत Assalamualaikum. Hi Vanessa. Hi Gitor Nam Zaira. Hi Gitor Khatir. Bahut pyar se jab humki dikha to hota utna pyar se Gitor Talo ke naam chala hota hai. Dada ke pusal pasal lalka chirainya. Chalek saath sunen. Dada.

रात के 10:03 होता है तो सुनत हो रेडियो मल्टीसर रेडियो मनोरंजन अजय प्रताप सिंह सितालू के साथ भोजपुरी तर का प्रोग्राम रात के 11 बजे ली और एगो संगत्या भी मंगलन गीत बीच सीमा में गाड़ी रोके और बिना लाइसेंस की गाड़ी खोला तरी बहुत ही प्यारा सन गाना तो गीतो अब्बा हमने के यहाँ तो गीतो चलावती सा गीत चली नंता के नाम फिर अनेस्ट और अभी भाई हमने के देखा था वन टिकटॉक पेज पर गीतो तो रो खातिर और यही गीत रतन निहाल के नाम आप रहेलन गाँव भी कल पत्नी करुणा कल पापा विजय और सब परिवार के लिए संध्या जुगाबू है गीत तोहरों खातिर प्रिंसेस है गीत तोहरों नाम और है गीत चलावती संगीता मिरन की ओर से रीता सितालू के नाम संगीता मिरन उकर माँ उकर भाई दान आजी बहन हेमा शांति और सब अमीरन और मोहन परिवार और माता जी रहे हैं का स्थल और यस रवि हवन कनाडा से ओके नया सिरे के गीत मांगने वन एल्बम है नया सिरे ओके चलाओ अब से एगो गीत नया सिरे से थोड़ा धीरे धीरे जा कह के अभी गीतों पर ही खोजे के ठीक बा थोड़ी समय में नया सिरे हाँ गीतों बा पर चला खोजे के और कनाडा में हवन जा भाई रवि तो रामन करता सुने के गीत नया सिरे के तो थोड़ी समय में चलाओ सो अभी सुन अब से हरि गणेशन की आवाज़ गाओ गीत बीच सीमा में गाड़ी रोके बिना लाइसेंस के गाड़ी खुला टली तो चले एक साथ सुने गीत है गीत चलाओ तो इस जितना कोई भी रात के काम करता है बोको आज बोला था और है गीत तो लोग के नाम

आजकल प्रेमिया पोया विज्ञा बात जब रास्ता पर ड्राइव करा तो आता तो हर ड्राइविंग लाइसेंस ना तो हर प्रेमी दिखो जा रहा तो संगे रहे के याद करिया जा और पी की गाड़ी नहीं चलाया है जब पी की गाड़ी चले बता आप पुलिस पकड़ी तो लामान पर पे करके तो लाइसेंस वगैरह कैंसिल हो जाए और पोता में बचा था वह और मैम तो ड्राइव करता था यू बहुत डेंजरस है ऐसा काम नहीं करे ड्राइव करते हुआ तो अपन सीमा देखिए रोड साइन से बात करिए जा ठीक बा और गाड़ी चलाइया उड़ैया नहीं है देखो गाड़ी लेके उड़ियालन से सीमा में और जहाँ पर नहीं छा दुबले करके वहाँ दुबले ना करिया अभी रात के जितना सफेद लोग हमने की सुना था पसाजे लोग कहूँ जाते हुआ सर या क्या होते हुआ सर तो सावधानी से ड्राइव करिए अगला गीत और खातिर माचे गीत आगे लगभग चौथारी तो चौथारी जो है तो बहुत खास मौका कहे कि लेंदी के चौथारी होला जब छोकरा छोकरी की शादी करके आन देलक तब लेंदी के छोकरा जरा छोकरी लगे दिन के चौथारी करे और उकर बाद जब छोकरा छोकरी के बन लगे आने ला तो शांत के छोकरा लगे चौथारी होला तो चौथारी को रिसेप्शन है अब कैसे अब सब परिवार लोग आए लेकिन छोकरा के बधाई दे छोकरा के माँ बाप के कि चला तो हर घर में बहू अन ले हो अब खाए पियान हो तब तो चौथारी बुला ला माचे की तो आगे लगवा और रेगी चलाओ तो इससे

Megabi Kada Khatir Enzo Leno Khatir Chona BM Nikide Khatawan TikTok page par Vij Manbod Hello Ji Namaste Agit Horo Naam Chalawati Sa Radio Manoranjan Radio Mauritius par और राज साहब जो हमने के प्यार से देखा था जा टिकटॉक पर और सुना था रेडियो पर तह गीत तहरो नाम और चौथारी गीत चाहते सर खासम खास उस सब संगत यार लोग खाते जकर हाल ही में शादी हो बार जकर चौथारी हो रहा लिंडी के अभी ढेर बना जगह में चौथारी होता है कभी कभी सप्ताह में शादी हो गया जैसे कि लिंडी के हरदी मंगर की शादी और बुध के चौथारी था आज बुध की रात है शायद थे जगह में चौथारी और चौथारी में जितना कोई भी नाचा था गीत तलो के नाम माचू की आवाज़ में चल एक साथ सुने

जीवन के हर एक क्षण में एगो परीक्षा रहे रहा। जीवन आसान नहीं रहे रहा है, तेरे को सोचला कि जीवन आसान है। देखा सीता माँ के पर अग्नि परीक्षा देखे, 14 वर्ष वनवास कर वहाँ पर ही रावण लंकापति रावण सीता के हरण करके देखे गए लंका। कितना दिन वहाँ पर रह, सीता जब बाल वापस राम लगे तो ओकरा पर अपन पवित्रता के प्रमाण देके ओके पर अग्नि परीक्षा देके, आसान बात नहीं है। सती रेखा सीता माँ के पर अग्नि परीक्षा देखी। अग्नि परीक्षा पर ढेर कोई लिखलक बा, बड़ा बड़ा लिखक लो कि काहे सीता के पर अग्नि परीक्षा देखी। तो एगो इम्तहान है, एगो टेस्ट है, एगो एग्जामे है। हम यो के जिंदगी में कबो कबो एगो टेस्ट आवेला, बहुत कठिन रहेगा, पर अगर हिम्मत और लगन से काम करब तो तीसों में पास हो जाइबा। और देखा रामायण में जनेदय का होला, जब सीता माँ लव कुश के लेके आवेला अयोध्या में, तो वो बोलेला धरती माँ से कि अगर मैंने तन मन धन से अगर हम केवल एक ही आदमी की खुशी रही राम भगवान, तो धरती माँ तू हमके अपन गोदी में संभाला। और तुरंत धरती माँ फाटेला और माँ सीता धरती में हिल जाला। तो ये प्रतीक है, जब एगो जो महिला है वो सच्चे हृदय से अपन पति के चाहेला, एक गो है जो उनका जिंदगी में बा, तो कितना पवित्र है सीता। जब हम अग्नि परीक्षा दिलक तो अग्नि ओके नहीं सकल झुलसाई, तो सीता पवित्र रहल, पवित्र बा और हमेशा पवित्र रही। और रामायण के दिन एपिसोड में दिखी रहा सा कैसे सीता माँ जो ना धरती में समा जाला, वो बोले रहा हे धरती माई, धरती पर मैली हम ढेर दुख सहली, अब हमारे दुख सहल नहीं जाला। अगर हम सच्चे मन तन मन धन से पूरे हृदय से अगर श्री राम के हम ओकरे अपन मन में बसेले हैं, ओकरे हम जिंदगी भर प्यार कर ली, तब तू उनके अपन गोदी में लेला। और सच्चे की धरती माँ फाटेला और धरती माँ में सीता समा जा रहा। और सीता के जन्म जो हो रहा तो मनुष्य के नहीं हो रहा, वो धरती माँ में से निकल रहा। तो धरती माँ में से निकल और धरती माँ में समा गल। ऐसे ही हमके जीवन में भी परीक्षा आवेला, पर हमने कौन चीज करी रहा सा कि छोटा छोटा बात से कबो घबरा जाए रहा सा और बोला सा ऐसे काहे होता। सबके जीवन में दुख बा, केकर जीवन में दुख नहीं बा बोला था सबके, वो काहे चाहे मिलियनेयर हो, बिलियनेयर हो, करोड़पति हो, सबको के जीवन में दुख आवेला। और हाई सुख दुख अगर जीवन में अगर दुख नहीं रही तो सुख नहीं जन्म कौन चीज है, और सुख नहीं रही तो नहीं जन्म दुख को चाहिए। सबके जीवन में ही सब होला, पर हमने की कौन चाह करे के हमने के चेहरा पॉजिटिव थिंकिंग करे के है। जब पॉजिटिव थिंकिंग कर बा तो सब कुछ पॉजिटिव होला। तो अब चला सुन अब जा रिबेरिजोंगी स्टेट कॉलेज के सब स्टूडेंट्स और अध्यापक खातिर अगला गीत हम पहनीला सिंदूर। शाद खान है गीत और खातिर, सुमित नंदन लाल, अलीशा और नायरा है गीत और खातिर।

रात के 10:25 और 30 सेकंड होता है और बेशक तू एमबीसी रेडियो के साथ जुड़ा हुआ। अगला गीत औरित के तकारीबा और गजाक लक्ष्य कैसे बा लक्ष्य लक्ष्य रोजबेल से वन उजाला इमानुएल ऑंगची एसएसएस मेबग गीत और खातिर लक्ष्य और तोर सब संगत यालो खातिर तनिश यस आप बड़ी अच्छा से गावेला हम गायक भी है तनिश शादी दी में गायला फ्यौसाई में शादी में मंगनी सब कुनो रहेला तो जायला सगाई और बेशक तक सुरतवन बड़ी अच्छी हिंदी हिंदी भोजपुरी फ्रेंच सब बताए रहे सर मॉरिशन ऐसे ना तो सब भाषा बताए रहे सर अंग्रेजी क्रियोल हिंदी भोजपुरी लक्ष्य बोला तो वन अगला गीत ओकर खातिर तो औरत की तकारी बा लक्ष्य अगला गीत और खातिर लक्ष्य खातिर तक्ष खातिर और फाज हम के साथ देवा था वन तकारी खाओगे गीत है औरत की तकारी कारी औरत बोला था गजक सौते सौते वहाँ में बोला था कारी औरत की गजक पा आवा एक दो गुड़की मार ला ओके okay, लक्ष्य पूछ रहा है कि हमारा नाम क्या है हमारा नाम है अजय प्रताप सिंह यस लाइव ऑन एमबीसी रेडियो ओके तनिश सॉरी बोले की बात नहीं भैया चैना पूछेगे ना और लक्ष्य खातिर तनिश खातिर विनोदा खातिर अगला गीत चली यस थैंक यू तनिश आप बोले तो कि अजय प्रताप सिंह बहुत प्यारा नाम है ये हमारे माता पिता हमारा नाम हमारे मादर फादर हमारा नाम दिलक बा अजय प्रताप सिंह यस सादा समीना देन गीत और नाम चली और जितना कोई भी गमत करता रात की गजाक उजाक तैयार कर ले है वो प्रोग्राम बात हर लगे

प्रोग्राम चला था ताकी तौर करते ब्लूबे में भी ढेर कोई बा ब्लूबे में एसएमएस आ रहा है अभी हमने की बोला था वंसा की ढेर मना संगत या लोग ब्लूबे में है वंसा और गमत होता वहाँ पर ही ता बाप इसन ठंडा में गमत समीर साहब वहाँ पर समीर अजय और रोनी जाम से जाम टकराव था और औरत की गजा क्या बात है तो चला गीत ब्लूबे में जितना कोई बा खातिर तनिश भोजपुरी प्रोग्राम है कल मैं हिंदी गीत नहीं चलाया ना सॉरी भोजपुरी गीत है प्रोग्राम के नाम है भोजपुरी तड़का और जय प्रताप सिंह के साथ रात के 11 बज रही थे तनिश और लक्ष्य है गीत तो लोग के नाम उरित के तकारीबा चले एक साथ सुनें

हर्षाना हवन टिकटॉक पर यस तक्षणी भोजपुरी सॉन्ग्स केशवदेन बर्तन कुन राजू है यह रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस और रेडियो मॉरिशस के एमबीसी रेडियो है तो सुना था तगला गीत चली बरका मामा एकर पतोया किकर पतोया एकर पतोया बहुत ही जोशीला तराना है ते गीत चलाओ सा जमीरा खातिर कुशल लिटवारिया खातिर तक्ष खातिर लक्ष खातिर तानिश खातिर हर्षाना खातिर हर्षाना हर्षाना यूनिवर्सिटी मॉरिशस के है बहुत प्यार से हमने के देखा था वन और सुना था वन क्या बात है क्या बात है यस और काव्या गीत हो रो खातिर बहुत प्यार से चले गीत पर कमरवा डोलाव सा बड़का मामा एकर पतोया

बरका मामा के कर पतोया। और अब चली काम करवा रे काम करवा जाने सुन की देश में सब कोई काम करवा हुई है काम करी रहा सब बहुत प्यार से और प्यार से काम करवा मेहनत से काम करवा तो अच्छा है काम चाहना करेगी काम करवा था पैसा मिली काम नहीं करवा था पैसा वैसा नहीं मिली काम चाहना करेगी जैसे हमने काम कैसा लड़का लोग के काम है पढ़े की तो लक्ष्य और तक्ष तो लोग के चहला मेहनत से लगन से पढ़ाई करे के जब मेहनत से लगन से पढ़ाई कर और रिविजन करे के सही समय या फजीर की ख्वाजा जिमाते हैं या दिजा जिमाते हैं से 2 बजे फजीर के 1:15 बजे ले बेस्ट टाइम फॉर रिविजन और देवा करे के समय है रात के। अब हमारा टाइम टेबल ऐसे रहा जब हम कॉलेज रही यूनिवर्सिटी रही तैसे पढ़ा था फजीर के बखत जो ना बेस्ट टाइम फॉर रिविजन और दिवा करे के रात के समय है रात के ओके तो अब तो हर पर निर्भर ढेर के ऊपर आपके होला ढेर के ऊपर आपके नहीं होला इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल है हाँ जी तो चल काम करवा के गीत चला अब सब है कि चलिए इंदिरा मतु खतीर और तक्ष और लक्ष्य तक्ष लक्ष्य और तानी शनि के साथ जुड़ल बा यस और तनिज बोला था हार्ड वर्क यस हार्ड वर्क चाहे ना कोनो भी काम करवा डॉक्टर हुआ आवका हुआ टीचर हुआ पॉलिटिशियन हुआ स्टूडेंट हुआ हार्ड वर्क ऑलवेज पेज है जब मेहनत से लगन से काम करत हुआ तब बेशक ये मेहनत रंग लावेला और माँ बाप के नाम रोशन भी होला और आजकल की दुनिया में अगर पढ़ा लिखल नहीं रहा तो कोनो मान नहीं बा चेहरा पढ़ा लिखल रहे कि बहुत जरूरी है ब्याह कर लेला एम आ कर PhD कर पोस्ट ग्रेजुएट कर जितना तू पढ़ जितना तू लिख जितना पढ़ खाली माँ बाप के नाम रोशन नहीं तोहरों नाम रोशन कहा कि तू पढ़ा लिखल रह तोहर लड़का लोग हो तो लोगों पढ़ा लिखल रही तो कितना सम्मान के बात बा हाँ कि नहीं और सरकार की ओर से हर मदद देवल जाता हर फैसिलिटी देवल जाता लड़का लोग के पढ़े के आगे के ज़माने में आदमी लोग के पैसा नहीं रहा लड़का लोग के उतना नहीं पढ़ावत रहन सर आजकल तो हर सुविधा बा भाई लोग भाई बहन लोग लड़का लोग के पढ़े जहाँ नहीं सकब BA खाली सिफी नहीं है MA कराव MPhil कराव PhD कराव पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाव जितना पढ़ब पढ़ब लिखब तो राजा बाबू बनब हाँ कि नहीं तो सब काम करवा लो खातिर अगला गीत कमल और विभा चिंतामणि की आवाज़ में

0: जिंदगी भर हमने कमाई रहा सब
1: काम करी रहा सब लड़का लोग खातिर परिवार लोग खातिर और एक दिन ऐसा आवेला जब परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ के जाएगी हाँ कि नहीं सब ये रह जा रहा तो हर डिग्री तो हर सर्टिफिकेट धन दौलत तो हर सौंदर्य तो हर गाड़ी तो हर बैंक बैलेंस ये खातिर काले पीले जिले भैया जिंदगी में काबा मन ना रह अक्सर गीतवा गावत नना भरा जोर हंसे खाले पिले जिले भैया जिंदगी में काबा खाले पिले जिले भैया और सुनानो यान भी ये गीतवा काके वो दुनिया के विदा कर दिलन और विदा कर गएलन दुनिया से और दुनिया में जे भी आवेला एक दिन परेला जाए के का करब यही है दस्तूर ये रीति दुनिया के हों कि नहीं यस तो चला भी है कि तो सुनो सब खाली पीले जिले भैया ओके चला एक साथ

0: जिंदगी सस्पेंस से भरा ला जिंदगी को मिस्ट्री को मिस्टेर है जिंदगी कबो सुन में कोनो व्यक्ति मर जाला ता दुख होला अरे ऐसे फलना व्यक्ति से कल मिल रहा ली और कल को से बात कर लिया राजू नहीं बा चोला के ठिकाने बा आज ही सरकार का जिन्हें कोई रही कि नहीं काकर भैया कई बच्चा जब ले जीबा अच्छी तरह से जिया अच्छी तरह से बात करिया कोई के निंदा नहीं करिया कोई के पालाप नहीं करिया अपन जीवन जिया अपन तरीका से अपन माँ बाप की सेवा करिया अपन लड़का लोग के अपन पति पत्नी अपन लड़का लोग के अच्छी तरह से सेवा करिया और समाज में सब कोई के रिस्पेक्ट करिया है जो रिस्पेक्ट है जब हमने कोई के दे लासा तो आदमी हम के रेस्पेक्ट करेगा अब तू रेस्पेक्ट नहीं कर बा तोरा कोई रेस्पेक्ट नहीं करी हाँ कि नहीं तो चले गो अंतिम गीत सुनब सा एगो फट फटुए किंदेगे मो राजा फट फटुआ किंदेगे मो राजा बहुत ही प्यारा सन गाना है गीत चलावत इस विमला खातिर मोहनदेन खातिर जर्मन खातिर गीत चली बहुत बहुत प्यार से और जितना कोई विमल के साथ रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर जितना कोई टिकटॉक पेज पर उनके लाइव प्रोग्राम देखा था राधा सिनोत है गीत और खातिर और है ये गीत चुनह एगो पट पटवा किंदगी मोराजा फेरी लव खातिर और है गीत चलावत ईसा अंजना खातिर एंड स्वीट स्वीट एंड लवली डॉक्टर अंजू है गीत तोहर और से तोहर फियांसे और तोहर होने वाले ससुर जी और सासू माँ के नाम संगीता मिरन लाखोजा सन के साथ स्वीट एंड लवली संगीता मिरन ये गाना खासम खास तोहर खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ चले एक साथ सुने एगो फट फटुआ
1: एगो फट एगो फट फटुआ किंदेगे मो राजा
0: गीत के संगे भोजपुरी तड़का प्रोग्राम यहीं पर ही समाप्त हुआ था रात के 9 बजे से बिलियन के साथ दिला जा बहुत बहुत धन्यवाद तो लोग SMS तो लोग फोन को उस खातिर बहुत बहुत धन्यवाद और उनकी टिकटॉक पेज पर फॉलो कर ला बहुत बहुत शुक्रिया रात के 11 बजे सुन बचा अगला प्रोग्राम सुनहरे पल ओकर बाद रात के 12 बजे से कल फजीर के 6 बजे सुन बजा नॉन स्टॉप फिल्मी तरानी हमने के तलों की मुलाकात हुई कल सांझ के कल बिफे के सांझ के तौर से मिल अब जा सांझ के 4 बजे से 5 बजे दिल से मिले दिल कार्यक्रम में कल लाइव रह सा रेडियो मनोरंजन पर और लाइव टिकटॉक पेज पर तो कल तक हम की इजाजत दें और जय प्रताप सिंह की ओर से सबको की प्यार भरा नमस्ते सलाम शुभरात्रि लव यू ऑल गॉड ब्लेस

0: सुनहरे पल सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम। वैसे रात की खामोशी पुराने गीतों की मिठास और यादों से भरा एक खूबसूरत सफर। स्वागत है आप सभी लोगों का सुनहरे पल में, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर, जहां हर गीत सजती है ओल्ड बॉलीवुड मेलोडीज के साथ। तो चाहे आप अपने घर की बालकनी में हो, सफर पर हो, या बस अपने दिल को सुकून देना चाहते हो, हम लेकर आए हैं वो अमर गीत जो वक्त के साथ और भी हसीन बन जाते हैं।
2: हाँ? क्या कहा?

हर रात कुछ यादें लेकर आती हैं और हर याद का अपना एक गीत होता है। इसी एहसास के साथ सुनहरे पर ऑन रेडियो मॉरिशस पर हम लेकर आए हैं गिने चुने नगमे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जहां बजेंगे बॉलीवुड के पुराने गाने, वो एवरग्रीन गाने जो दिल को आज भी उतनी ही मोहब्बत से छू जाते हैं। तो चलिए जी, ये अगला गाना खासकर हमारे सारे म्यूजिक लवर्स के नाम जो बड़े शिद्दत से गिनिशा का साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मॉरिशस।

चांदनी रात, हल्की सी हवा और साथ में पुराने बॉलीवुड के दिल छू लेने वाले गाने, यही है आपका सुनहरे पल का जादू सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। एक ऐसा म्यूजिकल सफर जहां हर गाना लेकर आता है प्यार, सुकून और खूबसूरत यादें, और आपकी यादों को ताजा करने के लिए अगला गाना खास कर आपके नाम।

रात के इस हसीन पल में दिल को दीजिए म्यूजिक का सुकून। सुनहरे पल लेकर आए हैं पुराने बॉलीवुड के गाने, हाँ जी सिर्फ आपके लिए। वैसे अगर आप काम पे हो तो हम आपको विश करना चाहेंगे बोंको हाश, अगर घर पे हो तो आराम से बैठ जाइए जी, क्योंकि ये अगला नगमा आम प्रीटी मच शो की आपकी यादों को हम चीरने वाले हैं उस गाने के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपके पुराने मीठी मीठी यादें फिर से ताज़ा होने वाले हैं। तो चलिए सब मिलके एंजॉय करते हैं

0: होती है।
1: वैसे दोस्तों कुछ गाने कभी पुराने नहीं होते हैं, वो सिर्फ और ज्यादा दिल के करीब हो जाते हैं। सुनिए सुनहरे पल और महसूस कीजिए पुरानी मेलोडीज का जादू। गिनिशा साथ दे रही हैं और उम्मीद करते हैं कि आप दिल से एंजॉय कर रहे हो।

तो चलिए जी, पुराने गलियों में तो हम घुस ही गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट्स टाइम फॉर मी टू से गुडबाय। आई रियली होप कि आपको दिल से अच्छा लगा ये पुराने बॉलीवुड के गाने जो हम लेकर आए हैं खासकर आप लोगों के लिए इन दिस ब्यूटीफुल शो, और ये है आपका सुनहरे पल। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: सिटी रेडियो हर पल आपके साथ।
1: गुड मॉर्निंग डैडीज, गुड मॉर्निंग मम्मीज, गुड मॉर्निंग।

song.

मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पर रहते हैं

0: MBC Radio, your music companion.
1: हम और तुम

You're listening RM Free Radio.

0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ किले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे, तुम्हें ने बढ़ावा दिया तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
0: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
1: हाँ मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई सुंदर सी लड़की देखी और पिघल पड़े, और गाना भी क्या चुन के सुनाया, रात कली ख्वाब में आई, कोई भजन वजन नहीं सुना सकते थे क्या?
0: अरे सुनो तो सही, दरअसल ये गाना मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है।
1: मेरे बारे में?
0: हाँ, रात कली यानी तुम ही तो रात को हमारे लिए दरवाजा खोलती हो, तुम्हारे एक ख्वाब देखता हूँ और सुबह होते ही तुम्ही से आंखें चार होती है ना।
1: हटो चापलूस कहीं के,

0: सच दीपा तुम्हारे लिए लिखा है, सुनो ना, सुनते ही समझ जाओगी। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
1: वाह वाह वाह वाह वा। उसके लिए तो जनाब सुर में गा रहे थे और यहाँ रात कली एक ख्वाब में आई। हाँ।

वो आ गया, देखो देखो वो

जान के लाले, बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे।

उनकी लाइफ, ड्रंकड हस्बैंड, फाइटर वाइफ, बीवी बिगड़े, शौहर अकड़े, रोज के झगड़े, रोज के लफड़े, लफड़े झगड़े।

हंस के बोली, जाने तमन्ना, अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं ही ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं।

भागा भागा रे भागा रे भागा रे भागा रे भागा। बोला देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है, वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई, बंद हो गई सारी लड़ाई, नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। अरे नफरत हारी उल्फत जीती लुटी खुशी फिर लौट के आई। आई रे आई रे आई रे आई रे आई पीना छू

0: में ही डूब गए। प्यार अगर मिले तो हर नशा है बेकार। जहां चारियार
1: NBC रेडियो हर पल आपके साथ।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।